मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 24वीं तिथि। तदनुसार 16 सितंबर सन 2026 प्रातः के 5:57 और 5 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर प्रातः के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि

0: पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इसे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।

साथियों, आपने समूह स्वर में ये देशगान सुना। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए रतन मोहन शर्मा की स्वर में ये भजन।

0: इसी भजन के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन। आज का विषय है सुख दुख। आलेख है डॉक्टर सुरेश सम्राट का और वाचक है राजेंद्र कुमार।
1: परिवर्तित जीवन शैली के साथ जीवन मूल्य भी तेजी से बदल रहे हैं। इस परिवर्तन में चिंता का मूल विषय यह है कि जीवन मूल्यों से अलग हटकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। फलस्वरूप कुंठा और तनाव की स्थितियां पनप रही हैं। यही कारण है कि अब अक्सर ये कहा जाता है कि पहले जैसा परस्पर प्रेम और बंधुत्व अब नहीं रहा है। वर्तमान में जो बात सर्वाधिक सुनने में आती है वो ये है कि व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी है जबकि वह दूसरों के सुख को देखकर ज्यादा दुखी होता है। एक जमाना था जब समाज में एक दूसरे के सुख दुख में सहिष्णुता के साथ सम्मिलित होने की परंपरा थी। दूसरे के सुख में सहिष्णु होकर आनंद और उमंग के अवसरों पर बधाई गीत गाए जाते थे। एक दूसरे के खुशी के मौकों पर महिला और पुरुष सच्चे हृदय से शामिल होते थे और हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते थे। अब ऐसे अवसर केवल दिखावा बनकर रह गए हैं। अब दूसरे की सफलता समृद्धि और वैभव व्यक्ति को पीड़ित और दुखी करता है। इस दुख से वो अपने लिए पीड़ा और कुंठा मोल ले लेता है। यदि दूसरे की समृद्धि गलत कार्यों से बनी है तो व्यक्ति और अधिक ईर्ष्या और द्वेष से भर उठता है। इसके लिए वो स्वयं भी गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त होने लगता है और असफल होने पर स्वयं को कोसता है। वर्तमान समाज में यह प्रवृत्ति नीचे से ऊपर की ओर इस तेजी से बढ़ रही है कि पूरा समाज इसकी चपेट में आ चुका है। विडंबना की बात यह है कि इस प्रवृत्ति की व्यापकता कहां जाकर रुकेगी ये अभी भी तय नहीं है। तथाकथित रूप से ऊपर उठे व्यक्ति में भी ये प्रवृत्ति अपने से ऊपर उठे व्यक्ति को लेकर पनपती रहती है और इस दौड़ का कोई अंत दिखाई नहीं देता। मध्यम वर्ग उच्च वर्ग को लेकर और उच्च वर्ग उच्चतम वर्ग को लेकर ऐसे आत्मकष्ट को ही प्रगति मानकर जी रहा है। ये असंतुष्टि की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक व्यक्ति ना चाहते हुए भी शामिल है और वो साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, मैं छिपे जीवन मूल्य को भूल चुका है। असल में ये सब इसलिए हुआ है कि आज़ादी के बाद जो संवैधानिक और सामाजिक अवसर सभी के लिए समानता के साथ निर्मित हुए वे सब के सब भाई भतीजावाद और भ्रष्ट तंत्र की गिरफ्त में आ गए। जो कोई इसमें शामिल नहीं होना चाहता था उसे भी मजबूरन शामिल होना पड़ा। अयोग्य की प्रतिष्ठा ने अयोग्य द्वारा अयोग्य के लिए अयोग्यों का जैसी स्थिति निर्मित कर दी। जो इसमें शामिल हो सके वे आगे बढ़ गए और जो ऐसा नहीं कर पाए वे पिछड़ गए। इस परिवर्तन से आगे बढ़ने की जो परंपरा विकसित हुई अब वो संस्कृति बन चुकी है। यही कारण है कि नई पीढ़ी ने आगे बढ़ने का इसे ही एकमात्र मार्ग मान लिया है और बच्चों में भी इसी के संस्कार विकसित हो रहे हैं। लेकिन ये स्थिति ज्यादा चलने वाली नहीं है। शाश्वत जीवन मूल्य शाश्वत ही रहते हैं और हर संक्रमण के बाद वे पुनः प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि शाश्वत जीवन मूल्य ही समाज और व्यक्ति के जीवन को स्थिरता प्रदान करते हैं। आज भले ही हमारे बीच से कबीर की यह वाणी तिरोहित होती जा रही है लेकिन इसके शाश्वत मूल्य को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान।
0: साथियों अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आज का विषय था सुख दुख। आलेख था श्री डॉक्टर सुरेश सम्राट का और वाचक थे राजेंद्र कुमार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लेवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लेवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी, गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि चर्चा। नादेव विधि से कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एसएस चौधरी।
1: किसान भाइयों, फसलों से अधिक पैदावार लेने की हमारी हर संभव कोशिश होती है। इसके लिए हम उन्नत किस्म के बीज प्रयोग करते हैं, साथ ही रासायनिक खादों का भी भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि रासायनिक खादों के असंतुलित प्रयोग से भूमि की भौतिक और रासायनिक दशा बिगड़ रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब जैविक खाद, गोबर और कंपोस्ट की खादों का खेतों में अधिक से अधिक प्रयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। कंपोस्ट खाद बनाने की एक आधुनिक विधि कंपोस्ट से अब हम सभी भलीभांति परिचित हैं। इस विधि में कम से कम गोबर का उपयोग करके अधिक से अधिक मात्रा में जीवांश खाद बनती है। इसमें गोबर, कचरा, मिट्टी और पानी का प्रयोग किया जाता है, जो सभी किसान भाइयों के पास उपलब्ध भी रहता है। इस विधि में 2-3 जानवरों के गोबर से साल भर में करीब 300 टन खाद प्राप्त की जा सकती है, जो करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होगी। इस विधि से खाद बनाने के लिए सबसे पहले जमीन के ऊपर एक होदी जैसा टांका बनाना पड़ता है। टांका बनाने के लिए स्थान का ठीक से हम चुनाव कर लें। स्थान ऊंचा हो, साथ ही पशुशाला के पास में हो और खेत के एक कोने पर हो, जहां आसपास का पानी बह करके ना आ सके। अब हम टांका बनाने की विधि की चर्चा करते हैं। ऊंचाई पर स्थान चुनकर धरती के ऊपर ईंटों की दीवार से 10 फीट लंबी, 6 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी एक टंकी नुमा होदी 9 इंच मोटी दीवार से ईंट व गारे से बनाए। 2 वर्ग फीट जगह से एक ईंट निकालकर टांका 50 छिद्रयुक्त जाली वाला बनाए, ताकि हवा का आवागमन ठीक से होता रहे। ईंटों की ऊपर की 2 लाइन सीमेंट से चुने, ताकि मजबूती आ जाए। टांका बन जाने पर उसे ऊपर, भीतर तथा अंदर के फर्श पर गोबर मिट्टी से लीप दें। अब हमारा टांका बनकर के तैयार हो गया। अब इसमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री की भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले खेतों पर उपलब्ध कचरा, जैसे खरपतवार, भूसा, पत्तियां, छिलके, डंठल, टहनियां, पशुओं का बिछावन, ये 14 से 15 क्विंटल ले लें। गोबर 90 से 100 किलो। खेत की सूखी छनी हुई मिट्टी 17 क्विंटल। पानी करीब 1400 लीटर। ये सभी मात्रा एक टांका के लिए पर्याप्त है। टांका भरने से पहले दीवार व फर्श पर गोबर पानी का घोल छिड़क कर नमीयुक्त बना लें। अभी जो हमने सामग्री बताई है, कचरा, गोबर, मिट्टी व पानी की मात्रा, एक साथ टांके के पास एकत्रित कर लें। फिर इस तरह से भरें। पहले स्तर में सबसे नीचे कचरे आदि का 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच ऊंचाई तक दबा करके परत भरें। ये 30 घन फुट क्षेत्र हुआ, जिसमें 1 से 1.5 क्विंटल कचरा आएगा। दूसरे स्तर में गोबर का घोल, 100 किलो पानी में 4 किलो गोबर यानी 4% का घोल पहले कचरे की परत पर छिड़क दें। कचरा पूरा भीग जाए इस बात का

0: ध्यान रखें। तीसरे स्तर में महीन बारीक सूखी छनी हुई मिट्टी की दूसरी परत के ऊपर आधा इंच मोटाई में डालें। इसका 2.5 घन फुट का वजन करीब 70 किलो होगा। मिट्टी डालने के बाद उस पर पानी का छिड़काव कर दें। टांके में इस प्रकार 3 स्तरों को 10-11 बार लगाना होगा, जब तक कि टांका पूरी तरह से 1.5 फुट ऊंचा ना हो जाए। अब इस पर 3 इंच मोटी बारीक मिट्टी की तह लगा दें। इसके बाद ऊपर से गोबर मिट्टी से लीप दें। ये काम एक साथ 1 या 2 दिन में पूरा कर लें। इस प्रकार टांके में भरी सामग्री से लगभग 3 माह में खाद बनकर के तैयार हो जाएगी। इस प्रकार तैयार खाद खेत में प्रयोग करने से उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति में पर्याप्त सुधार होगा।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, नादेव विधि से कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे SS चौधरी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। साथियों, हिंदी के प्रचार प्रसार, साहित्य सृजन और शिक्षा के में रचनात्मक प्रयोगों के लिए शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार की शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर दीप्ति गौड़ को हिंदी गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। शांति फाउंडेशन गौड़ा की ओर से हिंदी दिवस के अवसर पर उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। समारोह में डॉक्टर दीप्ति को उनकी काव्य प्रस्तुति आराधन हम करें, राष्ट्र का, हिंदी का गुणगान करें, एक सूत्र में बांधे जन मन, हिंदी का सम्मान करें कि रचनात्मक पाठ तथा हिंदी के संवर्धन प्रचार प्रसार, साहित्य सृजन, शिक्षा और सांस्कृतिक चेतना के उन्नयन में उनके योगदान के लिए अलंकरण पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही साथियों, NCC अधिकारी प्रशिक्षण अकेडमी OTA में आयोजित रिफ्रेशर कोर्स के विजेताओं को 19 सितंबर को कमांडेंट द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। वर्तमान में OTA परिसर में 117 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में उनका 2 दिवसीय एक्सरसाइज शक्ति का आयोजन भी किया गया है, जिसमें महिला ने खूब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ पद्मभूषण पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित की स्मृति में संस्कृति विभाग की ओर से 24 और 25 सितंबर को संगीत समारोह आयोजित किया जाएगा। साथियों, तानसेन कला वेदिका में होने वाले इस 2 दिवसीय आयोजन में ख्याति नाम संगीत कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से पंडित कृष्णराव शंकर पंडित को स्वरांजलि प्रदान करेंगे। संस्कृति विभाग के संचालक NP नामदेव ने बताया कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान में शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है और ग्वालियर घराना इस परंपरा की विशिष्ट पहचान है। पंडित कृष्णराव शंकर पंडित ने अपनी साधना और संगीत प्रतिभा से ग्वालियर घराने की परंपरा को नई ऊंचाइयां दी। उनकी स्मृति को जीवंत रखने और नई पीढ़ी को भारतीय शास्त्रीय संगीत से जोड़ने के उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है। समारोह की शुरुआत 24 सितंबर को प्रशस्ति गायन से होगी। ये प्रस्तुति पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित द्वारा स्थापित शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय के कलाकार देंगे। साथियों, ये तो बात हुई आज के दर्पण कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ सूचनाओं और जानकारियों से संबंधित। इसी के साथ सूचना परक कार्यक्रम दर्पण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे जिसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् नवदिल्ल्यां सद्यः एव सम्पन्नस्य 18तमस्य ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य उपवेशनस्य अवसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः तथा चीनदेशस्य राष्ट्रपतेः शी चिनफिङ्ग् इत्यस्य च मध्ये जाते संवादे अनेके विषयाः चर्चिताः। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री भारतस्य चिन्ताः प्रस्तुतवान् तथा उभाभ्यां पक्षाभ्यां पारस्परिकमूलचिन्तां प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शनीया इति प्रतिपादितवान्।
3: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और तीन पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
2: विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता उक्तवान् यत् विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरः ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य उपवेशनस्य अनन्तरं सऊदी अरब देशस्य विदेश मंत्रिणा सह अपि उपवेशनं कृतवान्। तत्र क्षेत्रीयानां अन्ताराष्ट्रियानां च घटनाक्रमाणां विषये चर्चा जाता। सऊदी अरब देशे सद्यः एव जाते आक्रमणे भारतेन निन्दा कृता। षड् राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहुउद्देश्य बन्ध परियोजना सम्बद्ध सन्धौ हस्ताक्षराणि कृतानि। एतेषु राज्येषु उत्तरप्रदेशः, उत्तराखण्डः, हिमाचलप्रदेशः, हरियाणा, राजस्थानः अथ दिल्ली च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः उक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनेन किशाऊ परियोजना राष्ट्रीय परियोजना इति घोषिता अस्ति। श्री शाहः उक्तवान् यत् परियोजनायाः वित्तीय भारस्य प्रायः 90% केन्द्रप्रशासनेन वहिष्यते, अवशिष्टं 10% भारं च सहभागी राज्यैः वहिष्यते। दिल्ली प्रशासनेन आशा कार्यकर्तृभ्यः प्रदीयमानं निश्चितं मासिक प्रोत्साहन धनं 3,000 रूप्यकेभ्यः 6,000 रूप्यकपर्यन्तं वर्धितमस्ति। अयं निर्णयः ह्यः नवदिल्ल्यां मुख्यमंत्री पदासीनायाः रेखागुप्तावर्यायाः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलोपवेशने स्वीकृतः। सम्प्रति दिल्ल्यां 25,770,000 आशाकार्यकर्तारः कार्यं कुर्वन्ति। एतदतिरिक्तं दिल्ली प्रशासनेन राष्ट्रीय राजधान्याः विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च अध्ययनं कुर्वतां 10,000 विद्यार्थिनां कृते छात्रावासानां निर्माणस्य निर्णयः अपि गृहीतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः भारतस्य बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थां प्रति दृढां प्रतिबद्धतां प्रतिपादितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतस्य स्वतन्त्र विदेशनीतिः, रणनीतिकबद्धता च अस्याः प्रतिबद्धतायाः आधारौ स्तः। दिल्ल्यां ICWA इति भारतीय विश्व प्रकरणानां परिषदः रजन्त जयन्ती समारोहे समापन सम्बोधनं कुर्वन् डॉ जयशंकरः विश्वासं प्रकटितवान् यत् अशान्तियुते वैश्विके परिवेशे भारतस्य उदयः निश्चितः अस्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, केरल, माहे चेत्येतेषु स्थलेषु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ नवदिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे आयोजितायां द्वितीयायां विंशति प्रतिविंशति अंतर्राष्ट्रीय

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों के लिए ₹2,000 तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल ₹2,000 से अधिक के व्यापारी लेनदेन पर ही लागू रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलसाई सौंदर राजन ने लिखी है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में योगदान की जानकारी देती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों और कमजोर लोगों सहित और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि ₹3,000 से बढ़ाकर ₹6,000 करने की घोषणा की है। ये निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में सहायता मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता हैं। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। ये पुरुलिया के छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर के बालूरघाट, अलीपुर द्वार के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर के कलाई कुंडा में बनाए जाएंगे। इन चारों हवाई अड्डों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच उड़ान योजना के अंतर्गत त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर 23 सितंबर को कोलकाता में हस्ताक्षर होने की संभावना है। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री KR नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहेंगे। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। अभ्यास सत्र उत्तराखंड के औली प्रशिक्षण केंद्र और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी और अधिक सुदृढ़ करना है। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकारों को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। रूस और यूक्रेन एक दूसरे की ऊर्जा बुनियादी सुविधाओं पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार रूस की राजधानी कीव और अन्य शहरों पर करीब 200 ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। रूस के हमलों में राजधानी के पेट्रोल पंप के अलावा कई क्षेत्रों में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के समारा क्षेत्र में वोल्गा नदी के किनारे स्थित सिजरान की एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को बचा लिया गया है। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब जानिए आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कहानी हवा में साहस की खुशबू। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे रश्मि सासोड़े के गाए कुछ भजन। सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर आप सुन सकेंगे सुबह 9:00। सुबह 9:30 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज कलाकार रहेंगे पंडित राम नारायण। कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन सकेंगे सुबह 10:05 पर। सुबह 11:00 आप सुनेंगे फोन करें गीत सुने। दोपहर 12:00 आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन सकेंगे। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे संग्रहालय से। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे ग्वालियर जिले की प्रस्तुति। दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज आपको सुनवाया जाएगा विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। ग्वालियर जिले की प्रस्तुति रहेगी। दोपहर 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे पल्लव शर्मा के गाए कुछ भजन। प्रस्तुति रहेगी ग्वालियर जिले की।

लोक संगीत और सुगम संगीत आप सुनेंगे आकाशवाणी ग्वालियर के की प्रस्तुति के कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 3 बजे। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन सकेंगे। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों के लिए दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति आज आप सुनेंगे। शाम 5:33 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 6 बजे आप सुनेंगे NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ये सभी कार्यक्रम आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन सकेंगे। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों से। रात्रि 8:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 9:30 पर सुनेंगे चर्चा का विषय है। रात्रि 10 बजे सुनेंगे नाटक राग रजनी आप सुन सकेंगे रात्रि 10:30 पर। ये सभी कार्यक्रम आकाश

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति ने किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कल से मध्य प्रदेश में शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री आज इंदौर में इंफोसिस परिसर में नए ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। और भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को हराया। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे ट्रांसफर की गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट ढांचे के तहत आने वाले लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपये तक किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। एमडीआर केवल 2,000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगा। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि एमडीआर ना तो कोई टैक्स है और न ही सरकार या नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा वसूला जाने वाला कोई शुल्क है। इसे यूपीआई की संचालन और निरंतर विस्तार में मदद के लिए बैंकों और भुगतान एप्लीकेशन प्रदाताओं के प्रतिभागियों के बीच वितरित किया जाता है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल से उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करना है। इस अभ्यास का लक्ष्य पर्वतीय और अर्धपर्वतीय क्षेत्रों में एकीकृत युद्ध समूहों के उपयोग के लिए दोनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है, जिसमें पैदल सेना के प्रधान अभियानों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा से संकल्प अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 17 सितंबर को दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर उज्जैन में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों सहित सांस्कृतिक धरोहरों और आइकनिक स्थलों पर शाम 7 बजे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस अवसर पर उज्जैन की क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। नर्मदापुरम के सेठानी घाट सहित अन्य शहरों में भी आयोजन होंगे, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। बालाघाट जिले में पुलिस की सक्रियता से नक्सलियों का आतंक खत्म हो गया है। पुलिस द्वारा लगातार की गई कार्रवाई के कारण क्षेत्र में शांति व्यवस्था बेहतर हुई है। इस बारे में बालाघाट के पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया।
1: देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मुश्किल जो होती है, अगर आप बालाघाट की टोपोग्राफी को देखेंगे, ज्योग्राफी को देखेंगे, तो यहाँ के पहाड़ बिल्कुल समतल नहीं। यहाँ पर लगातार टेरेन जो है वो चट्टानों से भरा हुआ है। जब आप बारिश में कभी ऑपरेशन करने जाते हैं तो सभी जगह नदी नाले भरे रहते हैं, उफान पे रहते हैं। उस समय अपनी सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए जंगल के अंदर तक जाना और एक सेफली ऑपरेशन करना, उसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि बहुत सारी बड़ी संख्या में यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन जो है वो जंगलों में अपने दैनिक चीज़ों को लेने के लिए जाती है, कहीं तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए जाती है, उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना और उसी के साथ साथ नक्सलियों से उन लोगों को बचाना। तो मुझे लगता है कि ऐसी कई चुनौतियाँ रहती हैं जिसको हॉक फोर्स ने, जिला बल ने और SAF ने यहाँ पर बहुत भरपूर तरीके से जीतने का प्रयास किया और जीतने में सफल रहे। तो मुझे लगता है कि 19-20 के बाद से 25 तक लगातार, क्योंकि हमारा पेनिट्रेशन बढ़ा, हमारा आउटरीच बढ़ा, हमारे ऑपरेशनल संख्या आगे बढ़ी, उसी के कारण ये हुआ कि जो हॉक फोर्स है वो लगातार इस क्षेत्र में हावी होता रहा और नक्सलियों को क्षेत्र न केवल छोड़ के भागना पड़ा परंतु अपने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित इंफोसिस परिसर में नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। ये ब्लॉक 3,30,000 वर्गफीट क्षेत्रफल में विकसित किया गया है, जो प्रदेश में उन्नत तकनीक क्षमताओं और रोजगार परक टैलेंट इकोसिस्टम को और सशक्त करेगा। इंफोसिस मध्य प्रदेश के बढ़ते टैलेंट पूल का लाभ लेने के साथ प्रदेश के शैक्षणिक और तकनीकी इकोसिस्टम के साथ अपना जुड़ाव भी मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल द्वारा लिखित पुस्तिका विकास की गाथा अभ्युदय सारंगपुर प्रमुख उपलब्धियां और विकास कार्य का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुस्तिका के लेखक डॉ. टिटवाल को इस नवाचार के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथियों के स्वास्थ्य पोषण और समग्र कल्याण को समर्पित 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का शुभारंभ 14 सितंबर को कामती परिक्षेत्र के खरेर कैंप में फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा द्वारा किया गया। हाथी महोत्सव 20 सितंबर तक चलेगा। महोत्सव के दौरान सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 6 हाथियों को नियमित गश्ती और वन्यजीव प्रबंधन कार्यों से विश्राम देकर विशेष देखभाल प्रदान की जा रही है। इनका मेडिकल चेकअप कराने के साथ ही विभिन्न खेल और मनोरंजक गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। भारत को जीत के लिए 160 रन चाहिए थे और उसने लक्ष्य का पीछा करते हुए 14 ओवर 5 गेंदों में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाए। संजू सैमसंग ने 22 गेंदों पर 57 रन बनाकर सर्वोच्च स्कोर किया, जबकि अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों पर 39 रन बनाए। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली के उसी मैदान पर खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिला स्तरीय टास्क फोर्स और बंधक श्रम अधिनियम 1976 के तहत गठित जिला सतर्कता समिति की बैठक कलेक्टर राजीव रंजन मीना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। खंडवा में श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अभियान के 13 घटकों की समीक्षा की। उप निर्वाचन हेतु ईवीएम मशीनों का डीओ लेवल रेंडमाइजेशन आगरमालवा में आज शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगा। झाबुआ जिले में पंचायत उप निर्वाचन 2026 के लिए ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन आज सुबह 11:30 पर कलेक्टर सभाकक्ष में किया जाएगा। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में कल हुई जन सुनवाई में 121 आमजनों की समस्याएं सुनी गयी। डिंडौरी में सेवा संकल्प अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विकासखंड करंजिया में बैठक आयोजित की गई। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी अभियान का गान जारी किया है। इस गान को प्रसिद्ध गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने गाया है। ये गीत जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को संगीतमय आवाज देता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कहानी हवा में साहस की खुशबू। कहानीकार है सीमा जैन।
2: सड़क पर बादल साथ चल रहे हों, आसपास हरियाली और उसमें भी तैरते बादल, पर्वतीय सड़क का ढलान, पास और दूर जहां भी नजर जाए वहां पर्वत, नीला आकाश, ठंडी हवा और इन सबसे मिलकर एक ऐसी आनंद की ऊर्जा बहती है कि कदम अपने आप इन रास्तों पर बढ़ते ही जाते हैं। जब पेडोमीटर देखो तो पता चलता है कि हम 7000 कदम चल चुके हैं। ऐसे में यदि फोन की घंटी बज जाए तो फिर हम पूरे के पूरे जमीन पर आकर खड़े हो जाते हैं। अब दुनिया बदल चुकी होती है और यह दुनिया जिसमें मैत्री की माँ की आवाज और उनकी शिकायत, मैत्री सुबह से तुम्हें फोन लगा रही हूँ, अनरीचेबल आ रहा था तो अमित को फोन लगाया, उसने ही बताया कि तुम 4 दिन पहले ही रामगढ़ जा चुकी हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं। माँ, हर बार बताने पे क्या होता है, आपको याद है ना, फिर इस बार वही सब करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। अमित डायबिटिक है और तुम यूं ही हर चौथे पांचवें महीने 15-20 दिनों के लिए घर छोड़कर निकल जाती हो। 50 की उम्र में ये सब अच्छा लगता है क्या? माँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है। घर की सारी जिम्मेदारियों के बाद भी मैंने बहुत रेगुलर वर्कआउट और क्लीन डाइट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। मैं इसलिए स्वस्थ नहीं हूँ कि मैं बहुत सुखी या बहुत खुश हूँ। अमित ने क्या नहीं किया अपने परिवार के लिए, तुम्हारा अब ये फ़र्ज है कि? माँ, दिखता तो यही है कि उसने घर के लिए बहुत कुछ किया, पर यह अधूरा सच है। फिर फ़र्ज क्या एक तरफा होते हैं? मेरे दुख और बीमारी में मुझे क्या मिला आप जानती हो ना। हर औरत अपना घर चलाने के लिए बहुत कुछ सहती है। तुम अमित के साथ भी तो घूमने जा सकती हो। मैं जितना कर सकती हूँ करती हूँ। अमित और मेरी पसंद ही नहीं मिलती। जब मन न मिले तो क्या कुछ समय अपने ढंग से नहीं बिताया जा सकता है? उसे भीड़ वाली जगह, होटल का खाना चाहिए और मुझे शांति। मुझे खाने की तो कोई चिंता ही नहीं, जो बना सकूं वही। पसंद क्या होती है ये तो मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ परिवार की जरूरत और जिम्मेदारी को समझती हूँ। जिम्मेदारी अपने मन के लिए भी होती है ना माँ, उसे कौन उठाएगा? औरत एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है, उसके भी अरमान हो सकते हैं। अब बच्चे अपनी नौकरी में व्यस्त हैं तो मैं अपने मन की, मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के नाम कर दी, अब मुझे नहीं सुननी है तुम्हारे मन की बात। मेरे मन की ना सही, आपके मन की बात तो कर सकते हैं ना। पहले पापा और अब भैया भाभी आपकी ज़रूरतों के निर्णय लेते हैं। कल पापा की तनख्वाह और अब उनकी पेंशन मिलने के बाद भी न पहले न अब आप अपने मन का कर सकी। एक बार अपनी मंदिर की सहेलियों को जो नाश्ता भी न करा सके, क्या ऐसी एक तरफा जिम्मेदारी ठीक लगती है? शब्द तो मुंह से निकल गए थे और फोन ने उन्हें माँ के कानों तक भी पहुंचा दिया था। डर के मारे मैत्री ने अपना हाथ अपने मुंह पे रख लिया। हे भगवान, मेरे मुंह से क्या निकल गया, मैं कितना गलत कह गई, माँ को कितना दुख होगा। फोन हाथ में लिए खड़ी माँ बेटियाँ एक गहरे सन्नाटे में डूब गई। फोन बंद करने का ख्याल भी दोनों को नहीं आया। मैत्री को तो ऐसा लगा जैसे उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर ही फोन बंद कर लिया है। कुछ पलों के बाद माँ ने ही फोन काटा। मैत्री की माँ, वह अपनी बेटी को उसी ढांचे में देखना चाहती हैं जैसी वो खुद हैं या उनके पीछे भी जैसा होता आ रहा था। औरत घर की हर जिम्मेदारी पूरी करे मगर अपने मन की कभी ना सुने। अपने मन की बात या मैत्री भी कहाँ जानती थी। एक बार ज्योति, उसकी बचपन की सहेली, ने उसे ऑल इंडिया रेडियो में बुलाया था। वह प्रोग्राम डायरेक्टर थी। महिलाओं की सोच पर एक टॉक था, कार्यक्रम का नाम था मन सुमन। आप अपने

0: मन को ताजगी देने के लिए क्या करती हैं? ज्योति ने जब उससे पूछा तो उसका तो दिमाग ही सुन्न हो गया। अपने मन के लिए क्या? घर का काम, बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई, बाहर के कई काम, पति की देखभाल, रिश्तेदारी और सबसे बड़ी बात, 8 घंटे की स्कूल की नौकरी के बाद मन सुमन के लिए समय बचता ही कहाँ है? औरत के पास मन सुमन जैसा कुछ होता है क्या? वह अपने आप से ही सवाल कर उठी थी। तब मैत्री ने कहा, यह जवाब उसके मन में कौंध गया कि मेरे मन सुमन के लिए मैं यात्राओं पर जाना चाहती हूँ। हरे भरे मैदान, जंगल, रेगिस्तान, पर्वत, बर्फ के पहाड़, सागर, नदी या झील के किनारे घंटों बैठना और प्रकृति को जीना चाहती हूँ। यही मेरे मन सुमन को महका सकता है। इस रेडियो टॉक के बाद मैत्री का मन कहीं अटक गया था। उसने सोचा उसे अब यात्राएं जरूर करना है। दोनों बच्चों की नौकरी के बाद उसने VRS ले लिया और निकल पड़ी घूमने के लिए। आज से 3 साल पहले जब पहली बार घर से निकली थी तो उसे बच्चों, पति का बहुत विरोध सहना पड़ा था। माँ तो जैसे सदमे में ही आ गई थी। अपने बुझे हुए मन से वह ABC के बाहर आकर खड़ी हो गई। आज उसका मन नहीं था वहां रुकने का, मगर भीतर से आवाज आई, हाय मैत्री, प्लीज कम इन। हाय श्री, एक धनुष जैसा बोर्ड, उस पर तीर की नोक पर एक ए लिखा था, नीचे बुक और कॉफी के फोटो। किताबों और कॉफी के साथ कुछ लोग बैठे दोनों का आनंद ले रहे थे। एक टेबल के साथ सिर्फ एक कुर्सी। टेबल और कुर्सी के डिजाइन जो किताब और कॉफी की थीम पर ही बने थे बहुत आकर्षक लग रहे थे और इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट भी कर रहे थे, एक गहरा प्रभाव छोड़ रहे थे। नाइस कॉन्सेप्ट, A for M, पहली बार इतना ही कह पाई थी वह। ज्यादा बोलकर किसी के आनंद में खलल कैसे डाल सकती थी। थैंक्स, थैंक यू के साथ उस महिला ने मैत्री का स्वागत किया था। फिर तो नियम ही बन गया था कि वह यहां से कोई किताब ले जाती और आराम से पढ़ती थी। श्री नाम है शॉप की मालकिन का। आज मैत्री ने कॉफी ऑर्डर की और बाहर आकाश को देखने लगी। जिस कुर्सी पर वह बैठी थी वहां से बर्फ से ढके पर्वत बहुत सुंदर लग रहे थे। माँ की बात को याद करते मैत्री की आंखों में आंसू आ गए। टेबल पर कॉफी रखते हुए श्री ने उन्हें देख लिया। मैत्री के कंधे पर हाथ रखकर उसने पूछा, क्या हुआ? आज मैंने मेरी माँ को बहुत कड़वी बात कह दी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरे पति डायबिटिक हैं, बच्चे नौकरी कर रहे हैं, मेरे परिवार और मेरी माँ को मेरे इस तरह यहाँ रहने से बहुत तकलीफ होती है, बस वही सब। श्री, तुम बताओ ना, तुमने रामगढ़ को ही क्यों चुना अपनी शॉप के लिए? मुंबई के पास भी तो कई हिल स्टेशन है। मेरे यहाँ रामगढ़ में आने का एक बहुत बड़ा कारण है। वह क्या है? मुझे यहाँ माँ देवी वर्मा की खुशबू महसूस होती है। 1900 की शुरुआत में जिनकी शादी 9 साल की उम्र में हुई थी, उन्होंने अपने ससुराल में इतना हंगामा मचाया कि वह वहाँ रही ही नहीं, वापस मायके आ गई। उनका लक्ष्य शिक्षा था। वह बौद्ध भिक्षु बनना चाहती थी, मगर गांधी जी के संपर्क में आकर वह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी। एक बच्ची में कैसे यह मजबूत इरादा आया कि उन्हें वैवाहिक जिंदगी नहीं चाहिए, उन्हें पढ़ना है, उन्हें सन्यासी की तरह रहना है। वह हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनती थी। वह यहाँ रामगढ़ में आई, मेरा घर उन्होंने बनवाया और यह गांव के लोगों के उत्थान के लिए भी उन्होंने काम किया। उनके पति से भी उनके दोस्ताना संबंध रहे। कैसे उनके पति ने उनका साथ दिया होगा? पहला मजबूत पैर तो माँ देवी का ही था ना। इसके बाद उनके पति ने उनको जीवन भर अपनी सखी समझा, दूसरी शादी भी नहीं की। उस दौर में जब पढ़ना लिखना एक बहुत बड़ी बात थी, अगर तब वह अपना पैर जमा सकती थी तो हम आज अपना पैर क्यों नहीं जमा सकते हैं? उस दौर में उनके मायके और ससुराल वाले कुछ लोगों ने तो उनका विरोध किया होगा। हमें तो सिर्फ अपने आप को यह बताना है कि मैं क्या चाहती हूँ। हमारे आसपास वैसा वातावरण बनने लगेगा। जितनी बुलंदी हमारे विचारों और व्यक्तित्व में होगी, उतनी सफलता हमें अपने आप मिल जाएगी। बहुत सुंदर, तभी यहाँ दीवारों पर महादेवी जी की कविता और की पंक्तियाँ लिखी हैं। तुमने तो इस जगह को उनके रंग में रंग दिया है। श्री, मैं जो चाहती हूँ कर लेती हूँ, मगर आज माँ का दिल दुखा, ये गलत हो गया। अब जब तुम कह चुकी हो जो कहना था, तो इंतज़ार करो, देखो वो इसको कैसे समझती हैं। हो सकता है वे इस कड़वाहट के पीछे के सच से रूबरू हो जाएं। हाँ, इंतज़ार ही करना होगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ सकती हूँ, एक पारंपरिक परिवार में औरत के स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्वीकृति नहीं मिल सकती है। उसे गहना, कपड़ा सब मिल सकता है, लेकिन आज़ादी इन सबसे बहुत भारी होती है। उसे हासिल करना आसान नहीं है। आज तीसरा दिन था। शाम के समय उसके फोन की घंटी बजी। मैत्री ने भागकर फोन देखा, वह माँ का था। झट से उसने फोन उठाया। माँ, सिर्फ इतना ही कह पाई थी वह। इतनी उदास आवाज में क्यों बात कर रही है? कुछ नहीं माँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। जब बच्चे वह दिखा दे जो हम देखकर भी नहीं देख पाते हैं तो आंखें तो खुलनी ही हैं, और जब आंखें खुलती है तो दिखाई देता है, और देखना तो अंधेपन से बेहतर होता है ना बेटा। माँ मुझे माफ़ करो, पहले मेरी बात सुन। तूने मुझे उस दिन यह तो कह दिया कि तेरे भाई और पापा ने मेरा एक भी अरमान पूरा नहीं किया, मगर तूने यह नहीं कहा कि वही अरमान तूने पूरा किया था। तूने ही तो होटल में मेरी सब सहेलियों को बुलाया था और मेरे लिए एक पार्टी अरेंज की थी। उस दिन मैं नहीं समझ पाई थी बेटा तेरी समझ, तेरी ताकत, अपना पैसा और आत्मनिर्भरता। आज समझ में आया जब तूने मुझे एक धक्का ही दे दिया। सुनकर तो ऐसा लगा कि बच्चे क्या माँ को इस तरह नीचा दिखा सकते हैं। दो रातें तो रोते रोते बीत गई, मगर उसके बाद लगा कि तुमने नीचा तो दिखाया मगर वह सच भी तो था। तो क्या जो जीवन मैंने जिया वही मेरी बेटी जिए? क्या यह गलती मुझे करनी चाहिए? आई लव यू माँ। पागल, तूने बहुत अच्छा काम किया। इस बहादुरी की हम सबकी ज़िंदगी में ज़रूरत है। जब कभी किसी को कोई सहारा और साथ मिल जाए तो शायद वह कदम उठा सकता है। मेरे पास आओगी? हाँ बेटा, पर कैसे? तुम काठगोदाम तक ट्रेन से आओ, मैं तुम्हें लेने नीचे आ जाऊँगी। मैं तो कभी अकेली ट्रेन में बैठी नहीं बाबू। तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हारा टिकट करवा रही हूँ। अपनी बर्थ पर जाकर बैठ जाना, ट्रेन अपने आप तुम्हें यहाँ ले आएगी। आ जाओ ना माँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, पर मेरी टिकट मैं खुद ही करवाऊँगी। अपनी कॉलोनी के बाहर रेलवे टिकट वाले के पास जाती हूँ और टिकट करवाती हूँ, फिर तुम मुझे लेने नीचे आ जाना। मैत्री को लगा श्री सच्ची कहती है, यहाँ की हवा में महादेवी की खुशबू बसी है। वही खुशबू आज उसकी माँ तक भी पहुँच गई।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कहानी हवा में साहस की खुशबू। कहानीकार थी सीमा जैन। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। शुरुआत में सुनते हैं ये गीत।

साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म बातों बातों में। इस फिल्म से ये गीत आपने किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में सुना। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए मुकेश के स्वर में अगला ये गीत।

साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म एक दिल सौ अफसाने से। बोल शैलेंद्र के थे, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, आवाज थी मुकेश की। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला ये गीत।

साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म आपकी कसम से। आवाज़ें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला ये गीत।

साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म तेरे मेरे सपने से। गीत के बोल लिखे थे गोपाल दास सक्सेना ने और संगीत दिया था SD बर्मन ने। आवाज़ थी मन्ना डे और SD बर्मन की। आप सुन रहे हैं फिल्म संखी। अगला गीत, उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
3: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
2: मतलब?
3: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
2: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
4: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म बाहरें फिर भी आएंगी। बोल अनजान के थे, संगीत दिया था ओपी नैयर ने, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। कार्यक्रम फिल्म संगीत के आखिर में सुनिए फिल्म मैम साहब से ये गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में आप समाचार प्रभात सुनेंगे, जिसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: किसी भी राष्ट्र के यूपीआई

0: लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0% छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को UPI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि UPI शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि UPI ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी UPI भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेनदेन पर अनिवार्य रूप से 0% MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेनदेन पर कोई मासिक सीमा, लेनदेन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
3: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहाँ आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में NSG की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। NSG केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
4: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
7: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
8: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के तिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
9: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्रीय गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5 करोड़ 20 लाख डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू,

0: इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ता के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के ओली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। Government says there'll be no

साथियों, आप सुन रहे हैं रश्मि सासोड़े के गाए कुछ भजन कार्यक्रम सुगम संगीत में। लीजिए सुनिए अगला ये भजन।

साथियों, आप सुन रहे हैं रश्मि सासोड़े के गाए कुछ भजन। लीजिए सुनिए अगला ये भजन।

साथियों, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं रश्मि सासोड़े के गाए कुछ भजन। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ये भजन।

0: साथियों, इसी भजन के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न हुआ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आपने सुना रश्मि सासोड़े की गाए कुछ भजन। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें हमारे भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: खास खबरें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल ने लिखी है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे ट्रांसफर की गई राशि भी कितनी भी हो। एमडीआर केवल 2000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेनदेन पर ही लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से अवसर पर सेवा से संकल्प अभियान 17 दिसंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम उज्जैन में होगा, जिसका शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित इंफोसिस परिसर में नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। ये ब्लॉक 3,30,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में विकसित किया गया है, जो प्रदेश में उन्नत तकनीक क्षमताओं और रोजगार परक टैलेंट इकोसिस्टम को और सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मंत्रालय में कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री डॉ. गौतम टिटवाल द्वारा लिखित पुस्तिका विकास की गाथा अभ्युदय सारंगपुर प्रमुख उपलब्धियां और विकास कार्य का विमोचन किया। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल रात दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली के उसी मैदान पर खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

नमस्कार साथियों, स्वागत वंदन अभिनंदन सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में लेकर हाजिर हूँ आपकी रेडियो साथी अर्चना। साथियों, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज यानी 16 सितंबर को हम याद कर रहे हैं भारत की सबसे महान गायिकाओं में से मधुरे षणमुख व दिबू सुलक्ष्मी जी को। साथियों, इन्हें प्यार से MS अम्बा कहते थे। इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को मधुरे तमिलनाडु में हुआ था। उनकी माँ खुद एक वीणा वादक थीं, तो संगीत उन्हें बचपन से ही विरासत में मिला था। साथियों, MS अम्मा ने कर्नाटक संगीत को पूरी दुनिया तक पहुँचाया। उनकी आवाज़ में ऐसी मिठास और भक्ति थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। साथियों, वो भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थीं। उन्हें 1998 में भारत रत्न दिया गया। साथ ही इसके साथ साथ उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बहुत थी। वे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रैमन मैंगसेसे पुरस्कार 1974 को पाने वाली भी पहली भारतीय संगीतकार थीं। इसके साथ ही वो पहली भारतीय थीं जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN में गाना गाया था। साथियों, उन्होंने संगीत से जो कमाया उसका बड़ा हिस्सा दान में दिया। वो कांची कामकोटी पीठ की बहुत बड़ी भक्त थीं और उनका गाया हुआ वेंकटेश सुप्रभातम आज भी हर मंदिर में सुबह बजता है। ये तो बात हुई सुलक्ष्मी जी की जयंती के उपलक्ष्य में। इसी के साथ साथ साथियों, आज यानी कि 16 सितंबर को दक्षिण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। ये सुनने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, तो इसको आसान भाषा में समझाते हैं। साथियों, दुनिया को अक्सर दो हिस्सों में देखा जाता है, उत्तर यानी अमीर और विकसित देश, दक्षिण यानी विकासशील देश। विज्ञान और नई टेक्नोलॉजी ज़्यादातर उत्तर के देशों के पास हैं, दक्षिण के देशों के पास प्रतिभा तो बहुत है पर साधन कम हैं। इसी खाई को पाटने के लिए, इस खाई को मिटाने के लिए साल 2023 में हवाना में G77 देशों की बैठक हुई और तय हुआ कि हर साल 16 सितंबर को यानी आज के दिन ये दिन मनाया जाएगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र ने भी 9 जनवरी 2024 को इसे मान्यता दी। इसका उद्देश्य विज्ञान और तकनीक सभी तक पहुँचे, ये मुख्य उद्देश्य है। गरीब से गरीब किसान को भी अच्छी खेती की तकनीक मिले, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य की तकनीक मिले और जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौतियों से हम सब मिलकर लड़ सकें। भारत इस दिशा में आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। हमारा चंद्रयान, हमारी डिजिटल क्रांति, UPI जैसी तकनीक, ये सब दक्षिण सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके साथ ही साथियों, हम और भी बात आपसे करेंगे पर पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत।

साथियों, आज यानी 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं साथियों, ओजोन परत को पर्यावरण का प्राकृतिक कवच कहा जाता है। ओजोन परत ओजोन गैस की एक पतली सी परत होती है जो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ये हमारे वायुमंडल के लिए एक कवच या यूं कहें कि सुरक्षात्मक आवरण बनाती है।

क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैगनी किरणों को सोख लेती है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने का जो कारण था वो ये था कि ये धरती के करीब 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन ये एक तरह की ऐसी परत या हम कहें कि गैस की एक ऐसी चादर है जिसमें O3 की मात्रा अधिक है और ये हल्के नीले रंग की गैस है, मतलब हल्के नीले रंग की दिखती है। साथियों, इसका जो काम है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परावैगनी किरणों को, यूवी रेज को हमारे तक आने से रोकती है। लेकिन आज ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ओजोन परत संरक्षण दिवस को मनाया गया। 1985 में वैज्ञानिकों ने देखा कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छेद हो गया है, करीब 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर का। पता चला कि इसका कारण क्या है, CFC गैस। ये गैस कहाँ से आती है साथियों? ये गैस आती है हमारे पुराने फ्रिज, AC और स्प्रे वाले डिब्बों से। इसी को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को दुनिया के देशों ने एक समझौता किया जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये इतिहास का पहला एक ऐसा समझौता है जिस पर दुनिया के सभी देशों ने हस्ताक्षर किए। इसी याद में संयुक्त राष्ट्र ने 1994 में घोषणा की कि हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाएगा। पहली बार ये दिन 1995 में मनाया गया। साथियों, यदि ये परत ना होती तो लोगों को चर्म रोग, कैंसर, आंखों में मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, हमारी रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती, खेतों की फसलें खराब हो जाती, समुंदर के छोटे छोटे जीव मर जाते। लेकिन इस संरक्षण दिवस के मनाने के कारण, इसमें सभी देशों की भागीदारी होने के कारण ये एक अच्छी खबर है कि इस समझौते के बाद ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है और वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि 2066 तक ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। साथियों, इसके अलावा आज यानी 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस भी है। कार्डियोलॉजी मतलब दिल के रोगों का विज्ञान और इंटरवेंशनल मतलब बिना बड़े ऑपरेशन के इलाज। पहले दिल की नस बंद होने पर छाती को चीरकर बाईपास सर्जरी करनी पड़ती थी, लेकिन आज हाथ की एक छोटी सी नस से तार डालकर ब्लॉकेज को खोल दिया जाता है और स्टेंट लगा दिए जाते हैं। इसे ही एंजियोप्लास्टी कहते हैं। मरीज 1-2 दिन में ठीक होकर घर चला जाता है। साथियों, 16 सितंबर 1977 को दुनिया की पहली एंजियोप्लास्टी की गई थी। इसी ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। भारत ने भी इसका समर्थन किया है। श्रोताओं, हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि रोज़ यदि हम चाहते हैं कि हमारा दिल यूं ही धड़कता रहे, हमारे दिल में यूं ही प्यार भरा रहे, अपनों के लिए हम अच्छी फीलिंग्स रखें, तो उसके लिए ज़रूरी है हमें अपने दिल को हेल्दी रखना। और उसके लिए छोटी छोटी सी यदि आदतें हम डेली रूटीन में अपना लें तो हम बिना दवाइयों के स्वस्थ रह सकते हैं और हमारे दिल को खुश रख सकते हैं। इसके लिए खुश मतलब स्वस्थ, रोज़ 30 मिनट तेज गति से पैदल चलना है, मतलब मॉर्निंग वॉक जिसे हम बोलते हैं। कोशिश करें कि तेल, नमक, चीनी, मैदा को कम से कम उपयोग में लें। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब को थोड़ी सी दूरी बना लें। और ख़ास करके यदि हमारी उम्र 30 साल से अधिक है तो हमें BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की जाँच हर साल ज़रूर करवाएँ। यदि कभी कोई दर्द हमें ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ भारीपन लग रहा है, सांस फूलना, बहुत पसीना आना, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको गैस समझकर टाले नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इस तरह से हम अपने खूबसूरत से दिल का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं और हमें भी अपने साथियों का ख्याल है।

0: साथियों, कल यानी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये सेवा संकल्प अभियान शुरू हो रहा है। प्रशासन ने इस अभियान को केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सुशासन और सेवा का महाअभियान कहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी 55 जिलों के कलेक्टरों की समीक्षा की। मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल ने मंत्रालय में सभी विभाग अध्यक्षों, अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला, नीरज मंडलोई, संजय दुबे, आयुक्त जनसंपर्क मनीष सिंह के साथ बैठक कर निर्देश दिए। हर जिले में तारीखवार, स्थानवार, अधिकारीवार कैलेंडर बनेगा। हर विभाग की भागीदारी होगी। जिला विकास पुस्तिका हर घर तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इसे औपचारिक आयोजन तक सीमित मत रखिए, इसे जन भागीदारी से जोड़िए। हर शुक्रवार को जिलों में जन संवाद के विशेष कार्यक्रम होंगे। साथियों, इसमें 13 बड़ी गतिविधियों की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले होगा आशीर्वाद का दिया, जो 17 सितंबर को शाम 7 बजे से शुरू होगा। प्रदेश में ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर उज्जैन के महालोक और शिप्रा तट पर, वहाँ से शुरू होगा। इसकी विश्व रिकॉर्ड स्तर की तैयारी हो चुकी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश में लगभग 58 लाख दिए जलेंगे। दूसरा, ओरछा के रामराजा लोक में भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। सलकनपुर, मैयर सहित प्रदेश के 10 प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों और सभी 71,000 बूथों पर सभी ग्राम पंचायतों में लाभार्थी परिवारों के घर में एक साथ दिया जलेगा। प्रभारी अधिकारी अपने अपने जिले में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। साथ ही 17 सितंबर को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा सेतु रहेगा, जिसमें सरकार आपके द्वार, ये प्रशासन का सबसे बड़ा हिस्सा है। हर ब्लॉक में मेगा शिविर लगेंगे। राजस्व, स्वास्थ्य, खाद्य, महिला बाल विकास, पंचायत के अधिकारी एक ही जगह बैठेंगे। आयुष्मान कार्ड, समग्र राशन कार्ड, पेंशन, पीएम आवास, स्वामित्व योजना, जिन 50 लाख लोगों को स्वामित्व अधिकार मिलना है उनको भी मौके पर लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक रहेगा सेवा चित्र, सेवा स्मरण। स्कूलों में मेरे सपनों का भारत, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, संगीत में नाटक से योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अगला रहेगा आंगन का मिलन। इसमें 25 सितंबर से 7 अक्टूबर तक रहेगा। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं को पोषण स्वास्थ्य की जानकारी और आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया जाएगा। इसके अगले स्तर पर कहानी बदलाव की, जिन लाभार्थियों का जीवन योजनाओं से बदला है उनकी 25 कहानियों को वीडियो के रूप में डिजिटाइज कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही सेवा ज्योति यात्रा जो 7 अक्टूबर से रहेगी, हर विधानसभा क्षेत्र में सेवा ज्योति कलश यात्रा निकलेगी और बडनगर गुजरात से वाराणसी तक जल जन और सेवा संकल्प यात्रा मध्य प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। ये अभियान की शुरुआत कल यानी 17 सितंबर से होगी। इसके साथ ही साथियों, मेडिकल ऑफिसर्स के 600 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति आई है, जिसमें इसकी भर्ती की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए योग्य अभ्यर्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: साथियों, स्कूलों से शुरू किए गए भारत में चीता प्रोजेक्ट के 4 साल पूरे होने पर गुरुवार को यानी कल वन विभाग की ओर से चीता उत्सव मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम कूनो के बाहर सेसईपुरा के आसपास रखा गया है। वहीं 3 अलग अलग स्थानों पर करीब 200-200 चीता मित्रों को जुटाकर सम्मेलन किए जाने की तैयारी है। कूनो नेशनल पार्क के CCF उत्तम शर्मा कुमार शर्मा ने बताया है कि कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट को 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में चीता मित्र सम्मेलन से लेकर अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये खुशी का पल है, भोपाल स्तर पर भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी के साथ ही साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जन सूचना सेवा शुरू की है। इसका मकसद आम लोगों और दिव्यांगों तक कोर्ट के फैसलों को आसान भाषा में पहुंचाना है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख फैसलों का सरल हिंदी में सारांश दिया जाएगा। 15 से 30 मिनट के वीडियो और ऑडियो बुलेटिन में इसे जारी करेंगे। ये सेवा अभी हिंदी में शुरू की गई है। इसके साथ ही साथियों, 18वीं ब्रिक्स समिट में सभी 11 देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूरी दी है। इसमें पश्चिम एशिया के युद्ध पर संयम बरतने की अपील की गई है। ब्रिक्स ने UN सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील को स्थायी सीट देने का समर्थन किया है। स्थानीय करेंसी में व्यापार बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। साथियों, और भी बहुत सारी सूचनाएँ हैं, बहुत सारी जानकारी हैं जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, ये स्टूडियो की घड़ी हमें इससे ज़्यादा आपसे जुड़ने की अनुमति नहीं देती। तो इसी के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर से अपनी रेडियो साथी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। साथियों, अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव 216।

9.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज कलाकार हैं पंडित राम नारायण। सारंगी पर राग होगा गुर्जरी तोड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आपने सुना पंडित राम नारायण का सारंगी वादन। राग था गुर्जरी तोड़ी, ये ग्वालियर का आकाशवाणी केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें भोपाल केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें। माफ कीजिए, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र।
1: प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी, आलेख आरती श्रीवास्तव, वाचन स्वर दीपा सिंह। रीवा जिले में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम है। बाजारों में, पंडालों, शैक्षणिक संस्थानों और घर घर में गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज है। विसर्जन के बाद नदियों में होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखकर लोगों ने मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं को स्थापित किया है। शहर में इस बार कई पंडाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अमहिया के राजा और रथरा के राजा की भव्य प्रतिमाओं के साथ पंडालों में विशेष सजावट की गई है। इसके साथ ही इस बार हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का एक ही दिन पड़ना खास रहा। तीज के पर्व को लेकर बाजारों में काफी रौनक रही। आम जन तक बैंकिंग वित्तीय सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना, पिछले दिनों प्रधान डाकघर रीवा स्थित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का नौवां स्थापना दिवस उत्साह और गरिमा पूर्ण ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं के बारे में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों

0: किसानों तथा आम नागरिकों को जानकारी दी गई। पिछले दिनों बलराम कृषि महोत्सव के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र में आत्मा परियोजना के अंतर्गत कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, नवीन कृषि तकनीकों का उपयोग करने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हुए खेती से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के बसामन मामा गौ अभ्यारण्य में गौ माता का पूजन किया। इस अभ्यारण्य में 9000 से अधिक गौवंश की सेवा की जा रही है। जिले में पिछले दिनों रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ। रीवा के साथ साथ मऊकन, सतना और मैहर जिलों में लगातार हो रही वर्षा से बीहर, बिछिया, टमस, बेलन, महाना और अन्य नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया। वर्षा के कारण सड़कें और पुलियां भी क्षतिग्रस्त हुईं। जिले भर में जल भराव वाले क्षेत्रों में समय रहते लोगों को बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की टीम ने विभिन्न जल भराव वाले क्षेत्रों में स्टीमर से डॉक्टर और उपचार दल को पहुंचाकर बीमारों के उपचार में मदद की। एसडीआरएफ टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों तक दवा, राशन, सब्जियां भी पहुंचाई, उपचार की समुचित व्यवस्था भी की गई। जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर जिले भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के टाउन हॉल में श्री कृष्ण पर्व का शुभारंभ किया गया। गत दिनों उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रीवा में ऊर्जा विभाग की 48वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रीवा संभाग और खेल विभाग द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में बाहर से आई 14 टीमों ने भाग लिया। जिले में कल 17 से 17 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान से जुड़े बिंदुओं पर कार्रवाई करने के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। अभियान के प्रथम दिन जिला स्तरीय कार्यक्रम रिवर फ्रंट में पचमठा घाट में होगा, जिसमें 50,000 दीप जलाए जाएंगे। पिछले दिनों सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा के कार्डियोलॉजी विभाग में बिंद का पहला CRTP डिवाइस सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। कार्डियोलॉजी विभाग की विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीज की विस्तृत जांच और मूल्यांकन के बाद बिंद का पहला CRTP डिवाइस सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया। इस प्रकार के उन्नत तो जटिल कार्डियक उपचार के लिए पहले रीवा और आसपास के मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ही आधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस उपलब्धि के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने प्रदेश में उच्च स्तरीय कार्डियक सेवाओं की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण दिवस के अवसर पर पिछले दिनों रीवा के जयंती कुंज वन कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले में गिद्ध संरक्षण के लिए भविष्य की कार्ययोजना और रोडमैप तैयार करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी रीवा जिले की चिट्ठी। आलेख आरती श्रीवास्तव का था, वचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का
2: ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश में। लेकर हाजिर हैं आपके ही फरमाइशी गीतों को आप तक आपको सुनवाने के लिए। शुरुआत करते हैं पहले इस फरमाइशी गीत से।

ये फरमाइशी गीत आपने सुना। इसके लिए फरमाइश हमें भेजी थी राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और समस्त अंसारी परिवार ने। साथियों, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, ये फरमाइश जो अभी आपने सुनी वो थी फिल्म होगी प्यार की जीत से। आवाज़ें थीं सोनू निगम और अलका याग्निक की। लीजिए सुनिए अगला ये फरमाइशी गीत।

साथियों, ये फरमाइशी गीत आपने सुना फिल्म सुहाग से। आवाज़ें थीं उदित नारायण और साधना सरगम की। इसके लिए ये फरमाइशी गीत हमें भेजा था मुकाम पोस्ट फुलचिंचोली तालुका पंडरपुर से। फरमाइश करता थे जाकिर मुलाड़ी, सुमैया मुलाड़ी, सुबान मुलाड़ी।

मुलाड़ी, समीर मुलाड़ी, सलमा मुलाड़ी, मुमताज मुलाड़ी, दिलशाद मुलाड़ी, नसीर मुलाड़ी और समस्त मुलाड़ी परिवार की। साथियों, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। लीजिए सुनिए अगला ये फरमाइशी गीत।

0: साथियों, ये फरमाइशी गीत आपने सुना फिल्म मेरे जीवन साथी से। आवाज़ थी अलका याग्निक की और इसके लिए ये फरमाइशी गीत हमें भेजा था नादेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और साथियों ने। आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, अगली फरमाइश हम आप तक पहुँचाएंगे, उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
2: सच?
1: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
2: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो?
1: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
2: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
1: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: साथियों, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, अगली फरमाइश हमें मिली है दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से। हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और समस्त वर्मा परिवार की, इनकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

मुकेश की, और इसके लिए हमारे पास फरमाइश आई थी न्यू बजरंग कॉलोनी राजा गैस गोदाम गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर से। नेत्राम गोड़िया, सरोज गोड़िया, शशि कुमार गोड़िया, भावना गोड़िया, नीरज गोड़िया, अर्चना गोड़िया, आध्या, श्रेया, देवांशु और समस्त गोड़िया परिवार की। साथियों आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, अगली फरमाइश हमें मिली है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान और समस्त चौहान परिवार की। लीजिए सुनिए ये फरमाइशी गीत।

साथियों, ये फरमाइशी गीत आपने सुना फिल्म जोरू का गुलाम से। आवाज़ें थी अभिजीत और सुनीति चौहान की। आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, अगली फरमाइश हमें मिली है अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाब्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव और समस्त मित्र मंडल की। लीजिए सुनवाते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

गीत आपने सुना फिल्म आन मिलो सजना से। आवाज थी किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत या था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, अगली फरमाइश हमें मिली है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरवंत सिंह जौड़ा और समस्त साथियों की।

0: ये फरमाइशी गीत आपने सुना फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। आवाज़ थी लता मंगेशकर और उदित नारायण की। आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, अगला गीत हम आप तक पहुंचाएंगे, उससे पहले सुनवाते हैं ज़रूरी संदेश।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: साथियों, अगली फरमाइश हमें मिली है मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से। श्री सुधाकर राजे यादव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव देशमुख, जगुताई राजे यादव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख। लीजिए सुनिए इनकी फरमाइश पर ये गीत।

साथियों, ये फरमाइशी गीत आपने सुना फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। आवाज़ थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। बोल राहत इंदौरी के थे और संगीत दिया था अनु मलिक ने। आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, इस क्रम में सुनिए अगला ये फरमाइशी गीत, जिसे हमें भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और समस्त साथियों की। इनकी फरमाइश है फिल्म सरगम से। बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और आवाज़ है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

0: साथियों, इसी फरमाइशी गीत से कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश से दीजिए अनुमति। नमस्कार, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित इंफोसिस परिसर में नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। ये ब्लॉक 3,30,000 वर्कफीट क्षेत्रफल में विकसित किया गया है, जो प्रदेश में उन्नत तकनीक क्षमताओं और रोजगार परक टैलेंट इकोसिस्टम को और सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज मंत्रालय वल्लभ भवन में मध्य प्रदेश जल निगम के संचालक मंडल की बैठक को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कल से प्रदेश भर में सेवा से संकल्प अभियान चलाया जाएगा। 17 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले इस अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत दस्तावेजों की निशुल्क रजिस्ट्री की जाएगी। सेवा से संकल्प अभियान का मुख्य कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। इस अवसर पर आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में कल शाम उज्जैन की क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक में 25,00,000 से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। भोपाल की पुरानी विधानसभा परिसर स्थित मिंटो हॉल में आज पत्रकारिता अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। रेलवे द्वारा पितृपक्ष में गयाजी तीर्थस्थल के लिए 27 सितंबर से विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल से गया के बीच चलेगी। भोपाल की प्रकाशन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आज शाम को 4 बजे विशेष संगीत सभा का आयोजन होगा। और मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल इंदौर जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम में आप हमें फोन करते हैं और हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद के प्यारे प्यारे नगमे। चलिए बात करते हैं हमारे सबसे पहले कॉलर से। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो
0: जी। हेलो
2: जी दीदी, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
0: बेटा सिंह यादव जी, कैसे हैं आप?
2: जी दीदी, मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, मस्त हूँ। और जो भी है, आज हमने सोचा बातचीत कर लिया जाए, काफी दिन हो गया आपसे बातचीत नहीं हुई थी, तो फोन भी लग गया है दीदी, अच्छा भी लग रहा है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो क्या करते हैं बेटा सिंह जी आप?
2: जी दीदी, वैसे तो फिलहाल मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, एक किराने की दुकान भी डालने वाला हूँ, और दो चार दिन के अंदर कंप्लीट तो हो चुकी दुकान, लेकिन जो भी अभी डालने में बाकी है।
0: अच्छा,
2: तो साथ साथ में ये भी होता रहेगा, खेती किसानी भी काम होता रहेगा।
0: बहुत बहुत बधाई हो आपको।
2: जी
0: तो आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
2: जी दीदी, फिल्म बना रहा होगी प्यार जीत की, और गीत की बोल रहेगा, कर लो मेरा एतबार यारो, सोने चांदी से महंगा है प्यार यारो।
0: बिल्कुल, उदित नारायण की आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए। अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पे।
2: ओके दीदी,
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम में फोन करने गीत सुने
1: हेलो।
0: जी। नमस्कार,
1: हम ग्राम पोस्ट डेयरी जिला छतरपुर से मंजू नामदेव बात कर रहे हैं दीदी।
0: मंजू नामदेव जी,
1: हाँ
0: कैसी हैं आप?
1: हम तो दीदी ठीक है, आप ठीक हो?
0: जी, हम भी बढ़िया हैं।
1: आज मेरा पहली बार कॉल लगा है, आपसे पहली बार बात हुई है,
0: अरे
1: बहुत
0: वाह,
1: अच्छा
0: अरे
1: लग रहा है।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है। आप पहली बार ही लग रहा है आपका फोन।
1: हाँ मेरा पहली बार लगा है, मेरे हस्बैंड लगाते हैं, मेरा लड़का भी लगाता है, आज मेरी पहली बार बात हो रही है आप
0: अरे
1: लोगों से।
0: वाह, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। हमारे परिवार में एक और व्यक्ति जुड़ गया। बढ़िया है। क्या करती हैं मंजू जी?
1: कुछ नहीं दीदी, मैं सिलाई करती हूँ।
0: सिलाई करती हैं, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ
0: और अभी क्या चल रहा है?
1: अभी बस सिलाई कर रही हूँ।
0: सिलाई ही कर रहे थे
1: हाँ और रेडियो सुन रहे
0: और
1: थे। हमको
0: रेडियो सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में? प्रेम
1: ये वाला गीत सुना दो, प्रेम रोग का, कोई
0: रोग
1: सा
0: से,
1: सुना देना प्रेम रोग का।
0: बिल्कुल प्रेम रोग फिल्म से कोई भी गीत,
1: हाँ कोई भी सुना देना, उसमें तो अच्छे सॉन्ग है सब।
0: बिल्कुल। आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म से अगला गीत। कार्यक्रम में फोन करने के
1: चलिए
0: लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह फोन करते रहिए
1: हाँ ओके दीदी।
0: जी। धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: नमस्कार, नमो से विनोद कुमार राम
0: जी। कैसे हैं आप?
1: आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: बढ़िया है।
0: क्या कहते हैं विनोद जी?
1: मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिटायर हो गया।
0: अच्छा
1: जी, और रेडियो सुनने का शौक है
0: जी। तो कौन सा गीत? हाँ जी,
1: फिल्म है ब्रह्मचारी।
0: ब्रह्मचारी
1: जी, गायक है मोहम्मद रफी।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में ब्रह्मचारी फिल्म से गीत सुनवाते हैं आपको
1: जी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी।
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: मैं जिला पन्ना मध्य प्रदेश से हर्षवर्धन पांडे बोल रहा हूँ और ये गणेश चतुर्थी और ये जो दस दिन का पर्व गणेश जी का जो वो चल रहा है, इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: हाँ, और वो मुझे गणेश जी से संबंधित जी सुनना है मुझे बता। ये वो देवा हो देवा तुमसे बढ़कर कौन का याद है, यदि ये आपके यहाँ बल गया हो तो वो ठीक है, दे तो गणेश जी का कोई दूसरा गीत आप ये इस त्योहार के अवसर पर सुनवा दीजिए।
0: लीजिए, आप सुनवाते हैं आपको मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हमसे बढ़कर कौन से ये गीत।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: कौन करे गीत सुने?
0: जी
1: मैडम, मैं जसराम राजे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सीपी से।
0: जसराम जी शिवपुरी से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: मैडम तो बढ़िया है।
0: तो क्या करते हैं जसराम जी?
1: बस तो कुछ नहीं मैडम, खेती किसानी का काम चलता है अपना तो।
0: अच्छा, क्या लगाया हुआ है?
1: अभी मैडम टमाटर लगे हुए, मिर्ची लगी है।
0: अच्छा,
1: सोयाबीन लगा हुआ है।
0: ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी खेत में ही है क्या आप?
1: नहीं मैडम, अभी तो घर पे हैं।
0: अच्छा, घर पे बैठ के रेडियो सुन रहे हैं।
1: हाँ हाँ मैडम।
0: बहुत अच्छी बात है। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: हमको मैडम गाना सुनना है। गाने के बोल रहेंगे, गोरे गोरे मुकड़े पे काला काला चश्मा। फिल्म सुहाग पिक्चर है मैडम।
0: सुहाग फिल्म से?
1: हाँ, सुहाग पिक्चर का है मैडम।
0: बिल्कुल, सुहाग फिल्म से आपको गीत सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: चलो ठीक है मैडम
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो लीजिए, प्रस्तुत है उदित नारायण की आवाज में ये अगला गीत फिल्म सुहाग से।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत
1: हेलो
0: सुने।
1: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार,
1: कोटा से बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से, भूपेंद्र कुमार गुप्ता
0: जी। क्या करते हैं भूपेंद्र जी, कैसे हैं?
1: सीनियर सिटीजन हूँ मैडम।
0: अच्छा, कैसे हैं, क्या हाल चाल है?
1: हाँ, और सब बढ़िया।
0: तो कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज, सुनवाते हैं?

0: गीत सुना दूं?
1: कौन सा गीत है नई रोशनी से?
0: नई रोशनी का मैं गुनहगार हूँ चाहे सजा दो, महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज।
1: जी जी जी, नई रोशनी से जो गीत आप कह रहे हैं उपलब्ध है लता मंगेशकर जी की आवाज में।
0: मैं गुनहगार हूँ जो जी चाहे सजा दो, महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज।
1: जी बिल्कुल उपलब्ध है, आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है, धन्यवाद
1: धन्यवाद।

0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
0: मैडम मेरे को गाना सुनना है।
1: अपना नाम बताएं।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी अच्छी हूँ मैडम
1: जी। अपना नाम बताइए।
0: मैं अमीना बी मंसूरी बोल रही हूँ, फालगाना का इंदौर।
1: अमीना बी मंसूरी जी,
0: जी
1: कहाँ से?
0: इंदौर से, फालगाना का इंदौर से।
1: अच्छा जी, बिल्कुल। कैसी हैं आप?
0: अच्छी हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैडम मेरे को दो रास्ते का सुना दीजिए।
1: दो रास्ते फिल्म से कौन सा गीत?
0: बिंदिया चमके की चूड़ी खनके की।
1: बिल्कुल, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में आपको ये गीत सुनवाते हैं।
0: जी
1: जी, कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करेगी सुने
1: जी। मैडम नमस्ते, मैं जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ। मैडम
0: कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया, मैं हमें को गाना सुनना था।
0: बिल्कुल,
1: पूरब और पश्चिम का, मनोज कुमार जी का है ना, ओम जय जगदीश सहारे की आरती।
0: बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: जी जी मैडम, धन्यवाद आपको।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कल से प्रदेश भर में सेवा से संकल्प अभियान चलाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। 17 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले इस अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत दस्तावेजों की निःशुल्क रजिस्ट्री की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कल शाम आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में उज्जैन की क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों सहित सांस्कृतिक धरोहरों और आइकनिक स्थलों पर भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित इंफोसिस परिसर में आज नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ किया जा रहा है। ये ब्लॉक 3,30,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में विकसित किया गया है, जो प्रदेश में उन्नत तकनीक क्षमताओं और रोजगार परक टैलेंट इकोसिस्टम को और सशक्त करेगा। रेलवे द्वारा पितृपक्ष में कयाजी तीर्थस्थल के लिए 27 सितम्बर से विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से गया के बीच चलेगी। भोपाल के प्रकाशन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आज शाम को 4 बजे संगीत सभा का आयोजन होगा। और मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल इंदौर जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं धामड़ी मनोरा से तुलसी राम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और उन्नत। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। आप सभी ने सुनना चाहा है कंगन फिल्म का नगमा। अनजान की बोल कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, आवाज़ महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए, अब आपको सुनवाते हैं जाबाज फिल्म का नगमा, जिसे गाया है किशोर कुमार और सपना अवस्थी ने। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, श्रीमती सरिता, प्रिंस सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, वैशाली, शैलेश, सुमित और ध्वनि। इसी गीत को सुनना चाहा है बरहानपुर से मुशर्रफ खान, जरीना, मुबारक, परवेज, रोजमीन, तैमूर, तनवी, रीना, रोजबाई, सनी बाबू और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। इसी गीत को सुनना चाहा है गुड्डा, गिरीश, निशा और इनके परिवार के सदस्यों ने। ये खत हमें भेजा है खैदागर से। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आइए आपको सुनवाते हैं कर्ज फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी की बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी तर्ज बनाई है। और सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा पालदा नाका इंदौर से, हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी थाना रोड बक्सर से, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी दंतेरी से, भगवत वर्मा। तो आइए सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आइए अब आपको सुनवाते हैं निकाह फिल्म का नगमा। सुनने की ख्वाहिशमंद है आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली और शमीम बानो। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीब, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब, साइमा, मुस्तबा, आफिया, रऊफ और सईद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली। उतारी से कालीचरण यादव, चांदनी यादव, दीपक और उर्मिला देवी यादव। आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इजाजत दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सभा हो, बढ़िया खेती के लाने सुनो ग्राम सभा हो।
1: ग्राम सभा प्रतिदिन शाम 7:21 पर खेती किसानी की समसामयिक जानकारियाँ, कृषि विशेषज्ञों से सलाह, बुंदेली समाचार, लोकगीत और मौसम की जानकारी। सुनते रहिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए रेडियो धारावाहिक संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत जमुनिया की 29वीं कड़ी।

मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब का ये मशहूर शेर है, और इसे हकीकत में देखना हो तो आप इसे जमुनिया की जिंदगी में देखिए। अक्सर होता यह है कि कोई इंसान जब जग की रीत से निराली राह चुनता है सफर के लिए, तब सफर की शुरुआत उसे अकेले ही करनी पड़ती है। यदि अकेलेपन और सफर में आने वाली आफतों से घबराए बिना वो सफर जारी रखता है, तो उस अकेले का सफर एक कारवा में बदल जाता है, एक एक कर लोगों के साथ जुड़ते जाने से। खुद का, परिवार का और गांव के विकास का जो सफर जमुनिया ने अकेले शुरू किया था, उस सफर में आज सारा फतेहपुर गांव जमुनिया के साथ है। जमुनिया के लिए पद यानी पावर नहीं, परिश्रम है। स्वार्थ नहीं, सेवा है। पिछले अंक में जमुनिया ने गांव वालों को सूचना का अधिकार कानून, उसके इस्तेमाल के तरीके, उपयोगिता और लाभ के बारे में बताया। आज के अंक में आइए सुनते हैं जमुनिया और कौन सा कदम उठाती है गांव और गांव

आमा, मेरे भगवान, सारा बदन टूट रहा है। मेरे भगवान, ये तो मंगल पापा की आवाज है, यानी काफी दिन चढ़ाया, बिस्तर छोड़ना ही होगा।

0: खोलती हूँ।
1: क्या बात है, सुबह 8 बजे तक घर के दरवाजे बंद थे?
0: वो रात भर सो नहीं पाई, बदन पिराता रहा, शायद बुखार भी था।
1: बुखार तो अभी भी है शायद।
0: इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बैची की दीप पुड़िया रखी है अभी तक, खा लूंगी तो उतर जाएगा बुखार। बस कितने बजे की है?
1: बस कौन जा रहा है, आप? बहुत अच्छे, कहीं नहीं जाएंगी आप, लेटे रहिए बिस्तर में, मैं चाय बनाता हूं आपके लिए।
0: अब मेरा आदेश है कि बैठे रहिए आप, चाय बनाती हूं। उम्र के साथ छोटी मोटी बीमारी तो लगी रहती है, इस कारण से काम नहीं रोका जाता।
1: अरे काम रोकने को कौन कह रहा है, बीमारी की हालत में सफर करने से बीमारी और बढ़ सकती है।
0: आज तहसील में अनुदान समिति की बैठक है, हम नहीं पहुंचे तो हमें मिलने वाली अनुदान की अगली किश्त घटाई में पड़ सकती है।
1: तो ठीक है, मैं अकेले ही चले जाता हूं, आप घर में आराम करेंगी, पंचायत दफ्तर नहीं जाएंगी। मैं राधा काकी को यहाँ ड्यूटी पर लगा जाता हूँ।
0: अरे उन्हें क्यों तकलीफ देते हैं?
1: अरे आस पड़ोस होता किस लिए है, हा? चाय बढ़िया थी। अच्छा मैं चलता हूँ।
0: अच्छा।
1: अपना ख्याल रखना।
0: बिल्कुल।

0: हाँ भैया, बस बस बस यहीं पर रोक दो। ये लो तुम्हारे पैसे। लगता है हाल ही में अस्पताल की पुताई हुई है।
1: मौसम का बुखार है, चिंता की कोई बात नहीं। ये ऊपर लिखी गोली सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार।

0: और ये नीचे लिखी गोली रात में सोने से पहले, ठीक है? जाओ अब।
1: नमस्ते डॉक साहब।
0: अरे आप, नमस्ते, आज इधर कैसे?
1: अस्पताल तो डॉक साहब, आदमी बीमार पड़ने पर ही आता है।
0: अच्छा, तो क्या बीमारी है?
1: सो तो आप बताएंगी कि क्या बीमारी है। रात भर नींद नहीं आती, काहे से कि रात भर चिड़िया बिटिया की याद आती है।
0: अरे रे रे रे रे, बड़ी ही खतरनाक बीमारी हुई है आपको। ये तो बिजली के झटकों से ही ठीक होगी।
1: बिजली के झटके? डाक साहब, ठीक होगी हमारी बीमारी, एकदम तंदुरुस्त है, देख लो तुम।
0: अच्छा ये बताइए, आज आप अकेले कैसे? माँ नहीं आई?
1: जमुनिया जी, जमुनिया जी ने कहा मेरे भरोसे बैठे रहते हो, अपने आप भी कुछ काम किया करो, जाओ अकेले मीटिंग अटेंड करो, सो हम आ गए।
0: फिजूल की बात, मीटिंग हो और माँ ना आए? तबीयत तो ठीक है ना माँ की?
1: हाँ हाँ ठीक है, और नहीं भी।
0: ठीक है और नहीं भी, ये कैसा जवाब है?
1: जुकाम हुआ है, सुबह हल्का बुखार भी था, मौसम की मारी समझो, लेकिन तुम फिक्र मत करो बिटिया, हम लोग हैं ना।
0: वो तो ठीक है लेकिन
1: वो कहावत है ना, बड़े मियाँ किसके, खाया पिया किसके। सो हम खिसकते हैं, हैं? और आधे घंटे बाद हमारी बस भी है।
0: ठीक है, माँ का हाल जानने के लिए मैं कल आती हूँ।
1: हाँ अच्छा बिटिया, अपना ख्याल रखना। हाँ
0: जी।

0: करमें, हमने तो सुना था आपकी तबीयत खराब है।
1: कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें।
2: राधा काकी को घर भेजकर दफ्तर आ बैठी आप? अरे आज के दिन आराम कर लेती।
1: अरे समाचारों का समय हो गया, जरा रेडियो की आवाज बढ़ाना।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 2 सप्ताह के उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी ने सरकार के कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी।
4: अरे ये कौन सा सरकारी कार्यक्रम है?
1: प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर बनाया है ये नया कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। वैसे उतना नया भी नहीं है, सन 2008 में बना है और चल रहा है।
0: इसका मतलब ये हुआ इसमें भी लोन वगैरह मिलता होगा।
1: बिल्कुल ठीक, निर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक का लोन मिलता है।
2: निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कुछ समझ नहीं आया।
1: ऐसा काम जिसमें कुछ बनाया जाता है, जैसे घड़े बनाना, खिलौने बनाना, दिया सिलाई या अगरबत्ती बनाना, जिल्द साजी या लिफाफे बनाना, गुड़ बनाना, बिंदी, तेल, कपड़े धोने का पाउडर या साबुन बनाने जैसे काम निर्माण क्षेत्र में आते हैं।
4: अच्छा, ये सब? और सेवा क्षेत्र में क्या क्या है?
1: सेवा क्षेत्र यानी लॉन्ड्री, हेयर कटिंग सलून, है ना, नल साजी, बिजली मिस्त्री, डीजल इंजन, पंप सेट का मैकेनिक, बिजली का सामान, लाउडस्पीकर आदि किराए पर देना, चाय की दुकान चलाना, ये सारे ही काम सेवा क्षेत्र में आते हैं।
2: यानी मनरेगा में सरकार या ठेकेदार की नौकरी नहीं करना चाहो तो खुद का काम

0: अरे आ रहे जहलुम से, आपसे मतलब।
1: काम के ना काज के, ढाई मन अनाज के।
0: देखो बापू, ये बात पुरानी हो गई, अब कोई नई बात तो बोलो।
1: ट्रैक्टर का पुर्जा लेने तहसील जाना था, लाट साहब चल दिए मोटरसाइकिल भटकाते
0: तो
1: हैं।
0: काहे, तहसील जाने के लिए बस भी तो हैगी।
1: अरे काम की खातिर हम बस से जाएं, और तुम जहां हमारे पैसों के पेट्रोल से मोटरसाइकिल घुमाओ।
0: देखो यार, ये बार बार पैसे की धौंस मत दिया करो बापू। हाँ
1: अरे क्यों रे, बाप से यार यार करके बातें करता है। अरे मुन्नी, हे मुन्नी, वो डंडा तो उठाना जरा।
0: अरे
1: ठहर
0: अरे
1: जा, तेरी मस्ती निकाल के रख दूंगा डंडे
0: अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो दद्दा? जवान लड़के पर कहीं हाथ उठाते हैं भला?
1: से। लड़का, अरे दुश्मन कहो दुश्मन।
0: हाँ, आखिरी बखत में मुंह में गंगा जल हम ही डालेंगे। हाँ
2: ए चुप, ऐसे बात करते हो बाप से?
1: आपने देख लिया इनके लक्षण, 20 के हो गए हैं, बेरोजगार बैठे हैं।
2: बेरोजगार है। लच्छन, तुम कल पंचायत ऑफिस आ जाना।
0: हैं?
2: अच्छा ये तो बताओ, कितना पढ़े हो तुम?
0: 12वीं पास हैं।
1: बैंक से कुछ लोन की जुगाड़ होती तो करवा दो साहब, थोड़ा बहुत पैसा हम भी लगाए देंगे इनके धंधे के लाने।
2: दद्दा, इन जैसे युवाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार ने चलाया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
0: ऐसो चचा, हम डीजल इंजन, पंप सेट वगैरह बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं।
2: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, देखो कल जरूर आ जाना पंचायत ऑफिस। हाँ
1: बड़ी मेहरबानी होगी साहब।
0: साहब कल ही आ जाते हैं हम।
2: हाँ ठीक है,
1: नमस्कार साहब। नमस्कार।
2: नमस्ते
0: साहब,
2: नमस्ते
0: नमस्ते साहब।
2: नमस्ते।

0: हेलो, नमस्कार शर्मा जी। जी जी जी, ऑफिस में हूँ। हाँ जी, जमुनिया भी है जी। फाइल तो तैयार है जी। हाँ हाँ, कल ही भिजवा दूंगा। अच्छा, नमस्कार। अरे लच्छन, आ गए तुम? अरे आओ आओ, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था।
1: साहब साहब, नमस्ते। हमारे कुछ दोस्त भी है साथ में। साहब सभी बेरोजगारी के मारे हैं, कहने लगे साथ चलते हैं, हम भी तो जानेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में, शायद हमारा भी भला हो जाए कछु।
2: ये तो बहुत अच्छा किया।
0: आ जाओ आ जाओ, तुम सब लोग आ जाओ और अपनी अपनी कुर्सी लेकर बैठ जाओ। है
1: देना भैया कुर्सी। ये चलिए।
2: जैन जी, अपने छोटे से गांव में भी युवा बेरोजगार हैं, बड़े दुख की बात है ना?
1: अरे सरपंच जी, का बताएं, आज आए हैं आपके पास, अब कछु हो सकता हो तो ठीक, नहीं तो पकड़ेंगे हम भी शहर का रास्ता।
0: अरे दोस्तों, गांवों से शहर की ओर जो पलायन हो रहा है, उसे रोकना भी तो एक उद्देश्य है इस कार्यक्रम का।
2: अब जैसे तुम, जैन जी ने मुझे बताया, डीजल इंजन और पंप सेट दुरुस्त करना जानते हो, क्यों?
1: हाँ सरपंच जी, जानते हैं ना, जानते हैं।
2: गांव में भी तो है ये दोनों चीजें, फिर तुम्हारे हुनर का लाभ तुम्हारे गांव वालों को मिलना चाहिए कि नहीं, ठीक है ना?
1: अब बात तो ठीक है आपकी, छोटी मोटी दुकान खोलने के लिए भी तो जगह चाहिए, अब पुर्जे चाहिए और ससुरा इन दोनों के लिए पैसे चाहिए, अब कहाँ से लाए जी पैसे?
0: अरे यही बताने के लिए तो बुलाया था तुमको यहाँ पर।
2: जिस कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध है।
1: ऐसो? लोन देगा कौन?
2: बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और तो और कुछ निजी क्षेत्र के बैंक भी।
0: इस कार्यक्रम में उद्यमों को दो श्रेणियों में रखा गया है, निर्माण उद्योग और सेवा उद्योग।
2: जैसे नाम से ही साफ है,

0: निर्माण उद्योग श्रेणी में वो उद्यम आते हैं जिनमें किसी चीज जैसे साबुन बनाना, बर्तन धोने का पाउडर, जूट का सामान, अचार मुरब्बा, स्लेट और स्लेट पेंसिल, प्लास्टिक का सामान, बांस और बेत का सामान, फोटो फ्रेम, ये सभी बनाने का काम किया जाता है।
1: और गुलाल, रंगोली, चूड़ी, पेंट, वार्निश, डिस्टेंपर, तेल, अनाज, दालों और मसालों को पैक करके बेचना, कत्था, गोंद, रेजिन और झाड़ू, मैंथॉल तेल, दलिया, पत्तों से दोने पत्तल बनाना, चमड़े का सामान, मोमबत्ती, कपूर, इत्र, अल्मुनियम के बर्तन और ना जाने क्या क्या, बहुत लंबी लिस्ट है ऐसी वस्तुओं की जिनको बनाना निर्माण उद्योग की श्रेणी में आता है।
0: और तुम जिस काम के लिए लोन चाहते हो वो सेवा उद्योग वाली श्रेणी में आता है।
2: देखिए सरपंच जी, हमारे सारे दोस्त हैं ना, ये सारे अगल अगल काम जानते हैं जी। ये घनश्याम, अरे ये साइकिल की मरम्मत जाने हैं, और किसान तो पंचर जोड़ता है, गोपी प्रेस करता है, और सलमान तो बाल काटने का काम जानता है।
0: अरे वाह,
2: वो जो आपके पास बैठा है चरण, आप जानते हैं नंबर वन का राजमिस्त्री हैगा।
0: अरे वाह,
1: ये तो बहुत बढ़िया है, ये सारे काम सेवा उद्योग की श्रेणी में आते हैं।
2: अरे हाँ जी, दो दोस्त अभी आए नहीं है जी, उनमें से एक बस स्टैंड पर चाय की दुकान और दूसरा वहीं पे ढाबा खोलना चाहता है।
0: ये भी वही है सेवा उद्योग।
1: पर हाँ, ढाबे पर मांसाहारी भोजन और शराब ना बिके।
2: ना जी, पेशाब अब करना क्या होगा?
0: एक आवेदन पत्र, साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, खादी और ग्राम उद्योग आयोग या खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड में जमा करना होगी। तुम्हारा प्रकरण गांव का है, इसीलिए
1: जिले का जिला उद्योग केंद्र यही आवेदन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के ले सकता है। तुम चाहो तो ये आवेदन सीधे बैंक में भी जमा करा सकते हो।
2: हाँ, हाँ साहब, बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा।

0: લક્ષ્મી મૈયા કી છે.
1: હરિ ઓમ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ, મંગલમ ગરુડધ્વજ, મંગલમ પુંડરીકાક્ષ, મંગલાય ચરવાહી. હરિ ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.
2: લો બેટા,
0: હા બાપુ,
2: આપ નારિયેલ ફોડો ઓ પ્રસાદ ચડાઓ.
0: હા બાપુ, અભી ચડાતે.
2: ઓર હા સુનો,
0: હા
2: યે નીબુ ઓર મિર્ચી દરવાજે કે બીચો બીચ લટકા દો.
0: અરે મુનિ, અરે યે લે પ્રસાદ કી થાલી, ઓર પ્રસાદ લોગો મે બાંટ દે.
3: દાદા ઓર લચ્છન, બહોત બહોત બધાઈ. અબ ડીઝલ ઇન્જન ઓર પંપ સેટ કે લિયે મેકેનિક
4: બહાર સે નહીં લાના પડેગા.
1: દુકાન કી બહોત બહોત બધાઈ ભૈયા.
3: લો, લગતા હૈ પહેલા ગ્રાહક ભી આ ગયા. બધાઈ હો, બધાઈ.
1: काय भैया, बैंक से लोन का आसानी से मिल गया?
2: अरे हाउ भैया, अब थोड़ी बहुत तो कर रहा भाई, तो कर नहीं पा रहा.
1: हाँ वो तो
0: ऐसो है, हमने तो एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीधे बैंक में जमा की, और वहां से बैंक वालों ने हमारी एप्लीकेशन वो क्या कहते हैं KBIC को भेज दी.
2: अरे हमारे बेटे का इंटरव्यू हुआ जिसमे वो पास हो गए, तब जाके मिला है लोन.
0: अरे वो कहा कहते हैं बापू, टास्क फोर्स, हाँ उसने लिया इंटरव्यू.
3: अच्छा, कितना मिल जाता है लोन?
2: अब कहा है कि वो ये सारी बात तो सरपंच जी को ही पता है.
1: अरे तो चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं.
3: कहा है जैन भैया, जे इस स्कीम में कितना लोन मिल जाता है?
5: निर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए तक, और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक.
4: निर्माण क्षेत्र में 10 लाख से ऊपर और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से ऊपर लोन लेना हो तो लोन लेने वाला कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए, और लोन के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए.
3: अच्छा, सारा पैसा क्या बैंक देती है, या कुछ अपनी गांठ से भी मिलाना पड़े?

0: ग्रामीण क्षेत्र वाले सामान्य वर्ग वाले को 10% खुद का अंशदान मिलाना पड़ता है और 25% सब्सिडी मिलती है और अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं आदि को 5% खुद का मिलाना पड़ता है और 35% सब्सिडी दी जाती है।
1: ये तो कमाल है रे भैया, है इतना भारी लोन और गार्ड से इतना कम पैसा लगाओ और ऊपर से सब्सिडी भी। वाह भैया वाह।
2: तो भैया हमारी दुकान आपने देखी है ना बस स्टैंड पर है, अब उसके लिए ज्यादा नहीं 2-4 लाख का लोन ही दिलवा दो।
3: योजना का नाम है रोजगार सृजन, यानी रोजगार पैदा करना, इसीलिए इसमें नया काम धंधा चालू करने के लिए लोन मिलता है।
0: हाँ, चमुनिया जी, जी। अब चले, दफ्तर को देर हो रही है।
3: हाँ, चलिए।
4: सरपंच जी, साहब जी, आप दोनों को राम राम।
3: खुश रहो।
0: खुश रहो। अच्छा।

0: नमस्ते गंगा बुआ।
1: अरे रूपस बिटिया, अरे खुश रहो। इसी बस से आई हो का?
0: हाँ बुआ, और बताइए तबीयत ठीक है ना आपकी?
1: हाँ बिटिया, तबीयत तो ठीक है।
0: अच्छा बुआ, अब चलती हूँ।
1: अच्छा
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे गर्मा गर्म भजिया उतारे हैं और साथ में कड़क मीठी चाय भी है, चखते जाइए।
0: अभी नहीं काका, देर हो रही है।
2: अरे का बिटिया, ऐसा करता हूँ घर के लिए बनवा देता हूँ। ए छोटो, ए फटाफट भजिए बांध दे पैकेट में।
3: अभी लाया, अभी लाया।
0: क्या काका, आपने भी जैसे नियम बना लिया है, बस स्टैंड से घर मुझे खाली हाथ नहीं जाने दोगे।
2: अरे बिटिया, आप सबकी सेवा करती हैं, है? आपकी छोटी सी सेवा हमको भी करने दो।
0: ठीक है काका, लाइए, दे दीजिए।

0: और बता चिरैया, क्या हाल है तुम्हारा शहर में?
1: मेरी छोड़ो अम्मा, खुद का हाल बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी?
0: जयंत जी भी ना किसी अखबार से कम नहीं है, समाचार दे आए होंगे तुम्हें। बेटा मौसमी बुखार था, कुछ खास नहीं।
1: वाह, बुखार में दफ्तर?
0: अरे बुखार था, है नहीं। तू गांव मिलने आई है कि लड़ने?
1: तुमसे लड़ने ही आई हूं।
0: हर बार की तरह कल सुबह की गाड़ी से लौटना होगा तुझे, है ना?
1: नहीं, इस बार पूरे 3 दिन रुकूंगी आपके पास।
0: अरे वाह,
1: यहाँ की डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, 3 दिन का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाना है हमें। और हाँ अम्मा, शहर से मेरे 2 डॉक्टर दोस्त और भी आने वाले हैं, वो दोनों कल शाम तक आ जाएंगे।
0: बहुत अच्छा मेरी चिरैया, तू ना तू अब आराम कर।
1: क्यों?
0: मैं दफ्तर जाती हूँ, गांव वालों को कैंप की सूचना भी तो देनी होगी।
1: ठीक है अम्मा, तुम जल्दी से होकर आओ, तब तक मैं खाना बनाकर रखती हूँ।
0: तू आराम कर।
2: कहते हैं रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 29वीं कड़ी अभी आप सुन रहे थे, संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे ट्रांसफर की राशि कितनी भी हो। MDR केवल 2000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट व्यापारिक लेनदेन पर

0: ही लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कल से प्रदेश भर में सेवा से संकल्प अभियान चलाया जाएगा। उज्जैन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे। 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत दस्तावेजों की निःशुल्क रजिस्ट्री की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर कल शाम आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में उज्जैन की क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक में 25 लाख से ज़्यादा दीप जलाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों सहित सांस्कृतिक धरोहरों और आइकॉनिक स्थलों पर भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। भोपाल के एम्स और भोपाल मेमोरियल रिसर्च अस्पताल के बीच कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें AI रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य किया जाएगा। भोपाल की प्रकाशन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आज शाम को 4 बजे संगीत सभा का आयोजन किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, इंदौर, जबलपुर संभाग के कुछ ज़िलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच पुरुष क्रिकेट T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला में भारत 2-0 की अजेय बढ़त बनाए हुए है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की है।
2: महिला सभा में शामिल आप सब सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ है आपकी दोस्त धम्ममित्रा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। सखियों, प्यार की बात हो रही हो तो दिल की बात करनी ही होगी, क्योंकि जब किसी पर प्यार आता है तो हम दिल से ही बात करते हैं। सखियों, दिल हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम कुछ भी करें या सोचें, उसका सीधा असर होता है हमारे दिल पर। प्यार की बातें हों या फिर गुस्से वाली बात, दिल की धड़कन तेज हो ही जाती है। यानी हमारी हर बात को दिल महसूस करता है। किसी के मीठे दो बोल जहां दिल को सुकून देते हैं, वहीं कड़वाहट भरी बातें सुनकर दिल में एक पीड़ा सी होने लगती है। कोई सुखद सूचना मिले या कोई सुखद दृश्य हो, तब खुशी से आंखें तो नम हो जाती हैं पर दिल खुशी से झूम उठता है। सखियों, हमारे हृदय यानी दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? आज के व्यस्त समय में दिल का ख्याल कैसे रखा जाए कि वो यूं ही धड़कता रहे? इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता, हृदय रोग के कारण और बचाव। हृदय रोग विशेषज्ञ और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत रस्तोगी, जो वर्तमान में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज एवं जया रोग अस्पताल में हृदय रोग विभाग में प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हैं, से बातचीत कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
3: हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम के इस भाग में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के प्रसिद्ध इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत रस्तोगी। तो आइए उनसे जानते हैं कि अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर रस्तोगी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
3: डॉक्टर रस्तोगी, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि हृदय रोग आखिर क्यों होता है, और आजकल कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक के मामले देखने को मिल रहे हैं, तो इसके पीछे प्रमुख कारण और जो रिस्क फैक्टर हैं वो क्या हैं?
4: हृदय रोग दो तरीके के होते हैं। एक जो वंशागुणत होते हैं, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वो हृदय रोग लेके पैदा होता है। कॉमन डिटेल बता दें, जैसे बच्चों के दिल में छेद होना या धमनी आपस में बंद ना होना, एक पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होता है, जो कि जब बच्चा पैदा होने के पहले माँ के खून और बच्चे के खून की सप्लाई में मदद करता है हार्ट को। वो जब होता है तो 7 दिन के अंदर वो बंद हो जाता है। तो कभी कभी वो बंद ना हो तो उसे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। इसके अलावा और बीमारियाँ होती हैं, जिसमें धमनियाँ गलत तरीके से जुड़ जाती हैं, हार्ट का छोटा होना जिसको हम हाइपोप्लास्टिक कहते हैं, वाल सिकुड़ा होना या वाल्व की विकृति होना।

0: ये कुछ बीमारियां होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मांसपेशियों की बीमारी होती है, जिसमें हार्ट की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। अब दूसरा एक ऐसा आता है कि जैसे बच्चा स्वस्थ है, सब कुछ है, लेकिन उसके जीन्स में बीमारी उसको मिल गई। जैसे कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होती है, वो जीन्स में मिल गई। या कुछ जो डिफेक्ट होते हैं वॉल के, जैसे बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होता है, वो जब बच्चा पैदा होता है कोई लक्षण नहीं होते, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वाल्व की सिकुड़न बढ़ती जाती है या वाल्व का लीकेज बढ़ता जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व। और जनरली 35 साल की उम्र के बाद ऐसे मरीजों को दिक्कत होती है। जो रेयर बीमारियाँ होती हैं वो कॉर्नरी आर्टरी की धमनी, जिनको जिनमें ब्लॉकेज होने से अटैक होता है, ऐसी धमनियों की बीमारी होती है। जैसे कभी कभी धमनी को नॉर्मली जो है एओर्टा से निकलती हैं, अगर उसमें से एबनॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी से निकल जाए जो कि गंदा खून ले जाती है, तो उसको एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे का हृदय कमज़ोर होता है जब वो पैदा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिलता। दूसरी बीमारी ऐसी होती है कि कॉर्नरी आर्टरी नॉर्मल है लेकिन मांसपेशी के बीच में से निकल के ऊपर आए, बड़ा होता है वो इंसान, मेहनत करता है तो खून की सप्लाई बंद हो जाती है। उसके बाद एक बीमारी होती है कि एबनॉर्मल कोर्स हो, तो एबनॉर्मल कोर्स होने के अंदर कभी कभी धमनियों में रुकावट आ जाती है। तो ये तो हो गई वो बीमारियां जो कि आम आदमी को वंशागुणत होती हैं, मतलब पैदा होने के साथ होती हैं, जन्मजात होती हैं। लेकिन अब जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि यंग लोगों में हार्ट अटैक होने, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो आप इसको तीन एंगल से समझ लिए, हरी वरी एंड करी। हरी, हर चीज में जल्दी, आपको तुरंत जल्दी पहुंचना है, टाइम कम है, जल्दी करना है, तो इससे क्या होगा, आप अपने बॉडी के गंदे हार्मोन्स बढ़ा रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैटाकोलामींस। तो यही आपके कैटाकोलामींस लेवल, जब आप हरी में होते हैं या वरी में होते हैं तो आपके कैटाकोलामींस बढ़ जाते हैं और ये धमनियों को सिकोड़ते हैं और ये रक्त कोशिकाओं के अंदर चर्बी को बढ़ाते हैं, जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये तो मुख्य कारण। अब दूसरा, खान पान में परिवर्तन। देखिए,
1: करी,
0: आम आदमी, आपको याद होगा पहले बचपन में क्या होता था, माँ घर में खाना बनाती थी, आपको ब्रेकफास्ट में रोटी मिलता था, दही मिलता था और कुछ सब्जियाँ मिलती थी। आजकल सारे जॉब ओरिएंटेड है, मदर फादर दोनों जॉब में, बच्चों को क्या खाने को मिलता है, सेकी हुई ब्रेड या मिल्क, जो कि स्टोर्ड मिल्क है, फ्रेश मिल्क नहीं है। तो मॉर्निंग में जब आपको बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उस समय आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे, आप ऐसा फूड खा रहे हैं जिस इज़ रिच इन फैट, रिच इन कोलेस्ट्रॉल, और आपकी डाइट में से सब्जियाँ ख़त्म हो गई, फ्रूट्स ख़त्म हो गए, तो इससे क्या हुआ, यू हैव इंक्रीज मोर ऑफ फैट इन योर डाइट। दूसरा, कुछ लोग लेट खाना खाते हैं, जैसे खाना खाए तुरंत सो गए, उससे क्या हुआ, बॉडी मेटाबॉलिज्म सोने के टाइम स्लो है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है, पूरा खाना आपका एब्जॉर्ब हो गया, पूरा चर्बी आपके शरीर की बढ़ गई, आप फैट हो गए। तो बेसिकली खाने का समय सूर्य के हिसाब से निश्चित होना चाहिए, सूर्य उदय पर खाना और सूर्य ढलने के बाद आपको खाना नहीं खाना, और ये मान के चलिए कि दिन में कम से कम 3 दफ़े आप सब्जी या सलाद का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं और सीजन का फल खाएं, मेगा फल खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, नेचर ने अपने इतना अच्छा सिस्टम दिया है, आपकी नेचर ने आपको वो फल उसी समय दिया है जब इसकी आपको ज़रूरत है। अब नेक्स्ट कॉज जो आपको मैं कह रहा था वो वरी। वरी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो वर्किंग है। ये हम लोगों के जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा गया है कि जो लोग 7 घंटे से कम सोते हैं उनमें हार्ट अटैक की संभावना 8-12% बढ़ जाती है। तो आप अपने गलत हार्मोन्स लिब्रेट कर रहे हैं, आप टेंशन में, स्ट्रेस में हैं, तो दैट अफेक्ट्स योर हार्ट, उससे आपको ब्लड प्रेशर होगा, लॉन्ग टर्म में आपको उससे डायबिटीज़ होगी, एबनॉर्मल हार्मोन सेक्रेट होंगे, आप नहीं सोएंगे तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ये जो मेन फैक्टर्स हैं, अब ये फैक्टर्स जनरेट हो रहे हैं यंग जनरेशन में, बिकॉज यंग जनरेशन जो है वो दे वांट टू अचीव एवरीथिंग वेरी अर्ली, हर चीज़ जल्दी चाहिए। अब आप देखिए, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका किसी से इंट्रैक्शन नहीं है, तो तो उससे क्या हो रहा है कि आपको डिप्रेशन की संभावना बढ़ रही है, अंतर्मुखी हो रहे हैं आप, अपने विचार नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, तो ये भी आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
1: अब अगला प्रश्न ये है कि हृदय रोग या हार्ट अटैक के ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण होते हैं जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आमतौर पर लोग कहते हैं गैस हो गया या ऐसा सोच लेते हैं।
0: देखिए, गैस नाम की कोई बीमारी नहीं होती, ये आप लोगों की गलत धारणा है कि मुझे गैस बन गई। काफ़ी लोग जिनको ऐसा लगता है कि गैस ऊपर चढ़ गई है, वो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक के शुरू के लक्षण हैं। तुरंत आस पास के डॉक्टर से संपर्क करिए और तुरंत अपना ECG कराइए। पहला ECG नॉर्मल है तो अभी भर्ती हो जाइए। अधिकतर शुरू के 6 घंटे में ECG में परिवर्तन नहीं आते, ये परिवर्तन 12 घंटे तक आ सकते हैं। तो अगर आपका पहला ECG नॉर्मल है तो ये मत सोचिए कि आपको हार्ट अटैक नहीं है। जो टिपिकल लक्षण हार्ट अटैक के होते हैं वो सेंटर बीच छाती में अचानक दबाव का महसूस होना और वो दबाव आपकी पूरी छाती में फैलना और दोनों हाथों में जाना। कुछ एटिपिकल हार्ट अटैक के दर्द होते हैं, जैसे चलने में आपको छाती में भारीपन आना, आपको हार्ट अटैक के आने की संभावना बताता है। आप रोज़ ऑफिस की 3 मंजिल चढ़ते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, आज आप 3 मंजिल चढ़ के गए, छाती में दर्द हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ गई।
1: दर्द या दबाव,
0: दोनों, दर्द भी हो सकता है दबाव भी। एक अजीब सी बेचैनी महसूस होगी, जैसे कुछ भारीपन आ गया, दर्द भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। आप रुकेंगे वो भारीपन और दर्द चला जाएगा। दूसरा, जो एटिपिकल प्रेजेंटेशन, मतलब जो लोगों को नहीं मालूम, बुजुर्ग लोगों में अत्यधिक कमजोरी होना, अचानक अत्यधिक कमजोरी का महसूस होना बहुत ज़रूरी है। चलने में पीठ में दर्द आना, गर्दन के नीचे आप जब मेहनत करें चलें दर्द आना, ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। ये भगवान आपको पहले से बता देता है, आप जल्दी समझ जाएं तो बड़े अटैक से आप बच सकते हैं।
1: इसी से जुड़ा प्रश्न है कि क्या महिलाओं में और पुरुषों में ये लक्षण अलग अलग हो सकते हैं क्या?
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, महिलाओं में एक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, वो उन्हें हार्ट अटैक से रोकता है। तो जब तक महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल जारी रहता है, जिसको हम लोग महावारी कहते हैं, जब तक वो हार्ट अटैक उन्हें कम होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा रहता है। जैसे ही ये बंद होती है, उनकी हार्ट अटैक की संभावना पुरुषों के बराबर हो जाती है। औरतों में हार्ट अटैक की संभावना कम होती है। आजकल के परिवेश में औरतों में हार्ट अटैक की संभावना क्यों बढ़ रही है, उसके मुख्य कारण हैं, एक तो अधिकतर वुमेन वर्किंग है, तो उनमें स्ट्रेस फैक्टर बहुत है, काम भी करना है, नंबर 1। नंबर 2, डाइट चेंज बहुत आ गया औरतों में, मतलब अब अधिकतर वर्किंग वुमेन जो है वो बाहर खाना पसंद करती हैं। 3, स्लीप कम हो गई, नींद कम हो गई, तो ये कुछ मुख्य कारण है। 2, स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गया है औरतों में। गांव में तो हम ये देखते हैं, हमारे पास मरीज आते हैं, अधिकतर लेडीज़ गांव में स्मोक करती हैं। तो और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि शहरों में भी अब स्मोकिंग का इंडिसेंट औरतों में बहुत बढ़ गया है। तंबाकू मुख्य कारण, अगर आप नंबर 1 कारण माने तो तंबाकू का सेवन पूरे विश्व में नंबर 1 कारण है हृदयघात के लिए, हृदय रोग होने के लिए, हाइपरटेंशन होने के लिए तंबाकू का सेवन।
1: जी, तो महिलाओं की जीवन शैली, तनाव, काम का दबाव, आपने सबका अभी जिक्र किया, और अपने हृदय को वो स्वस्थ भी रख पाएं, तो इसके लिए उनका जो रोज़मर्रा का जो जीवन है उसमें किन ऐसे 4-5 टिप्स जैसे आप बताइए, जिससे कि वो अपने आप को सुरक्षित भी रख पाएं हृदय रोगों से।
0: आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपनी दिनचर्या सूर्य के हिसाब से चलें, आप जल्दी उठें, वॉकिंग करें, योगिक क्रियाएं करें, उसमें मुख्य है अलोम विलोम, उससे आपके बॉडी की ऑक्सीनेशन होगा। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार जरूर करें, आपकी उम्र बढ़ना भी कम हो जाएगी, एंटी एजिंग इफ़ेक्ट होगा, आपका बॉडी फिगर में रहेगी, उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप कोई जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक जगह खड़े होके आप रस्सी कूद सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 से कम है तो आप रस्सी कूदना भी जारी रख सकते हैं, और एक जगह खड़े होके आप कदम ताल भी कर सकते हैं, तो ये बेस्ट है। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी। 3, कम से कम 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो आपके हेल्थ के लिए ख़राब है, तो आपको कभी हार्ट अटैक भी नहीं होगा और हरदम आप डॉक्टर से आप दूरी बना के रख सकते हैं।
1: अंत में आप एक हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, एक ही लाइन में मैं आपको बताऊंगा, हरी वरी एन करी। हरी, तेज़ी से बचिए, जिस रफ्तार से आपका जीवन चल रहा है उसे चलने दीजिए, ज़्यादा उसमें धक्के मत लगाइए। वरी, चिंता ना करिए। करी बिल्कुल नहीं खाइए, तला हुआ। और हरी में हिंदी का हरी, कौन सा हरी? भगवान का पूजन, स्पिरिचुअल लइए। कम से कम दिन में 10 से 15 मिनट पूजा जरूर करिए और ध्यान करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी हार्ट अटैक नहीं। मेडिटेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
1: जी, मेरे ख्याल से आप जो कहना चाहते हैं वो यही कि दिल को आप अपने जितना मासूमियत बचा के रखेंगे उतना वो स्वस्थ रहेगा।
0: आप अपनी जीवन शैली को अच्छा रखिए तो आप लंबे जिएंगे, कुछ नहीं होगा। और साल में एक दफ़े ये मान लें कि आपको अपना चेकअप कराना है, जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हो अपनी सारी जाँचें कराएं। एक डेट फिक्स कर लीजिए साल की कि इस दिन हमें पूरे परिवार की जांच कराना है। उससे ये होगा कि आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सारी जांचें, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और फ्री होती हैं, तो आप वहाँ ओपीडी में जाके अपनी सारी जांचें करा सकते हैं। सारे ब्लड टेस्ट उपलब्ध हैं, सारे हार्ट की जांचें उपलब्ध हैं, आप कभी भी आके जांचें करा सकते हैं।
1: डॉक्टर रस्तोगी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हृदय रोग से संबंधित इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रही थी ये भेंटवार्ता, हृदय रोग के कारण और बचाव, हृदय रोग विशेषज्ञ और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुनीत रस्तोगी से बातचीत कर रही थी डॉक्टर विभूति सिंह। सखियों, दिल की बात हो रही है तो आइए सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत।

सखियों, इस प्यारे से गीत के बाद आइए बात करते हैं ओजोन लेयर की। सखियों, ओजोन लेयर को पर्यावरण का प्राकृतिक कवच कहा जाता है। ओजोन परत ओजोन गैस की एक पतली परत है जो वायुमंडल के समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये हमारे वायुमंडल के लिए एक कवच या सुरक्षात्मक आवरण बनाती है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है, जबकि ये परत पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। सखियों, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के कारण पृथ्वी के जीवों में त्वचा के कैंसर, आंखों में मोतियाबिंद और भी अनेक अनुवांशिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। शीघ्र वृद्धावस्था, सनबर्न के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है। अगर किसी भी कारण से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है तो पर्यावरण पारितंत्र का संतुलन अपने आप बिगड़ने लगता है, जिसके कारण कृषि, सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधों के साथ साथ जलीय जीवों पर भी गंभीर खतरा मंडराने लगता है। अनेक शोधों से पता चला है कि 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तेजी से गिरावट आई है, यानी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा है। सखियों, अब आप सोच रही होंगी कि आखिर ओजोन लेयर जो हमसे इतनी ऊपर है फिर भी खराब कैसे हो रही है। सखियों, ओजोन लेयर मुख्य रूप से मानव निर्मित रासायनिक पदार्थों और कुछ प्राकृतिक कारकों से प्रभावित होती है। फ्रिज, एसी, एरोसॉल स्प्रे और फोम उद्योग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ये वातावरण में मिलकर तेजी से ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। अग्निशमक यंत्रों में इस्तेमाल होने वाला हेलोन ब्रोमीन छोड़ता है, इससे भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा अन्य कई ऐसे रसायनों का भी हम इस्तेमाल करते हैं जिससे ओजोन परत को हानि पहुँचती है। ये सभी मानवीय कारण थे। अब बात करते हैं प्राकृतिक कारणों की। सखियों, प्राकृतिक कारणों में एक बड़ा कारण ज्वालामुखी विस्फोटों का होना है। इससे निकलने वाली गैसें क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड हैं जो ओजोन परत को अस्थायी रूप से प्रभावित करती हैं। सखियों, ओजोन लेयर का क्षरण होना एक गंभीर समस्या है हम सब के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के लोग इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही हमें भी इसे रोकने में सहयोग करना होगा। इसके लिए ओजोन लेयर को नुकसान करने वाले पदार्थों का उपयोग कम से कम करना होगा और वाहनों का उपयोग भी कम करना होगा, क्योंकि वाहनों से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं जो वैश्विक तापमान वृद्धि और ओजोन परत में कमी का कारण बनते हैं। सखियों, ये पृथ्वी, ये पर्यावरण हम सब का है, इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम सब मिलकर इसकी सुरक्षा करें, इसका ध्यान रखें और ओजोन लेयर को नुकसान होने से रोकें।

0: सखियों, मातृभाषा किसी भी देश, प्रदेश या व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि मातृभाषा ही पहचान बनाती है और इसी से हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर उसकी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। सखियों, जन्म से हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही हमारी मातृभाषा बन जाती है। सभी संस्कार एवं व्यवहार हम इसी के द्वारा पाते हैं। आजकल के बच्चों का हिंदी या मातृभाषा के प्रति रुझान कम हुआ है। साधारण बोलने व लिखने में भी दूसरी भाषा के कुछ शब्द आ ही जाते हैं। मातृभाषा के प्रति घटती रुचि का एक कारण यह भी है कि कुछ माता पिता खुद भी हिंदी बोलने लिखने से कतराते हैं। माना कि बच्चों की पढ़ाई, ऑफिस के काम इंग्लिश में होते हैं, पर हिंदी में जिस तरह से हम अपनी बात को अच्छे से कह पाते हैं, समझा पाते हैं, हमारी बातों का भाव वो अन्य किसी भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सखियों, अगर देश की सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित व संवर्धित करना है तो अपनी मातृभाषा से भी प्रेम करना होगा और इसके लिए बच्चों में मातृभाषा के प्रति प्रेम और लगाव भी बढ़ाना होगा। इसका सबसे प्रभावी तरीका है बच्चों के साथ घर में ज़्यादातर समय मातृभाषा में ही बातचीत की जाए। बच्चे अपने आसपास की आवाज़ों और बातचीत को सुनकर सबसे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए घर के माहौल को मातृभाषा अनुकूल बनाना सबसे ज़रूरी है। बच्चों को खेल खेल में और बिना किसी दबाव के मातृभाषा सिखाने के लिए ज़रूरी है घर में सभी सदस्य मातृभाषा में ही बात करें। बच्चों को सुलाते समय या खेलते समय अपनी भाषा की पारंपरिक लोरियां व लोकगीत सुनाएं। पंचतंत्र, लोक कथाएं या पारिवारिक इतिहास की कहानियां भी दादा दादी या नाना नानी के माध्यम से बच्चे जानते हैं। बच्चों को हिंदी में ही कार्टून या कविताओं वाले वीडियो दिखाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों को सक्रिय रूप से शामिल करें। सबसे ज़रूरी बात, समाज में, कार्यस्थल पर मातृभाषा में बात करने में गर्व महसूस करें, ना कि शर्म। सखियों, देखिए ना, बात करते करते समय का तो पता ही नहीं चला। अब समय हो रहा है हमारे जाने का, तो आप अपनी सखी धम्ममित्रा को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र के योगदान से लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए लोकगीत।

विनोद कुमार सेन और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे चेतावनी लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पल्लव शर्मा के गाए गीत और भजन। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं ये गीत। कार्यक्रम की प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की है।

पल्लव शर्मा के गाए गीत और भजन अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं चित्रा की आवाज़ में महबूब का लिखा गीत। संगीत ए आर रहमान का है और फिल्म का नाम है बॉम्बे।

परदेश फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत नदीम श्रवण का है।

0: परदेश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। यह सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित इन्फोसिस परिसर में नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। ये ब्लॉक 330,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में विकसित किया गया है, जो प्रदेश में उन्नत तकनीकी क्षमताओं तथा रोजगार परक टैलेंट इकोसिस्टम को और सशक्त करेगा। इन्फोसिस मध्य प्रदेश के बढ़ते टैलेंट पूल का लाभ लेने के साथ प्रदेश के शैक्षणिक एवं तकनीकी इकोसिस्टम के साथ अपना जुड़ाव भी मजबूत करेगी। इसके अंतर्गत स्किलिंग कार्यक्रमों एवं संस्थागत साझेदारियों के माध्यम से IIT इंदौर, IIM इंदौर और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के साथ सहभागिता को विस्तार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की राष्ट्र और जनसेवा की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अभियान की तैयारियों को लेकर कल इंदौर और उज्जैन के कार्यकर्ताओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि 17 सितंबर को उज्जैन से अभियान के शुभारंभ और दीपोत्सव की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उज्जैन से अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत प्रदेश में 58 लाख दीपों से आशीर्वाद का दिया जलाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए जन कल्याण, विकास कार्यों और देश में आए सकारात्मक बदलावों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आशीर्वाद का दिया, नमो सेवा गाथा, कहानी बदलाव की, सेवा ज्योति यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु सरकार आपके द्वार, प्रत्येक शुक्रवार जन कल्याण और जन संवाद की विशेष गतिविधियां। वहीं जनसेवक महाकुंभ के अंतर्गत पंचायत से पार्लियामेंट तक देश भर के सरपंचों और जन प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आइए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के सेवा संकल्प को जन भागीदारी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं।
0: वहीं प्रदेश भर में विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सेवा ज्योति कलश यात्रा विकसित भारत का संकल्प का आयोजन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। यात्रा जिले के कस्बों, गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए विधानसभा तथा वहां से जिला मुख्यालय पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। जिले की प्रत्येक विधानसभा से एक सेवा ज्योति कलश यात्रा निकाली जाएगी। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर जोर पकड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 19 सितंबर के बाद नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है। मानसूनी सीजन में अब तक 33 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है, जबकि सामान्य औसत 37.3 इंच है। मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। नेपाल के उत्तर पश्चिमी मुगू जिले में आज तड़के 3 घंटे के भीतर 2 भूकंप आए। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार पहले भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.5 और दूसरे की 4.2 थी। दोनों भूकंपों का केंद्र मुगू जिले के कलई के आसपास रहा। फिलहाल किसी के हताहत या नुकसान की खबर नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले की सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए 7 दावेदारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। झाबुआ पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत खतरनाक स्टंट, तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले 289 लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की।

और कटनी में साइबर अपराधों के वैधानिक प्रावधानों और विवाद समाधान प्रक्रिया के प्रति जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित ई दक्ष केंद्र में किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी, छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी। श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
2: The question should not only be
3: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा। बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है। साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके।
1: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई। घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है। मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
5: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
7: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
8: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट

0: चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
1: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का ये भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
4: वासुदेव कमला।
5: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बु लक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भवा ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी। इस अवसर पर देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोक कर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनवाते हैं बगावत फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को पसंद किया है सुधीर, नूतन, माया कुमार, संदीप, गौरव, मीनाक्षी तिवारी। ये हमारे श्रोता है मिल्टन टाउन कारवन से, और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित दत्तरेंगी के। ये हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं भागवत वर्मा, और इसी गीत को पसंद किया है पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर बगावत फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत आपकी नज़र करने जा रहे हैं शोर फिल्म से। इसे गाया है मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा चित्तर और साथियों ने। गीत लिखा है राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और इस गीत को सुनना चाहा है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और स्वीट बेबी प्रियांशी, और बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बीबी स्वाति माखीजा, पूजा, शरद कुमार और पूरा माखीजा परिवार। तो सुनते हैं शोर फिल्म का ये गीत।

अभिजीत गवाडकर राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, बदलापूर मुंबई से सिद्धांत गवाडकर, प्रणीता, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से शैलेश गवाडकर,

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं गुमराह फिल्म का गीत आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत रवि का है और इस गीत को पसंद किया है आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। ये हमारे श्रोता है छाबड़ा राजस्थान से। और धामणी मानोरा महाराष्ट्र से इसी गीत को पसंद किया है तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण, प्रज्वल और अनुत्तर डेरे ने। और घंटाघर चौक खंडवासी ये फरमाइश है।

चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज।

0: शब्बीर कुमार की आवाज में अभी आप एक जान है हम फिल्म का गीत सुन रहे थे। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। वक्त हो चला है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के सुपर कॉरिडोर स्थित इन्फोसिस परिसर में नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक का शुभारंभ करेंगे। ये ब्लॉक 330,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में विकसित किया गया है, जो प्रदेश में उन्नत तकनीकी क्षमताओं तथा रोजगार परक टैलेंट इकोसिस्टम को और सशक्त करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की राष्ट्र और जनसेवा की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश भर में विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य सेवा ज्योति कलश यात्रा विकसित भारत का संकल्प का आयोजन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। ये यात्रा जिले के कस्बों, गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए विधानसभा तथा वहां से जिला मुख्यालय पहुंचेगी, जहां पर इसका समापन होगा। नेपाल के उत्तर पश्चिमी मुगु जिले में आज तड़के 3 घंटे के भीतर 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के अनुसार पहले भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.5 और दूसरे की 4.2 थी। और मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, इंदौर और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडिया वेव पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडिया वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ की जाएगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र की होगी। फिल्म संगीत 5:33 पर और शाम 6:30 पर। इस बीच शाम 6 बजे सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होगी कार्यक्रम ग्राम सभा। समय होगा 7:21। रात 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे एशिया गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। आठ बजकर तीस मिनट पर सुर्खियों में

रात 10 बजे सुनिएगा नाटक खेल नहीं है जिंदगी, लेखक सतीश मेहता, प्रस्तुतकर्ता अनिल मुंशी। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आपको सुनवाएंगे रूपाली पांडे का ध्रुपद धमार, राग होगा बिहार। संगतकार हैं पखावज पर कौशल किशोर द्विवेदी। ये थी हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच की ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और OTT वेव्स ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:25 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त करते हैं। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान DTH के ऑडियो चैनल पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए लोकगीत।

विनोद कुमार सेन और साथियों के गाए लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इसमें सुनिए पल्लव शर्मा के गाए गीत और भजन। पहली रचना गीत है।

पल्लव शर्मा के गाए गीत और भजन अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत। अभी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए दाग फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

सुहाग इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिए इस गीत को शुरू से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कभी कभी इस फिल्म का गीत अब आपके रेडियो सेट पर किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है साहिर ने और संगीत खयाम का है।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आगे बढ़कर सुनवाते हैं गुलशन बावरा का लिखा गीत कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में। आवाजें शैलेंद्र सिंह और कंचन की है। फिल्म का नाम है रफू चक्कर।

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में अब सुनते हैं गुलशन बावरा का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने, और फिल्म का नाम है खेल खेल में।

झूठा कहीं का। जी हाँ श्रोताओं, ये नाम है फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में। गुलशन बावरा के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देश हित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित 2 दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थीं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान सभी जिलों में नशा मुक्ति रैली, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी प्रतियोगिताएं, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, ग्राम सभाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सहित विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की 20 महिला कैडेटों ने लद्दाख में अपराजिता परागला 2026 उच्च पर्वतीय लंबी दूरी का ट्रैक सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये कैडेट 30 दिन में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ग्लेशियर, बर्फ के मैदान और नदी घाटियों सहित अत्यधिक ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 4 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार माजिद शोला की जादुई आवाज़ में कव्वाली समात फरमा रहे थे। सामईन, हमारी

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशां, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती है मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक।
1: दिल करे हाए,
2: हाए।
1: कोई ये बताए क्या होगा।
3: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं,
0: और
3: फिर लें आनंद इस मौसम का।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। संग्रहालय से इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 29वीं कड़ी।

मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब का ये मशहूर शेर है, और इसे हकीकत में देखना हो तो आप इसे जमुनिया की जिंदगी में देखिए। अक्सर होता यह है कि कोई इंसान जब जग की रीत से निराली राह चुनता है सफर के लिए, तब सफर की शुरुआत उसे अकेले ही करनी पड़ती है। यदि अकेलेपन और सफर में आने वाली आफतों से घबराए बिना वो सफर जारी रखता है, तो उस अकेले का सफर एक कारवा में बदल जाता है, एक एक कर लोगों के साथ जुड़ते जाने से। खुद का, परिवार का और गांव के विकास का जो सफर जमुनिया ने अकेले शुरू किया था, उस सफर में आज सारा फतेहपुर गांव जमुनिया के साथ है। जमुनिया के लिए पद यानी पावर नहीं, परिश्रम है, स्वार्थ नहीं, सेवा है। पिछले अंक में जमुनिया ने गांव वालों को सूचना का अधिकार कानून, उसके इस्तेमाल के तरीके, उपयोगिता और लाभ के बारे में बताया। आज के अंक में आइए सुनते हैं जमुनिया और कौन सा कदम उठाती है गांव और गांव

माँ, मेरे भगवान, सारा बदन टूट रहा है। मेरे भगवान, ये तो मंगल पापा की आवाज है, यानी काफी दिन चढ़ाया, बिस्तर छोड़ना ही होगा।

0: खोलती हूँ।
1: क्या बात है, सुबह 8 बजे तक घर के दरवाजे बंद थे?
0: वो रात भर सो नहीं पाई, बदन पिराता रहा, शायद बुखार भी था।
1: बुखार तो अभी भी है शायद।
0: इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बैची की दीप पुड़िया रखी है अभी तक, खा लूंगी तो उतर जाएगा बुखार। बस कितने बजे की है?
1: बस

0: कौन जा रहा है?
1: आप?
0: बहुत अच्छे, कहीं नहीं जाएंगी आप। लेटे रहिए बिस्तर में, मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए।
1: अब मेरा आदेश है कि बैठे रहिए आप, चाय बनाती हूँ। उम्र के साथ छोटी मोटी बीमारी तो लगी रहती है, इस कारण से काम नहीं रोका जाता।
0: अरे काम रोकने को कौन कह रहा है, बीमारी की हालत में सफर करने से बीमारी और बढ़ सकती है।
1: आज तहसील में अनुदान समिति की बैठक है, हम नहीं पहुंचे तो हमें मिलने वाली अनुदान की अगली किश्त खटाई में पड़ सकती है।
0: तो ठीक है, मैं अकेले ही चले जाता हूँ, आप घर में आराम करेंगी, पंचायत दफ्तर नहीं जाएंगी। मैं राधा काकी को यहाँ ड्यूटी पर लगा जाता हूँ।
1: अरे उन्हें क्यों तकलीफ देते हैं?
0: अरे आस पड़ोस होता किस लिए है, है? चाय बढ़िया थी। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना।
1: बिल्कुल।

0: हाँ भैया बस बस बस यहीं पर रोक दो, ये लो तुम्हारे पैसे। लगता है हाल ही में अस्पताल की पुताई हुई है।
1: मौसम का बुखार है, चिंता की कोई बात नहीं। ये ऊपर लिखी गोली सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार, और ये नीचे लिखी गोली रात में सोने से पहले, ठीक है? जाओ अब।
0: नमस्ते डॉक साहब।
1: अरे आप, नमस्ते, आज इधर कैसे?
0: अस्पताल तो डॉक साहब, आदमी बीमार पड़ने पर ही आता है।
1: अच्छा, तो क्या बीमारी है?
0: सो तो आप बताएंगी कि क्या बीमारी है। रात भर नींद नहीं आती, काहे से कि रात भर चिड़िया बिटिया की याद आती है।
1: अरे रे रे रे रे, बड़ी ही खतरनाक बीमारी हुई है आपको। ये तो बिजली के झटकों से ही ठीक होगी।
0: बिजली के झटके? डॉक साहब, ठीक होगी हमारी बीमारी, एकदम तंदुरुस्त है, देख लो तुम।
1: अच्छा ये बताइए, आज आप अकेले कैसे? माँ नहीं आई?
0: जमुनिया जी, जमुनिया जी ने कहा मेरे भरोसे बैठे रहते हो, अपने आप भी कुछ काम किया करो, जाओ अकेले मीटिंग अटेंड करो, सो हम आ गए।
1: फिजूल की बात, मीटिंग हो और माँ ना आए? तबीयत तो ठीक है ना माँ की?
0: हाँ हाँ ठीक है, और नहीं भी।
1: ठीक है और नहीं भी, ये कैसा जवाब है?
0: जुकाम हुआ है, सुबह हल्का बुखार भी था, मौसम की मारी समझो, लेकिन तुम फिक्र मत करो बिटिया, हम लोग हैं ना।
1: वो तो ठीक है लेकिन
0: वो कहावत है ना, बड़े मियाँ किसके, खाया पिया किसके। सो हम खिसकते हैं, हैं? और आधे घंटे बाद हमारी बस भी है।
1: ठीक है, माँ का हाल जानने के लिए मैं कल आती हूँ।
0: हाँ अच्छा बिटिया, अपना ख्याल रखना। हाँ
1: जी।

0: चक्कर में? हमने तो सुना था आपकी तबीयत खराब है।
1: कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें।
2: राधा काकी को घर भेजकर दफ्तर आ बैठी आप? अरे आज के दिन आराम कर लेती।
1: अरे समाचारों का समय हो गया, जरा रेडियो की आवाज बढ़ाना।

0: ये आकाशवाणी है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 2 सप्ताह के उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी ने सरकार के कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी।
1: अरे, ये कौन सा सरकारी कार्यक्रम है?
2: प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर बनाया है ये नया कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। वैसे उतना नया भी नहीं है, सन 2008 में बना है और चल रहा है।
3: इसका मतलब ये हुआ इसमें भी लोन वगैरह मिलता होगा?
2: बिल्कुल ठीक। निर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक का लोन मिलता है।
4: निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कुछ समझ नहीं आया।
2: ऐसा काम जिसमें कुछ बनाया जाता है, जैसे घड़े बनाना, खिलौने बनाना, दिया सिलाई या अगरबत्ती बनाना, जिल्द साजी या लिफाफे बनाना, गुड़ बनाना, बिंदी, तेल, कपड़े धोने का पाउडर या साबुन बनाने जैसे काम निर्माण क्षेत्र में आते हैं।
1: अच्छा, ये सब? और सेवा क्षेत्र में क्या क्या है?
2: सेवा क्षेत्र यानी लॉन्ड्री, हेयर कटिंग सलून, है ना, नल साजी, बिजली मिस्त्री, डीजल इंजन, पंप सेट का मैकेनिक, बिजली का सामान, लाउडस्पीकर आदि किराए पर देना, चाय की दुकान चलाना, ये सारे ही काम सेवा क्षेत्र में आते हैं।
4: यानी मनरेगा में सरकार या ठेकेदार की नौकरी नहीं करना चाहो तो खुद का काम शुरू करने के लिए भी सरकार मदद करती है।
2: सरकार तो सभी तरह की मदद करती है।

0: आओ आओ पधारो। अरे कितने से लौट रही महाराज की सवारी?
1: अरे अरे आ रहे जहलुम से, आपसे मतलब
0: काम के ना काज के, ढाई मन अनाज के।
1: देखो बापू ये बात पुरानी हो गई, अब कोई नई बात तो बोलो।
0: ट्रैक्टर का पुर्जा लेने तहसील जाना था, लाट साहब चल दिए मोटरसाइकिल भटकाते।
1: काहे तहसील जाने के लिए बस भी तो हैगी।
0: अरे काम की खातिर हम बस से जाएं, और तुम जहां हमारे पैसों के पेट्रोल से मोटरसाइकिल घुमाओ।
1: देखो यार ये बार बार पैसे की धौंस मत दिया करो बापू। हाँ
0: अरे कमरे बाप से यार यार करके बातें करता है। अरे मुन्नी ए मुन्नी वो डंडा तो उठाना जरा।
1: अरे
0: ठहर जाओ, तेरी मस्ती निकाल के रख दूंगा इस डंडे से।
1: अरे
2: अरे अरे क्या कर रहे हो दद्दा, जवान लड़के पर कहीं हाथ उठाते है भला?
0: लड़का अरे दुश्मन कहो दुश्मन।
3: हाँ आखिरी बखत में मुंह में गंगा जल हम ही डालेंगे। हाँ
2: ए चुप, ऐसे बात करते हो बाप से?
0: आपने देख लिया इनके लक्षण, 20 के हो गए हैं बेरोजगार बैठे हैं।
2: बेरोजगार है लक्षण। तुम कल पंचायत ऑफिस आ जाना
3: है।
2: अच्छा ये तो बताओ कितना पढ़े हो तुम?
3: 12वीं पास हैं।
0: बैंक से कुछ लोन की जुगाड़ होती तो करवा दो साहब, थोड़ा बहुत पैसा हम भी लगाए देंगे इनके धंधे के लाने।
2: दद्दा इन जैसे युवाओं के स्वरोजगार के लिए सरकार ने चलाया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
3: ऐसो चचा, चचा हम डीजल इंजन पंप सेट वगैरह बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं।
2: हाँ हाँ ठीक है ठीक है, देखो कल जरूर आ जाना पंचायत ऑफिस। हाँ
0: बड़ी मेहरबानी होगी साहब।
1: साहब कल ही आ जाते हैं हम।
2: हाँ ठीक है,
0: नमस्कार साहब। नमस्कार,
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

जी फाइल तो तैयार है जी। हाँ हाँ कल ही भिजवा दूंगा। अच्छा नमस्कार। अरे लच्छन आ गए तुम। अरे आओ आओ।

0: लेकर बैठ जाओ।
1: हाँ देना भैया कुर्सी। हाँ ये चलिए।
2: जैन जी, अपने छोटे से गांव में भी युवा बेरोजगार हैं, बड़े दुख की बात है ना?
3: अरे सरपंच जी, का बताएं, आज आए हैं आपके पास, अब कछु हो सकता हो तो ठीक, नहीं तो पकड़ेंगे हम भी शहर का रास्ता।
0: अरे दोस्तों, गांवों से शहर की ओर जो पलायन हो रहा है, उसे रोकना भी तो एक उद्देश्य है इस कार्यक्रम का।
2: अब जैसे तुम, जैन जी ने मुझे बताया, डीजल इंजन और पंप सेट दुरुस्त करना जानते हो, क्यों?
3: हाँ सरपंच जी, जानते हैं ना, जानते हैं।
2: गांव में भी तो है ये दोनों चीजें, फिर तुम्हारे हुनर का लाभ तुम्हारे गांव वालों को मिलना चाहिए कि नहीं, ठीक है ना?
3: अब बात तो ठीक है आपकी, पर छोटी मोटी दुकान खोलने के लिए भी तो जगह चाहिए, अब पुर्जे चाहिए, और ससुरा इन दोनों के लिए पैसे चाहिए, अब कहां से लाए जी पैसे?
0: अरे यही बताने के लिए तो बुलाया था तुमको यहां पर।
2: जिस कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं उसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध है।
3: ऐसो मैं लोन देगा कौन?
2: बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, और तो और कुछ निजी क्षेत्र के बैंक भी।
0: इस कार्यक्रम में उद्यमों को दो श्रेणियों में रखा गया है, निर्माण उद्योग और सेवा उद्योग।
2: जैसे नाम से ही साफ है, निर्माण उद्योग श्रेणी में वो उद्यम आते हैं जिनमें किसी चीज जैसे साबुन बनाना, बर्तन धोने का पाउडर, जूट का सामान, अचार मुरब्बा, स्लेट और स्लेट पेंसिल, प्लास्टिक का सामान, बांस और बेत का सामान, फोटो फ्रेम, ये सभी बनाने का काम किया जाता है।
0: और गुलाल, रंगोली, चूड़ी, पेंट, वार्निश, डिस्टेम्पर, तेल, अनाज, दालों और मसालों को पैक करके बेचना, कत्था, गोंद, रेजिन और झाड़ू, मैंथॉल तेल, दलिया, पत्तों से दोने पत्तल बनाना, चमड़े का सामान, मोमबत्ती, कपूर, इत्र, अल्मीनियम के बर्तन और ना जाने क्या क्या, बहुत लंबी लिस्ट है ऐसी वस्तुओं की जिनको बनाना निर्माण उद्योग की श्रेणी में आता है।
2: और तुम जिस काम के लिए लोन चाहते हो वो सेवा उद्योग वाली श्रेणी में आता है।
3: देखिए सरपंच जी, हमारे सारे दोस्त हैं ना, ये सारे अलग अलग काम जानते हैं जी। ये घनश्याम, अरे ये साइकिल की मरम्मत जाने, और किसान तो पंचर जोड़ता है, गोपी प्रेस करता है, और सलमान तो बाल काटने का काम जानता है,
2: अरे वाह।
3: और वो जो आपके पास बैठा है चरण, आप जानते हैं, लंबर वन का राजमिस्त्री है का।
2: अरे
0: अरे
2: वाह,
0: वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये सारे काम सेवा उद्योग की श्रेणी में आते हैं।
3: अरे हाँ जी, दो दोस्त अभी आए नहीं है जी, उनमें से एक बस स्टैंड पर चाय की दुकान और दूसरा वहीं पे ढाबा खोलना चाहता है।
2: ये भी वही है सेवा उद्योग।
0: पर हाँ, ढाबे पर मांसाहारी भोजन और शराब ना बिके।
3: ना जी पेशाब, अब करना क्या होगा?
2: एक आवेदन पत्र, साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट, खादी और ग्राम उद्योग आयोग या खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड में जमा करना होगी। तुम्हारा प्रकरण गांव का है, इसीलिए
0: जिले का जिला उद्योग केंद्र यही आवेदन शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के ले सकता है। तुम चाहो तो ये आवेदन सीधे बैंक में भी जमा करा सकते हो।
3: हाँ साहब, बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा।

0: हाँ सुनो, ये नींबू और मिर्ची दरवाजे के बीचों बीच लटका दो।
1: हाँ। अच्छा ये भी ले आए। अरे मुन्नी, अरे ये ले प्रसाद की थाली और प्रसाद लोगों में बांट दे।
2: दद्दा और लच्छन बहुत बहुत बधाई। अब डीजल इंजन और पंप सेट के लिए मैकेनिक
3: बाहर से नहीं लाना पड़ेगा।
4: दुकान की बहुत बहुत बधाई भैया।
2: लो लगता है पहला ग्राहक भी आ गया। बधाई हो बधाई।
4: काय भैया, बैंक से लोन का आसानी से मिल गया?
0: अरे हाँ भैया, अब थोड़ी बहुत तो कर रहा भाई, तो कर नहीं पा रहा।
4: हाँ वो तो
5: ऐसा है, हमने तो एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीधे बैंक में जमा की और वहां से बैंक वालों ने हमारी एप्लीकेशन वो क्या कहते हैं KBIC को भेज दी।
0: अरे हमारे बेटे का इंटरव्यू हुआ। जिसमें वो पास हो गए। तब जाके मिला है लोन।
5: अरे वो क्या कहते हैं बापू, टास्क फोर्स, हाँ उसने लिया इंटरव्यू।
2: अच्छा कितना मिल जाता है लोन?
0: आप कहा है कि वो ये सारी बात तो सरपंच जी को ही पता है।
4: अरे तो चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं।
2: कहा है जैन भैया, जे इस स्कीम में कितना लोन मिल जाता है?
6: निर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए तक और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक।
3: निर्माण क्षेत्र में 10 लाख से ऊपर और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से ऊपर लोन लेना हो तो लोन लेने वाला कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए और लोन के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
2: अच्छा सारा पैसा क्या बैंक देती है या कुछ अपनी गांठ से भी मिलाना पड़े?
6: ग्रामीण क्षेत्र वाले सामान्य वर्ग वाले को 10% खुद का अंशदान मिलाना पड़ता है और 25% सब्सिडी मिलती है और अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं आदि को 5% खुद का मिलाना पड़ता है और 35% सब्सिडी दी जाती है।
4: ये तो कमाल है रे भैया, है इतना भारी लोन और गार्ड से इतना कम पैसा लगाओ और ऊपर से सब्सिडी भी। वाह भैया वाह।
2: तो भैया हमारी दुकान आपने देखी है ना बस स्टैंड पर है, अब उसके लिए ज्यादा नहीं 2-4 लाख का लोन ही दिलवा दो।
3: योजना का नाम है रोजगार सृजन, यानी रोजगार पैदा करना, इसीलिए इसमें नया काम धंधा चालू करने के लिए लोन मिलता है।
6: हाँ चमुनिया जी, जी अब चले, दफ्तर को देर हो रही है।
3: हाँ चलिए।
7: सरपंच जी, साहब जी, आप दोनों को राम राम।
3: खुश रहो।
7: खुश रहो। अच्छा

0: नमस्ते गंगा बुआ।
1: अरे रूपस बिटिया, अरे खुश रहो। इसी बस से आई हो का?
0: हाँ बुआ, और बताइए तबीयत ठीक है ना आपकी?
1: हाँ बिटिया तबीयत तो ठीक है।
0: अच्छा बुआ अब चलती हूँ।
1: अच्छा
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे गर्मा गर्म भजिया उतारे हैं और साथ में कड़क मीठी चाय भी है, चखते जाइए।
0: अभी नहीं काका, देर हो रही है।
2: अरे का बिटिया, ऐसा करता हूँ घर के लिए बनवा देता हूँ। ए छोटो, ए फटाफट भजिए बांध दे पैकेट में।
3: अभी लाया, अभी लाया।
0: क्या काका, आपने भी जैसे नियम बना लिया है, बस स्टैंड से घर मुझे खाली हाथ नहीं जाने दोगे।
2: अरे बिटिया आप सबकी सेवा करती हैं, है? आपकी छोटी सी सेवा हमको भी करने दो।
0: ठीक है काका, लाइए दे दीजिए।

0: और बता चिरैया, क्या हाल है तुम्हारा शहर में?
1: मेरी छोड़ो अम्मा, खुद का हाल बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी?
0: जयंत जी भी ना

0: किसी अखबार से कम नहीं है। समाचार दे आए होंगे तुम्हें। बेटा, मौसमी बुखार था, कुछ खास नहीं।
1: वाह, बुखार में दफ्तर?
0: अरे बुखार था, है नहीं। तू गांव मिलने आई है कि लड़ने?
1: तुमसे लड़ने ही आई हूं।
0: हर बार की तरह कल सुबह की गाड़ी से लौटना होगा तुझे, है ना?
1: नहीं, इस बार पूरे 3 दिन रुकूंगी आपके पास।
0: अरे वाह,
1: यहाँ की डॉक्टर से मेरी बात हो गई है। 3 दिन का सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाना है हमें। और हाँ अम्मा, शहर से मेरे 2 डॉक्टर दोस्त और भी आने वाले हैं, वो दोनों कल शाम तक आ जाएंगे।
0: बहुत अच्छा मेरी चिरैया, तू ना तू अब आराम कर।
1: क्यों?
0: मैं दफ्तर जाती हूँ, गांव वालों को कैंप की सूचना भी तो देनी होगी।
1: ठीक है अम्मा, तुम जल्दी से होकर आओ, तब तक मैं खाना बनाकर रखती हूँ।
0: तू आराम कर।
2: कहते हैं ना, काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं। जैसे जमुनिया और रूपस, दोनों कर्मठता का

संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना जमुनिया धारावाहिक का 29वां भाग। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं मीडियम वेव पर अब हमारा प्रसारण आरंभ होता है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने EPF के तहत वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी EPF के कवरेज के दायरे में आएंगे। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नज़दीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब की भूमि पर हमलों, नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निवास स्थित समत्व भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहडोल जिले में आयोजित 70वीं शालेय राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। भोपाल में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 सितंबर को प्रदेश के 7,500 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी का वितरण करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान सभी जिलों में नशा मुक्ति रैली, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, ग्राम सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। और प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर जोर पकड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कल से 19 सितंबर के बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवा श्रोता सुने कार्यक्रम युववाणी, योगदान हमारे ग्वालियर केंद्र का है।

नमस्कार साथियों, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उत्कर्ष भार्गव। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे और मौसम का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं, वह मेरे लिए केवल एक सरकारी अभियान या आर्थिक नीति का विषय नहीं है। यह मेरे अपने जीवन और मेरे परिवार की रोज़मर्रा की पसंद से जुड़ा हुआ विषय है। अगर मैं अपने घर की बात करूं, तो हमारे घर में मौजूद अधिकांश फर्नीचर किसी बड़े ब्रांड या शोरूम से खरीदा हुआ रेडीमेड फर्नीचर नहीं है। हमने अपने घर का काफ़ी फर्नीचर स्थानीय कारीगरों और फर्नीचर बनाने वाले लोगों से बनवाया है। जब हम अपने घर के लिए कोई नया फर्नीचर बनवाना चाहते हैं, तो हमारी पहली पसंद अक्सर यही होती है कि हम अपने आसपास के किसी लोकल व्यक्ति को यह काम दें। अब आप सोच सकते हैं कि जब बड़े बड़े ब्रांड्स के शानदार शोरूम रेडीमेड फर्नीचर उपलब्ध हैं और ऑनलाइन भी हज़ारों विकल्प मिल जाते हैं, तो फिर लोकल लोगों से फर्नीचर बनवाने की क्या ज़रूरत है। मेरे लिए इसका जवाब बहुत सरल है, क्योंकि जब मैं किसी लोकल व्यक्ति से फर्नीचर बनवाता हूँ, तो मैं केवल एक सामान नहीं खरीद रहा होता, मैं किसी व्यक्ति की स्किल्स, उसकी मेहनत और उसके रोज़गार को सपोर्ट कर रहा होता हूँ। और यही सोच केवल फर्नीचर तक सीमित नहीं है। हमारे परिवार में जब कोई विशेष अवसर या पारिवारिक समारोह होता है और नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत आती है, तब भी मेरी पसंद थोड़ी अलग होती है। बड़े ब्रांड्स के रेडीमेड सूट्स या कपड़े खरीदने के बजाय, मैं अक्सर कपड़ा चुनकर उसे स्थानीय टेलर या कपड़े बनवाने वाले व्यक्ति से अपने हिसाब से तैयार करवाना पसंद करता हूँ। इसमें शायद थोड़ा अधिक समय लगता है। हमें कपड़े चुनना पड़ते हैं, डिज़ाइन तय करना पड़ता है, फिर उसे सिलवाना पड़ता है और कभी कभी फिटिंग के लिए दोबारा जाना पड़ता है। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में एक चीज़ मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, उस कपड़े के पीछे किसी स्थानीय व्यक्ति की मेहनत दिखाई देती है। जब हम किसी लोकल टेलर से अपना सूट या कोई ट्रेडिशनल ड्रेस तैयार करवाते हैं, तो हमारी ज़रूरत पूरी होने के साथ साथ उसके हुनर को भी काम मिलता है। और यही से मेरे लिए वोकल फॉर लोकल केवल एक स्लोगन नहीं रह जाता, यह एक चॉइस बन जाता है, एक ऐसी चॉइस जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना केवल सरकार या बड़ी इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी है, लेकिन वास्तव में किसी देश की इकोनॉमी केवल फैक्ट्रीज और बड़ी कॉरपोरेशन से नहीं बनती। इसके पीछे लाखों करोड़ों छोटे दुकानदार हैं, कारीगर हैं, टेलर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, हैंडलूम वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं और आज के युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं। इसमें से हर व्यक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम किसी लोकल व्यक्ति से कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, तो हमारा पैसा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था में घूमता है। और अगर करोड़ों लोग अपने छोटे छोटे डिसीजंस में लोकल बिजनेसेस को प्राथमिकता दें, तो इन छोटे डिसीजंस का कलेक्टिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट होना ज़रूरी है, वोकल फॉर लोकल का अर्थ यह नहीं है कि हम केवल इसीलिए किसी लोकल प्रोडक्ट को खरीद लें क्योंकि वह लोकल है। लोकल प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी कीमत उचित होनी चाहिए, उसमें इनोवेशन होना चाहिए और उसे बड़े ब्रांड्स के साथ कंपटीशन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं होना चाहिए कि हम लोकल खरीदेंगे, हमारा लक्ष्य इससे बहुत बड़ा होना चाहिए, हम लोकल को इतना मजबूत बनाएंगे कि दुनिया लोकल को खरीदे। यानी लोकल से नेशनल और नेशनल से ग्लोबल। और आज इस कार्यक्रम में हम इसी विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि वोकल फॉर लोकल क्या है, यह हमारी इकोनॉमी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें युवाओं की क्या भूमिका है और हमारे लोकल आर्टिशियंस और छोटे बिजनेसेस को इससे क्या लाभ मिल सकता है, और हम अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी चॉइसेस के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है, देश के विकास की शुरुआत हमेशा बड़े फैसलों से नहीं होती, कभी कभी शुरुआत हमारे घर के फर्नीचर से होती है, कभी हमारे कपड़ों से, कभी किसी लोकल दुकान से कोई खरीदी छोटी सी खरीदारी से
और कभी किसी छोटे एंटरप्रेन्योर पर किए गए विश्वास से। इसी छोटी सी सोच को बड़े स्तर पर ले जाने का नाम है वोकल फॉर लोकल।

दोस्तों, गीत के पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपने लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल तक ले जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि मेरे घर में फर्नीचर लोकल लोगों से बनवाने या कपड़े लोकल टेलर से सिलवाने जैसी छोटी सी पसंद का

देश की इकोनॉमी से क्या संबंध है? शायद पहली नज़र में इसका जवाब बहुत छोटा लगे, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो इसका संबंध बहुत बड़ा है। मान लीजिए किसी शहर में एक कारपेंटर है, वह फर्नीचर बनाता है, उसके पास दो कर्मचारी काम करते हैं, वह लकड़ी किसी दूसरे सप्लायर से खरीदता है, फर्नीचर तैयार होने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी ड्राइवर की ज़रूरत होती है। अब जब हम उस कारपेंटर से फर्नीचर बनवाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति को पेमेंट नहीं कर रहे होते, हम एक पूरी इकोनॉमी चेन को सपोर्ट कर रहे हैं। यही बात एक टेलर के साथ भी है। एक टेलर कपड़ा खरीदता है, किसी से बटन लेता है, किसी से थ्रेड लेता है और किसी से लाइनिंग, फिर वह कपड़े को तैयार करता है। यानी एक छोटा सा ऑर्डर भी कई लोगों की लाइवलीहुड से जुड़ सकता है, और यही है लोकल इकोनॉमी की असली ताकत। लोकल का मतलब केवल गांव या छोटा शहर नहीं। जब हम लोकल शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अक्सर गांव, हस्तशिल्प या छोटे कारीगर की तस्वीर आती है, लेकिन लोकल इससे कहीं बड़ा है। लोकल में हमारे आसपास का छोटा दुकानदार, कारपेंटर, टेलर, पॉटर, मैकेनिक, फार्मर, बेकर, आर्टिस्ट, हैंडलूम वर्कर, मैन्युफैक्चरर और युवा एंटरप्रेन्योर सब शामिल हैं। यानी जिस व्यक्ति की मेहनत हमारे आसपास दिखाई देती है वह हमारी लोकल इकोनॉमी का हिस्सा है, और कई बार हम इन लोगों की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को पहचानते नहीं हैं। हम एक टेलर को केवल कपड़े सिलने वाला व्यक्ति समझते हैं, एक कारपेंटर को केवल फर्नीचर बनाने वाला व्यक्ति समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग स्किल बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं। उनके पास वर्षों का अनुभव है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज होता है, उनके पास क्राफ्टमैनशिप होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास अपने हाथों से वैल्यू क्रिएट करने की क्षमता होती है।

दोस्तों, देखा जाए तो हमारी खरीदारी भी एक वोट है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जब हम चुनाव के समय वोट देते हैं तो हम सोच समझकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी शॉपिंग भी एक तरह का इकोनॉमिक वोट है? जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो हम मार्केट को सिग्नल देते हैं हमें वह प्रोडक्ट चाहिए। अगर लोग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं तो कंपनी उसका प्रोडक्शन बढ़ाती है, और अगर लोग किसी प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दें तो उसका मार्केट छोटा होने लगता है। यानी कंज्यूमर केवल मार्केट का हिस्सा नहीं है, कंज्यूमर मार्केट को शेप भी करता है। इसीलिए अगर हम लोकल प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं तो हम लोकल प्रोड्यूसर्स को भी यह मैसेज देते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए मार्केट मौजूद है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बैलेंस भी है। हमारा लोकल प्रोडक्ट को सपोर्ट करना भावना पर आधारित हो सकता है, लेकिन खरीदारी का निर्णय गुणवत्ता और उपयोगिता पर भी आधारित होना चाहिए। क्योंकि अगर लोकल एंटरप्रेन्योर को लंबे समय तक आगे बढ़ना है तो उसे कंज्यूमर का विश्वास जीतना होता है। लोकल को सपोर्ट करने का मतलब क्या है? तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि हम कभी कोई फॉरेन प्रोडक्ट ना खरीदें? बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया इंटरकनेक्टेड है, भारत दुनिया के साथ व्यापार करता है, हम दूसरे देशों के साथ टेक्नोलॉजी लेते हैं, दूसरे देशों में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और भारत की कंपनीज भी ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन करती हैं। इसीलिए दुनिया से कट जाना आत्मनिर्भरता नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है दुनिया के साथ कंपटीशन करने के लिए खुद को मजबूत बनाना। हमें ऐसी स्थिति बनानी है जहाँ भारत किसी प्रोडक्ट को केवल इसीलिए ना खरीदे क्योंकि उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है, बल्कि भारत के पास अपने ऐसे विकल्प हों जो क्वालिटी में अच्छे हों, प्राइस में कॉम्पिटिटिव हों, टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड हों और दुनिया के बाज़ार में अपनी पहचान बना सकें। यही लोकल से ग्लोबल की जर्नी है। कल्पना कीजिए, आज एक छोटा आर्टिशन अपने घर में प्रोडक्ट बनाता है, कल वह उसे अपने शहर में बेचता है, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरे शहरों तक पहुंचाता है, कुछ समय बाद उसके प्रोडक्ट पूरे देश में बिकते हैं, और एक दिन उसी छोटे बिजनेस का प्रोडक्ट विदेश में कोई व्यक्ति खरीदता है। तब क्या बदला? प्रोडक्ट शायद वही था लेकिन उसकी रीच बदल गई, उसकी ब्रांडिंग बदल गई, उसकी पैकेजिंग बेहतर हुई, टेक्नोलॉजी ने उसे नए कस्टमर्स तक पहुंचाया, और सबसे महत्वपूर्ण है उस लोकल व्यक्ति ने अपने हुनर पर विश्वास किया। इसीलिए हमें लोकल बिजनेसेस को केवल छोटा समझने की ज़रूरत नहीं है। हम बड़ा बिजनेस भी कभी छोटा ही था, हर बड़ा ब्रांड भी कभी एक आइडिया था, और हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी किसी न किसी छोटे कदम से शुरू हुई थी। आज का युवा केवल कस्टमर नहीं है, वह टेक्नोलॉजी समझता है, सोशल मीडिया समझता है, डिजिटल मार्केटिंग समझता है, फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन समझता है, ऑनलाइन बिजनेस समझता है और नई चीज़ें खरीदने की क्षमता रखता है। अब इमेजिन कीजिए, एक लोकल आर्टिशियन को अपने प्रोडक्ट की बहुत अच्छी जानकारी है लेकिन उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती। दूसरी तरफ एक युवा है जिसे डिजिटल मार्केटिंग आती है। अगर ये दोनों साथ आए तो क्या हो सकता है? एक लोकल प्रोडक्ट को नया मार्केट मिल सकता है, एक आर्टिशियन का बिजनेस बढ़ सकता है और एक युवा एंटरप्रेन्योरशिप का अवसर मिल सकता है। इसीलिए युवाओं को केवल यह नहीं सोचना चाहिए मैं लोकल प्रोडक्ट खरीदूं या नहीं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए मैं किसी लोकल बिजनेस को ग्रो करने में क्या योगदान दे सकता हूँ। दोस्तों, पहले किसी बिजनेस के लिए दुकान का मतलब एक फिजिकल लोकेशन होता था। आज एक इंस्टाग्राम पेज भी दुकान बन सकता है, एक वेबसाइट भी दुकान बन सकती है, एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट बन सकता है और एक सेटिस्फाइड कस्टमर उसका ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है।

मान लीजिए आपके शहर में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हैंडमेड फर्नीचर बनाता है, उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसके पास ज़्यादा कस्टमर नहीं है। आप उसके काम का एक अच्छा वीडियो बनाते हैं, उसकी स्टोरी बताते हैं, उसके प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स डालते हैं और वह कंटेंट हज़ारों लोगों तक पहुंच जाता है। अब वही लोकल कारपेंटर केवल आपके शहर तक सीमित नहीं रहेगा, उसे दूसरे शहर से भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं और शायद दूसरे राज्यों से भी। यानी टेक्नोलॉजी लोकल टैलेंट को ग्लोबल मार्केट से जोड़ सकती है, लेकिन वोकल फॉर लोकल केवल इकोनॉमी की बात नहीं है, यह हमारी आइडेंटिटी की भी बात है। भारत की सबसे बड़ी ताकत एक यह है, हमारी डाइवर्सिटी। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों की अपनी कला है, अपने कपड़े हैं, अपने डिज़ाइंस हैं, अपने हैंडीक्राफ्ट्स हैं, अपनी फूड ट्रेडिशंस हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स हैं। कई बार इन ट्रेडिशनल स्किल्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिवार द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन अगर उस स्किल की डिमांड ख़त्म हो जाए तो अगली पीढ़ी उसे अपनाना बंद कर सकती है, और जब अगली पीढ़ी उस कला को छोड़ देती है तो केवल एक बिजनेस बंद नहीं होता, एक ट्रेडिशन धीरे धीरे गायब हो सकता है। इसीलिए लोकल प्रोडक्ट्स को मार्केट देना कई बार हमारी कल्चरल हेरिटेज को बचाने का माध्यम भी बन सकता है।

तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, और मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने लोकल कारीगरों और प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करके उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इसी के साथ मैं आपका दोस्त उत्कर्ष भार्गव आप सभी से विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त किसी नए और मज़ेदार विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे ग्वालियर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है छोटे से अंतराल का।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए सोनू निगम, विनोद राठौड़ और संजीवनी की आवाज़ों में अखियों से गोली मारे फिल्म का गीत। नितिन रायकवार ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं दिलीप सेन, समीर सेन।

इस गीत के बाद आइए सुनते हैं अनजाने फिल्म का गीत। सुरेश वाडकालो और साधना सरगम ने इस गीत को गाया है। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन।

आज़ाद। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं अमित त्रिवेदी और मीनल जैन की आवाज़ों में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और संगीतकार अमित त्रिवेदी।

और यह है कार्यक्रम का आखिरी गीत बंटवारा फिल्म से। अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें। हसन कमाल के लिखे गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, समय है अंतराल का।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
2: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
2: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV/AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
2: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
3: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: नसंसनी, नसंसनी, नसंसनी, ना उत्तेजना, ना उत्तेजना, नशोर दिन रात, नशोर दिन रात, नशोर दिन रात, ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल अपने 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफ की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मंजूरी दी है। यह बढ़ी हुई वेतन सीमा भगवान विश्वकर्मा जयंती 2026 से लागू होगी, जो कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर एवं उज्जैन संभाग के कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स के साथ सेवा संकल्प अभियान पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। भोपाल में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 सितंबर को प्रदेश के 7,500 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को ई स्कूटी वितरित करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाएगा। सप्ताह के दौरान सभी जिलों में नशा मुक्ति रैली, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी प्रतियोगिताएं, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, ग्राम सभाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सहित विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। और प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर जोर पकड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कल से 19 सितंबर के बीच पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का दायरा बढ़ेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियां बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओं, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नज़र एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाएं। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें, क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है, पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना श्रोताओ। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओ, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यताएं हैं जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था, तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओ, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आई और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
3: हेलो चिल्ड्रन।
4: हेलो मैम।
3: हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन मैम।
5: आई एम गुड मैम।
3: वेरी गुड, वेरी गुड दैट यू ऑल आर गुड। Do you like going to the garden?
4: Yes, ma'am. I like it.
3: What do you see in the garden? Tell me. Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
6: I see beautiful flowers.
3: And any other thing that you like in a garden?
7: I like sitting under the tree.
3: And you, Soham?
8: I like to see butterflies.
3: Yes, butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, tell me. Any sound?
4: Yes, ma'am.
7: Yes, ma'am. I listen to the sweet chirping of birds.
3: Very good, that there are so many beautiful things in a garden, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: So children, when all these beautiful things come together, they make what? They all make a beautiful
4: garden.
3: Wonderful, you have replied so well. So children, when small and little things come together, they make a big and beautiful thing. Okay?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So now, let us have some puzzle. Ready?
4: Yes, ma'am.
3: Okay. Tell me, if so many trees are together, what will they make?
4: A jungle.
3: That's correct. And if so many grains of sand are together, as far as you can see, They will make a desert. Very nice. Let us recite a poem now. Would you like to recite with me?
4: Yes, ma'am.
3: This poem will tell us how small things make big things. Okay?
4: Okay, ma'am.
3: So, here comes the poem. Repeat after me. Little drops of water,
4: little drops of water,
3: little grains of sand,
4: little grains of sand,
3: make the mighty ocean,
4: make the mighty ocean,
3: and the pleasant land,
4: and the pleasant land,
3: little words of love,
4: little words of love,
3: little acts of kindness,
4: little acts of kindness,
3: little deeds of warmth,
4: little deeds of warmth,
3: spread
4: smiles,
3: and happiness,
4: and happiness.
3: So, dear children, how was the poem?
5: It was good.
9: It was fine.
10: Mm-hmm. It was lovely.
3: Yes, it was very nice. And now, would you like to listen to the same poem in a song?
5: Yes, ma'am.
3: So, listen to this beautiful song being sung by a lovely child like you. Okay?
5: Like us.
3: Hmm.

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत। और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन। इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है।
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
5: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडेचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
0: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
0: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
1: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
0: जी,
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
0: जी हाँ,
1: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
0: जी बिल्कुल।
1: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: ये था एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में छावा फिल्म का गीत। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

और लीजिए अब सुनिए धूमधाम फिल्म का गीत विशाल ददलानी की आवाज़ में। सिद्धार्थ कौशल ने ये गीत लिखा है, संगीतकार हैं क्लिंटन सेरेजो और बैंका गोम्स।

और अब सुनते हैं अमित कुमार और उदित नारायण की आवाज़ में मजरूह का लिखा, जतिन ललित का संगीतबद्ध किया गीत, फिल्म है कभी हाँ कभी ना।

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए जुबिन नौटियाल और विवेक हरिहरन का गाया फेथ फिल्म का गीत। मंदीप खुराना के बोल हैं और संगीतकार हैं विवेक हरिहरन।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपनी 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
3: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नज़दीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्पू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे एशिया गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत, और 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम दिल्ली से रिले किए जाएंगे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 8:30 पर। 10 बजे सुनेंगे नाटक खेत नहीं है जिंदगी। इस नाटक के लेखक हैं सतीश मेहता और प्रस्तुतकर्ता अनिल मुंशी। 10:30 पर राग रजनी में आज हम आपको सुनवाएंगे रूपाली पांडे की गाई ध्रुपद धमार, राग है विहाग।

आकाशवाणी भोपाल से आज शाम 7:21 पर प्रसारित ग्राम सभा में सुनेंगे डॉक्टर अनुराग पटेल से की गई भेंटवार्ता, कृषि में सेंसर और आधुनिक तकनीक का समन्वय, सटीक खेती। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह के नियमित कार्यक्रमों के अलावा 7:20 पर सुनेंगे सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग प्रसारित किया जाएगा 8:30 पर। सुगम संगीत में 9:15 पर सुनिए मोहम्मद अय्यूब की गाई चंद गजलें। 9:30 पर हम सुनवाएंगे नाटक सफेद खून, लेखक हैं आगा हश्र कश्मीरी और प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे 10:00। 10:05 समय है गीत सागर कार्यक्रम का। ये थे आकाशवाणी भोपाल से कल सुबह प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण किया जाएगा। इसमें 11:00 सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का समय है दिन में 12:00, दोपहर 2:30 और रात्रि 10:00। संग्रहालय से क्रम के अंतर्गत 12:30 पर सुनिए जमुनिया धारावाहिक की 30वीं कड़ी। जबलपुर केंद्र की प्रस्तुतियों में दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम होगा। 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये सभी प्रस्तुतियां जबलपुर केंद्र की होंगी। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। एशिया गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत 8:00 दिल्ली से रिले किया जाएगा। 8:30 पर होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 10:30 पर राग रजनी में कल हम आपको सुनवाएंगे कैलाश गंधर्व का वायलिन वादन, राग होगा मालकोंस। कल शाम 7:21 पर भोपाल से किसानवाणी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें सुनिए ओबी आधारित कार्यक्रम, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना और पशु प्रदाय योजना की विस्तृत जानकारी। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल 3 वर्ष पूरे करेगी, 30 लाख पंजीयन का लक्ष्य पूरा किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल से सेवा संकल्प अभियान शुरू करने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ की वेतन सीमा 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपये की और राज्य सरकार ने निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का गठन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल अपने 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख अभ्यर्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में किया था। योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। योजना का लक्ष्य विश्वकर्माओं को संस्थागत सहायता, आधुनिक उपकरण, वित्त तक पहुंच, कौशल उन्नयन और बाजार संपर्क प्रदान करके उनके पारंपरिक कौशल को मजबूत करना है। यह उन्हें उत्पादकता, आय और उद्यमशीलता क्षमता बढ़ाने में भी सक्षम बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि इस फैसले से 15 से 25,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले करीब 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
1: प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा कर, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, सितंबर 2014 में चेंज की गई थी। इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा जो कि 15 to 25 वाले बैंड में थे।
0: वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी कि नई वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से लागू होगी और सरकार का अनुमानित वार्षिक खर्च करीब 11,339 करोड़ रुपए होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कल से प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया,
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के साथ ही सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हो रही है। उनके नेतृत्व में किए गए सारे कामों को भी हम स्मरण करते हुए कल उनके जन्मदिवस के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन देश और पूरी पार्टी हर जगह कर रही है। हमारे राज्य में भी कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी इंदौर अहिल्या माता की नगरी से अपने इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। कल 50 लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के पटों का सरकारी स्तर पर सारा खर्च कर रजिस्ट्री निशुल्क कराने के अभियान की शुरुआत करने का भी बड़ा कार्यक्रम बनाया है।
0: वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर और उज्जैन संभाग के जनप्रतिनिधियों, कमिश्नर्स और कलेक्टर्स से भी तैयारियों की समीक्षा की। सेवा संकल्प अभियान के तहत खंडवा, मुरैना, राजगढ़ और आगरमालवा सहित प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर में इंफोसिस के नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक के शुभारंभ कार्यक्रम को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल से लोक भवन में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से शुरू हो रहे 1 माह के सेवा संकल्प अभियान और स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना 2026 की तैयारियों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के 50 लाख लोगों को उनके पट्टे की पक्की रजिस्ट्री कराकर संबंधित हितग्राहियों को निशुल्क वितरित किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। महात्मा गांधी की 157वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में 2 से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में नशा मुक्ति रैली, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर और ग्राम सभाओं सहित विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों, महिला स्व सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। लोगों को नशा न करेंगे न करने देंगे की ऑनलाइन शपथ दिलाई जाएगी। अंतिम दिन 8 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर समापन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जिसमें नशा मुक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। आयुष मंत्रालय इस वर्ष 23 सितंबर को महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष की थीम स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद रखी गई है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में बताया कि इस बार आयुर्वेद दिवस को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संचार अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इस अभियान में बेहतर स्वास्थ्य के लिए एकीकृत चिकित्सा, आयुर्वेद में शोध और नवाचार तथा सामुदायिक स्वास्थ्य व टिकाऊ जीवन शैली पर विशेष जोर रहेगा। उन्होंने मीडिया से आयुर्वेद के बारे में सरल, विश्वसनीय और प्रमाण आधारित जानकारी लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस उपलक्ष्य में निर्धारित गतिविधियों के आयोजन के क्रम में आज प्रदेश के अशोकनगर जिला जेल में स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया। शासन ने निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और शुल्क निर्धारण के लिए मध्य प्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति डॉ. राजकुमार आचार्य को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं विधि एवं विधायी कार्य तथा वित्त विभाग के अधिकारी तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा इस समिति के सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शहडोल खेल की दुनिया में उभरता सितारा है और यहाँ की प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहडोल में 70वीं शालेय राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से शहडोल की बास्केटबॉल टीम ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में प्रदेश के 10 संभागों के 17 वर्ष तक की आयु के 240 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में आयोजित लाइफ टाइम जर्नलिज्म अचीवमेंट अवार्ड 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब ने किया। इस अवसर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया। श्री शुक्ल ने सम्मानित पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका को निभाते हुए निरंतर कार्य करते रहें। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर भी मौजूद रहे। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर बारिश का दौर तेज होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 सितंबर के बाद नया मौसम सिस्टम सक्रिय हो सकता है। प्रदेश में अब तक 33 इंच बारिश दर्ज हुई है, जबकि सामान्य औसत 37.3 इंच का है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 17 से 19 सितंबर और पूर्वी हिस्से में 18 से 21 सितंबर के बीच कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा में संभागीय कमिश्नर शैलेंद्र सिंह ने शासकीय अस्पतालों में डॉक्टरों की ड्यूटी को लेकर निर्देश दिए हैं कि सभी चिकित्सक निर्धारित समय पर ही अस्पताल में मौजूद रहें। खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के 11 दान पात्रों की गणना में कुल 33,39,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। पूरी राशि भारतीय स्टेट बैंक की ओंकारेश्वर शाखा में जमा करा दी गई है। अलीराजपुर के पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। रीवा के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन सत्र पर एक दिवसीय व्याख्यान का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के खिलाड़ियों ने सीहोर में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। वेटलिफ्टिंग में बैतूल ओवरऑल स्टेट चैंपियन रहा। साइबर अपराधों से बचाव एवं साइबर जागरूकता के लिए साइबर सेल जोनल कार्यालय इंदौर द्वारा अब तक कुल 33 महाविद्यालयों से 1,884 साइबर वॉरियर्स को नामांकित किया गया है। मंदसौर में विश्व ओजोन दिवस पर राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विद्यार्थियों ने पोस्टरों के माध्यम से ओजोन संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। और राजगढ़ में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास एवं रोजगार विभाग गौतम टेटवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल 3 वर्ष पूरे करेगी। 30 लाख पंजीयन का लक्ष्य पूरा किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल से सेवा संकल्प अभियान शुरू करने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ की वेतन सीमा 15 से बढ़ाकर 25,000 रुपए की और राज्य सरकार ने निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का गठन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयारों को सुधांशु भैया की राम राम। भैयारों अपन देख ही रहे हैं कि बारिश को मौसम धीरे धीरे समाप्त होवे वालों है और जाते जाते मौसम में तेजी से बदलाव भी होते हैं। दिन में गर्मी और उमस रहते हैं जबकि सुबह और शाम को ठंडक महसूस होने लगते हैं और साथ ही साथ खेतों में नमी बनी रहते हैं और कई जगह पानी जमा रहता है। ऐसे समय अपने किसान भैयारों को अपने परिवार और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। क्या करें कि अपन बारिश के बाद पानी के जो स्रोत हैं वो दूषित हो जाते हैं, तो पीने के लाने अपन स्वच्छ और सुरक्षित पानी को उपयोग करें। पानी को उबालकर या उचित तरीके से अपन शुद्ध कर ही पिएं। और बारिश के बाद क्या होता भैया रहो कि जो गड्ढे होते हैं, अपने जो कूलर होते हैं, जो खुले के बर्तन रहते हैं, इनमें पानी जमा होने के कारण मच्छर पनपने लगते हैं और इन मच्छरों के कारण मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी होने की संभावना रहती है। तो अपन क्या करें कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दें और पानी के बर्तनों को ढक कर रखें। साथ ही साथ अपन देखते हैं कि अपन खेत की मिट्टी गीली रहते हैं तो बाम काय फिसलन को खतरा रहता है, तो जाते समय अपन उचित जूते पहने, बिजली के खंभों, तारों और पानी भरे स्थानों से अपन दूरी भी बनाए रखें। साथ ही साथ अपने जो पशु हैं बिनके रहने की जगह में अपन क्या करें कि नमी और गंदगी बढ़ सकता है, तो बिनको पशुशाला को अपन साफ सुथरा रखें, फिनाइल का अपन हमें पानी डालें और जो पशुशाला है बाय हवादार रखें और पशुओं को अपन साफ सुथरा पानी और सुरक्षित

गीला या सड़क व चारण रहते हैं, जहाँ से कहा है कि इनके बीमार होने की संभावनाएं बनी रहते हैं। और अपना जो भोजन है वह अपन ढक कर रखें, अपनी जो फल सब्जियां हैं बिना अच्छे से धोएं और बासी खाना खाने से बचें। जाके अलावा अपन दिखते ना कि अचानक ठंडे गीले वातावरण में अपन लंबे समय तक रहने से बीमार हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि अगर अपन कहीं गीले हो जाएं या अपने कपड़ा गीले हो जाए बारिश से, तो अपन उनको तुरंत बदल लें। और बारिश के बाद अपनी जो फसल है वहाँ में कहा है कि कीट और रोग होने की संभावना बनी रहते हैं, तो अपन अपने फसल को ध्यान से देखत रहें और नियमित रूप से पत्तियों तनों और फसल की वृद्धि की जांच करत रहें। अगर कोई समस्या दिखाई दे तो अपन कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार अपन बाकी दवा और उपचार करें। जाके अलावा अपने जो ट्रैक्टर हैं, पंप हैं, स्प्रेयर हैं, उनको बारिश से बचा कर रखें और इनकी समय समय पर सर्विस कराते रहें। भैया अगर अपन इन बातों को ध्यान रखेंगे तो अपन निश्चित तौर पर अपन बारिश के मौसम में अपन अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पशुओं और अपनी खेती किसानी को सुरक्षित रख सकते हैं। भैया रो अभी गणेश चतुर्थी को चल रहा हुआ समय, तो आज अपन अपनों जो पहले लोकगीत है वो गणेश वंदना से ही सुनाते हैं, तो सुनते हैं जी लोकगीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: भैया अभी अपन ने सुनी गणेश वंदना, और अपनी जो चर्चा का विषय है वो है विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भैया आज का युग अपन देख ही रहे हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार को युग है, और अपन देखते हैं कि जीवन को शायद कोई ऐसा ही क्षेत्र हो जहाँ विज्ञान और तकनीक को प्रभाव ना हो। चाहे अपन अपने घर की बिजली के उपकरण देख लें, अपन आजकल बटन दबाते हैं पंखा चालू हो जाते हैं, जाके अलावा आप माइक्रोवेव ले लें, चाहे वो मोबाइल ले लें, मोबाइल के माध्यम से अपन कहूँ की भी जानकारी ले सकते हैं। और पहले क्या था कि अपने जो किसान भैया रहे हैं वो पारंपरिक ज्ञान, मौसम के अनुभव और पीढ़ियों से चली आ रही कृषि पद्धति के अनुसार ही खेती किसानी करते, परंतु आजकल अपन देख ही रहे हैं कि आधुनिक मशीनें आ गई हैं, उन्नत बीज आ गए हैं, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, चाहे वो ड्रोन हो, इन सब को उपयोग आजकल अपनी खेती किसानी में बहुत ही बढ़ते जा रहा है। और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से ऐसी फसलों की किस्में विकसित की जा रही हैं जो अधिक उत्पादन दें, रोग कीटों और बदलते मौसम को सामना करने को जिनमें सक्षम हो। भैया आज के समय में कृषि में आधुनिक तकनीकों का उपयोग हो रहा है। अपन देख ही लें कि ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, सीड ड्रिल है, थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, इन जैसी मशीनों को आजकल अपन अपनी खेती किसानी में उपयोग हो रहा है। जा से कहा है कि अपनी खेती किसानी में जो कठिन कार्य हैं वे बड़ी आसानी से हो जाते हैं। और तो और भैयारों के मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से अपन ये जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में वर्षा होने की संभावना है कि नहीं है, और वर्षा अगर होगी तो कितनी होगी। साथ ही साथ अपन ये भी जान सकते हैं कि तापमान में परिवर्तन होगो कि नहीं होगो। जाके इन जानकारियों के आधार पर अपन सिंचाई, कटाई, दवा छिड़काव और अन्य कृषि कार्यों की योजना अच्छे ढंग से कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेट के माध्यम से अगर अपनी खेती किसानी और जो फसल है अपनी वाम अगर कोई कीट या रोग को प्रकोप हो रहा हो तो बाको अपन कृषि वैज्ञानिक के सलाह से अपन इनकी दवाइयाँ ले सकते हैं। अब अपन यहाँ अपनी फसल अपन ने तैयार कर रखी है, और मंडी के भाव अपन अब आजकल इंटरनेट के माध्यम से अपन अपने मोबाइल भी ले सकते हैं, और जहाँ के भाव अपने को अच्छे मिले वहाँ अपन अपनी खेती, अपनी जो फसल है, अपना जो उत्पादन है बाय अपन बेच सकते हैं। साथ ही साथ अपन वहाँ पे बीजों की किस्में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से बीज अच्छे हैं, कौन से कैसे हैं, तो इन सब चीज़ों से अपन को बहुत फ़ायदा हुआ है। भैया अब आजकल अपन देख ही लें कि हम भी आपको फ़ोन के माध्यम से अपने कार्यक्रम के अंतर्गत मौसम की जानकारी देते हैं और कृषि समसामयिक सलाह देते हैं। तो आज अपन सुनते हैं कि आंचलिक अनुसंधान केंद्र मुरैना से फ़ोन पर मौसम की जानकारी एवं कृषि सामयिक सलाह, और जानकारी देंगे डॉक्टर हरविंद्र सिंह। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
5: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर हरविंद्र सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमेशा की तरह मैं सबसे पहले आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप पिछले सप्ताह के मौसम के बारे में जानिए। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम वेधशाला की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः मध्यम से घने बादल रहे तथा हवा लगभग 4.2 से 5.3 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, उत्तर और पश्चिम दक्षिण दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 32 से 34 और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। एवं अपेक्षिकता सुबह 81 से 92 और शाम को 79 से 83% के बीच दर्ज की गई। किसान भाइयों, आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी आधार पर आगामी 5 दिनों में मध्यम से घने बादल रहने तथा छिटपुट वर्षा होने का अनुमान है। हवा लगभग 4 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम दक्षिण दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 33.4 से 34.2 और न्यूनतम तापमान 26.1 से 27.3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आपेक्षिक आर्द्रता सुबह 82 से 88 और शाम को 66 से 68% के बीच रहने का अनुमान है। किसान भाइयों, मैं जिस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान है उसको बताना चाहूंगा कि आगामी 5 दिनों में छुटपुट हल्की फुल्की वर्षा की संभावना है और इस समय कोई वर्षा, भारी वर्षा या थंडर स्टॉर्म इस प्रकार की कोई भी संभावना नहीं है और इस समय हमारी फसलें लगभग पकने की स्थिति में है या बाली निकलने की स्थिति में, दाना पड़ने की स्थिति में है, तो इस समय आपको जो कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है इस प्रकार से है। किसान भाई, समय मौसम को देखते हुए इस समय फसलों और सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण और नत्रेन की मात्रा को दें। साथ ही किसान भाई, आगामी मौसम में छिटपुट वर्षा का होने का अनुमान को देखते हुए आप जो सभी सस्य क्रिया है फसलों और सब्जियों की उनको आप करें, क्योंकि जैसे आपको कीट व्याधि नियंत्रण करना है, नत्रेन की मात्रा को देना है, निराई गुड़ाई करना है, उसको आप सभी को करें। फसलों की बात करें तो अरहर की फसल, जो देरी से अरहर की फसल बोई गई है, उसमें आप इस समय खरपतवार नियंत्रण करें। खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी इमेजा थायपर प्लस इमेजा मार्क 70 ग्राम दवा 500 से 600 पानी घोल बनाकर इसका आपकी फसल 25 से 30 दिन की अवस्था पे है तो उसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई, उर्दू और मूंग की बात करें तो उर्दू अभी फूल आने की अवस्था में है, लेकिन मूंग की बात करें तो मूंग जो इस समय कुछ फलियां लगभग 40 से 50% फलियां मूंग की पक चुकी है, तो चूंकि हल्की फुल्की वर्षा हुई अथवा जो कच्ची फलियां हैं, जब तक कच्ची फलियां पकेंगी तब तक जो इस समय पकी हुई फलियां हैं वो उनमें नुकसान होने की संभावना हो सकती है, तो इस समय आप उनकी तुड़ाई करवा लें। उसके बाद जो आपकी हरी फलियां हैं उनको पकने के बाद पूरी फसल की कटाई करें, लेकिन इस समय आप जो पकी हुई फलियां हैं उनकी तुड़ाई करके आप सुरक्षित खलिहान पर रखें। अगर हल्की फुल्की वर्षा हुई और वर्षा के बाद अगर धूप निकली तो चटक जाएंगी और बेकार हो जाएंगी। साथ ही किसान भाई, तिल की बात करें जो अब इस समय फूल बनने की अवस्था में आ गया है तो उसका भी ध्यान रखें, अगर उसमें कोई कीट व्याधि नियंत्रण होता है तो उसको करें। और साथ ही धान की बात करें तो इस समय धान की फसल आपकी बाली कोच में आने की अवस्था है, क्योंकि टिलरिंग अवस्था से ऊपर हो चुकी है, तो उसमें नत्रजन की जो मात्रा आपकी शेष है उसको तुरंत दें, जिससे आपकी बाली एक साथ और बढ़िया अच्छी निकलेगी। साथ ही किसान सोयाबीन की बात करें तो देरी से बोएगी सोयाबीन, जो समय से बोएगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो देरी से बोएगी सोयाबीन है उसमें चक्रभंगक और सेमी लूपर कीट की संभावना हो सकती है, दिखाई नहीं देने पर इसके नियंत्रण हेतु ट्राई और 700 से 800 ml दवा 500 से 600 ml पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते। साथ ही किसान भाई, उपजों की बात करें तो मिर्च और बैंगन टमाटर इनमें जो आपकी फसल में जो फलन हो रहा है तो उसकी समय समय पर तुराई करके बाजार बेचते रहें। और साथ ही किसान भाइयों, आप भिंडी की बात करें तो फलन अवस्था में इस समय भिंडी की, वैसे तो मौसम अनुकूल है, फिर भी अगर फल छेदक कीट की संभावना हो तो इसके नियंत्रण हेतु आप जो है डाइमेथोल 700 से 800 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 पानी घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। तो छिड़काव अगर ज्यादा मात्रा में आपकी फली में कीट लगा है तो उसमें 10-10 दिन के अंतराल से 2 या 3 छिड़काव करें। फूल गोभी बैंगन टमाटर जो लगाए गए जो फलन अवस्था में वृद्धि अवस्था में है इस समय निराई गुड़ाई करें और नत्रजन की मात्रा को दें। साथ ही किसान भाई, पशुपालन की बात करें तो संभावित मौसम अभी क्या कि बरसात का मौसम समाप्त हो रहा है, तो इस समय आप पशुओं की नाक पशुआला की नियमित सफाई करें और प्रतिदिन पशुआला की सफाई के बाद 5 ml फिनाइल प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर उसका छिड़काव करें, जिससे मच्छर मक्खी आदि से पशुओं की सुरक्षा हो सके। साथ ही संभावित मौसम में पशुओं को संक्रामक रोग इस समय संभावना बनी रहती है, अतः पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दूसरे चारा दाना न खिलाएं, न गंदे तालाब का पानी पिलाएं। साथ ही इस समय पशुओं को जैसे बाहर चराने के लिए ले जाते हैं वो भी नहीं ले जाए। अगर अफरा रोग आपको दिखाई देता है इसके लिए टेम्पाल या बिलोटोसिल 200 ml दवा प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से खिलाएं। इसी के साथ आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से मैं डॉक्टर हरिवंश सिंह।
4: भैया रो, अभी अपन सुन रहे थे आंचलिक अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम की जानकारी और कृषि सामयिक सलाह और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हरविंदर सिंह। भैया रो, अपन ने देखा ना विज्ञान की नई नई तकनीकों के माध्यम से अपन अपनी खेती किसानी को अच्छे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने भी सुना कि किस तरीके का आगे आने वाला तापमान रहेगा, हवा की दिशा क्या रहेगी और पानी बरसने की संभावना है या नहीं, और पानी जो बरसेगा वो तेज बरसेगा या कम। और इसके साथ साथ अपन ने ये भी सुना कि अपनी जो फसल में कीट लगने की संभावनाएं हैं या कोई रोग लगने की संभावना है तो उसके लिए अपन कौन सी दवा का उपयोग करें और उसका कितना छिड़काव करें। भैयारों, पहले खेतों की जुताई, बुवाई और कटाई में बहुत समय लगता था, परंतु आजकल नई नई मशीनों के माध्यम से कम समय में अधिक काम कर सकते हैं और साथ ही साथ श्रम भी कम लगता है। इसके अलावा अपनी जो पहले सिंचाई होती थी वहाँ में पानी को बहुत उपयोग तो हो तो, लेकिन अब आजकल सिंचाई की जो नई नई तकनीकें आ गई हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई है, बाकी माध्यम से क्या है कि अपनी खेती किसानी में कम पानी में अधिक सिंचाई कर सकते हैं। अब जैसे ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जो ड्रिप सिंचाई होते हैं वहाँ में बूंद बूंद करके पानी जाता है, जिससे क्या है कि पानी पूरा जड़ों तक पहुँचाता है। और इसके अलावा जो स्प्रिंकलर सिंचाई है वहाँ में क्या है कि जो पानी है वो फव्वारे के रूप में अपनी अपनी खेत में फैलता है, तो इससे क्या है कि पानी की बचत भी बहुत होता है। इसके अलावा हमारी जो खेती किसानी है उसमें बीज को बहुत महत्व है। अगर बीज अच्छा होगा और गुणवत्ता वाला होगा तो अपनी जो फसल को उत्पादन है वो भी अधिक होगा और गुणवत्ता वाला होगा। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से जो बीज हैं वो उसकी ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं जो अधिक उत्पादन दे सकें और जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता हो। अब जाके अलावा अपनी खेती किसानी में अपनी जो माटी है वो अपनी सबसे बड़ी पूंजी है, और यदि अपनी मिट्टी खेत की जो स्वस्थ रहेगी तो अपना उत्पादन भी अच्छा होगा। और जाके लाने का है कि आज आप अपन को मिट्टी की जांच कराना बहुत आवश्यक है। मिट्टी परीक्षण कराने से अपन को कब फायदा होता है कि अपन को ये पता लग जाता है कि अपने खेत में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, और जो पोषक तत्वों की कमी हो वही के आधार पर अपन संतुलित मात्रा में उर्वरक डाल सकते हैं, और जिससे क्या है कि अपनी जो लागत क्षमता है वो भी कम हो जाते हैं, और जो अन्य पोषक तत्व हैं उनको भी अपन पूर्ति कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि अपन को मालूम नहीं होता कि अपनी खेती किसानी अपनी जो खेत की मिट्टी है वहाँ में कौन से पोषक तत्व अधिक है, तो अपन लेकिन उर्वरक के माध्यम से बिना भी डाल देते हैं, तो इससे अपनी खेती किसानी की लागत है वो भी कम हो जाते हैं, नए तरीके के बीज आ जाते हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाना भैयारों आजकल अपनी बहुत आवश्यकता है। विज्ञान के माध्यम से अपन अपनी खेत की मिट्टी को समझ सकते हैं, मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं और उन्नत तकनीकों को उपयोग कर सकते हैं। तो हम तो अपने किसान भैयारों को अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहेंगे कि विज्ञान की नई नई तकनीकों को उपयोग करें, उन्नत बीजों को उपयोग करें, साथ ही साथ जैविक खाद को भी उपयोग करें। भैयारों, जैविक खाद को

जो उत्पादन है वो रासायनिक खादों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। जहाँ से कहा है कि भैया ना अपना जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहते हैं, और जब अपनो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो अपन भी सुरक्षित रहेंगे। अपन देखा था ना कि अपने पर्यावरण में अपने पशु हैं, पक्षी हैं, और अपन रासायनिक खादों को उपयोग कराते हैं या रासायनिक कीटनाशकों को उपयोग कराते हैं। जहाँ से कहा है कि अपने कीट तो मर जाते हैं लेकिन जो पक्षी हैं वे भी इन कीट को खाकर वे भी मर जाते हैं। वहाँ से कहा है अपने जो भूमि को जल है और अपनी नदियाँ हैं वे भी प्रदूषित हो रही हैं, अपनी ज़मीन धीरे धीरे ऊसर होते जा रहा है। लेकिन अगर अपन जैविक खाद को उपयोग करेंगे तो अपनी जो जमीन की जल धारण क्षमता है वो भी बढ़ेगी, साथ ही साथ उत्पादन भी गुणवत्ता वाला होगा। और जब अपना उत्पादन गुणवत्ता वाला होगा तो बाकी अपने बाजार में दाम भी अच्छे मिलेंगे। अपन देखा था ना कि जैविक जो उत्पादन है बाकी बहुत महंगे हैं, और वो अपने शरीर के लाने बहुत आवश्यक भी है, और अपना पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब तनक मनोरंजन हो जाए तो सुनते हैं जे लोकगीत।

भैया रहो, अभी अपन ने सुनो जी लोकगीत, और भैया रहो अपनी जो अगली जो चर्चा का विषय है वो है प्रधानमंत्री युवा योजना। भैया रहो अपना जो देश है वो युवाओं को देश है, और अपनी जो युवा आबादी है वो ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति है, और यदि अगर अपने युवाओं को अगर सही दिशा अवसर मार्गदर्शन मिलेगा तो वो देश का आर्थिक विकास में बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं। और यही बात को ध्यान में रखकर सरकार ने युवाओं के लाने कई प्रकार की योजनाएं चालू करी, जिनमें युवा कौशल विकास योजना, अन्य प्रकार की योजनाएं भी हैं। और इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री युवा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अपने जो युवा वर्ग है उनके अंदर उद्योग विकसित करने की, नए उद्योग लगाना और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करना है। भैया आज के समय में केवल डिग्री प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, अपने पास व्यवहारिक कौशल होने चाहिए, नई तकनीक की जानकारी होनी चाहिए, व्यवसाय की समझ होनी चाहिए और आत्मविश्वास भी होना चाहिए। और प्रधानमंत्री युवा योजना के अंतर्गत युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। भैया इस योजना के अंतर्गत जो अपने युवा वर्ग हैं उनको उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करना है, उनके अंदर सोच को विकसित करना है जिससे वे अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकें। भैया प्रधानमंत्री युवा योजना के अंतर्गत केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। और जब कोई युवा अपना नया व्यवसाय शुरू करता है तो उसका व्यवसाय सफल होता है और कईयों के व्यवसाय असफल हो जाते हैं, लेकिन इस असफलता के लिए अपने युवाओं को व्यवसाय से संबंधित कई प्रकार की प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जैसे व्यवसाय का चयन किस प्रकार करें, बाज़ार की आवश्यकताओं को समझें। अब भैया जब अपन को व्यवसाय का चयन के बारे में जानकारी होगी तो अपन अपने व्यवसाय को अच्छे से कर सकते हैं, और जब उसके बाज़ार के बारे में भी अपन को जानकारी होगी कि उसका बाज़ार किस तरीके का है, उसकी मांग किस तरीके की है और व्यवसाय की योजना कैसे बनाई जाए, और जो अपन व्यवसाय के अंतर्गत जो अपन अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसके लिए ग्राहकों तक कैसे पहुँचें, उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो कैसे बनाए रखें, लागत और लाभ का हिसाब कैसे करें और बाज़ार में माल किस तरीके से भेजें, इस सब की जानकारी इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के अंतर्गत दी जाती है। अब इसके अंतर्गत युवाओं को नए जो स्थानीय जो व्यवसाय हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कृषि उपकरणों की सेवा। अब अपने गांव में सभी तरीके के कृषि उपकरण होते हैं, अब अगर अपना युवा वर्ग इन कृषि उपकरणों की सर्विस करने का प्रशिक्षण ले लेता है तो उसे अपने गांव में ही रोजगार मिल जाएगा, जैविक उत्पाद बना सकते हैं, दुग्ध जो दूध से बने हुए उत्पाद हैं उनका भी विपणन कर सकते हैं, साथ ही

साथ अपने गांव के आसपास कई ऐसी दर्शनीय स्थल भी होते हैं जिसमें पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। तो अपने युवाओं को इसके लिए प्रेरित करना कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिले, साथ ही साथ अपने गांव और आसपास के क्षेत्र में कई प्रकार के हस्तशिल्प बनते हैं और मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। अब भैयारों साथ अपन अपनी खेती किसानी के साथ अगर मधुमक्खी पालन करेंगे तो अपनी जो फसल को जो उत्पादन है वो भी 30 से 35% बढ़ जाता है। जैसे कहा है कि अपने साथ अपने को शहद तो प्राप्त ही होता है, साथ ही साथ अपने उत्पादन भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसके अलावा जैविक खाद को अपन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आजकल अपन देख ही रहे हैं कि जैविक उत्पाद की बहुत मांग है और अपने जो गांव में पशु तो बहुत होते ही है, तो अपन इन सबको मिला के अपन सभी गांव लोगों को मिल के अपन जैविक खाद को उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कहा है कि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और नए नए अवसर भी मिलेंगे, साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाते हैं। अपने जो युवा वर्ग हैं जिनमें रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके अंदर जब अपना युवा व्यवसाय शुरू करते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और इसके अलावा जब रोजगार मिलेगा और अपने व्यवसाय करेंगे तो आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, तो इससे आर्थिक निर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। भैयारों इसके अलावा अपने जो स्थानीय संसाधन हैं उनको अपन उपयोग करके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और कई ग्रामीण क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो अपन इन्हीं विशेषताओं का उपयोग करके अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भैयारों जो प्रधानमंत्री युवा योजना जो है इसका जो मूल उद्देश्य है अपने युवाओं को सक्षम बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और उद्यमशील बनाना। और भारत की अगर ये युवा शक्ति सही दिशा और सही अवसर मिल जाए इनको तो ये अपने देश की आर्थिक स्थिति भी बदल सकते हैं। तो हम तो अपने किसान भैयारों के माध्यम से यही अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री युवा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण लें, अपने ग्रामीण क्षेत्र में नए नए उद्यम लगाएं और अपने युवा साथियों को रोजगार दें। इसके अलावा अपने गांव में बनने वाली चीज़ों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाएं। भैया चर्चा अपनी चलत रहेगी, अब तक मनोरंजन हो जाए तो सुनते जे लोकगीत।

0: भी मेडल इस प्लेटफॉर्म में ये जीत चुके हैं, तो इनको पता है कि किस तरह का कंपटीशन होगा, क्या लेवल है। और जहां तक अंतिम पंगल का बात करें तो वो 2-time वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आई मीन पेरिस ओलंपिक्स में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। दीपक पुनिया एक नए वेट क्लास में आ रहे, वो 86 में थे, अभी इस बार वो ऊपर 97 में आ रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म में काम आएगा। सुनील कुमार जो ग्रीको रोमन में 87 में, वो भी काफ़ी अच्छा खिलाड़ी है, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम, तो ये एक काफ़ी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
1: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया, उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरेनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी, इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
2: बिल्कुल, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में, तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापनीज कोच अकाशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है, आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2-3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जापानीज कोच हमें उनकी टैक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या स्ट्रेटजी हमें लेके चलनी है, अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है। उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए, जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं।
1: अच्छा।
2: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे, साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं, सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था। उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे रही, सुजीत कलकल ने वहाँ पे गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहाँ पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस जो हैं वो रेसलर्स की चल रही हैं।
1: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है, इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पुनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं। वहीं महिला फ्री स्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी। ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरोनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाच 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे। लेकिन इतने पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
0: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है। जैसे दीपांशी होगाट 50 kg में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्रायल्स में सबको सीजन्ड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपनी दावेदारी पेश की है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एले ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजन प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी, पर हमें ये भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है। मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 kg लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्री स्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और सुजीत कलकल 65 केजी एक ऐसे कैटेगरी

0: में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी कहा जाता है, और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
1: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है, और सारिका आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
2: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है। एशिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है। एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रांग नेशंस हैं। इनकी जो टीम होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं, ये सारे देश काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 किलो में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैम्पियन हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 kg में आपको देखने को मिलेगा कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा। 68 में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं, और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है। तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा, और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज़्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है।
1: जी, और अभिषेक, कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारिवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्शा विनोद, मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्शा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिश भानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेंस ट्रैप में नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेंस स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान, और विमेंस स्कीट में पारिनाज धालीवाल, राजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर नजरें रखनी चाहिए?
0: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यह बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा एक योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज़्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफ़ी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल लेकर आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे आए शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर, उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते, ऐश्वर्या प्रताप तोमर, ईशा, एलाविनिल। तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल्स था उससे हम लोग ज़्यादा जीतेंगे इस बार।
1: अगर हांगजो एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे बल्कि कह सकते हैं कि बटोरे थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक जैसी आपने बात की भारत की झोली में आए थे, अभिषेक, इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
0: चुनौती तो है क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना यह है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज़्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में आए थे, तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है।

0: बार हमारे शूटर्स का ये टारगेट है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज़्यादा मेडल लाए, ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक्स से क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहाँ से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स हैं जिनको पहला बार ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने के लिए। एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफ़ी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी हैं, तो उम्मीद है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
1: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है, आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी होता है।
2: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपको, इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेस हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारी फिटनेस लेवल है वो बनी रहे, डाइटिशियन हमारे साथ हैं, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
1: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, प्रतिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
0: बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहाँ से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुँच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है और एक्सपीरियंस काफ़ी है, पेरिस ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का, तो धीरज से उम्मीद है कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफ़ी नया टीम है। 3 प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे हम लोग। इस बार इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में एलए क्वालिफिकेशन भी इस यहाँ से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
1: जी, और निशाने साधने के पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
0: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने, ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था, वो साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल जाधव है जो कि नए प्लेयर है लेकिन वो काफ़ी टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है और यही वो फॉर्मेट है जहाँ पे हमारा एले ओलंपिक से क्वालिफिकेशन है, तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें एले ओलंपिक से कोटा भी मिल जाए। तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं आर्चरी के, क्योंकि 2-3 हैं, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे लेके चले।
1: और सारी क्या, खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
2: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बच्चों को जो है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो है वो बहुत फ़ायदा मिल रहा है एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे से हमें काम आ रही हैं।
1: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया गंगा 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी। इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा होने वाला है। पर हमारे एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जैसे लवलीना बोरगोहेन, ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफ़ी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूँगा, 54 kg में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। एशियन चैम्पियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल, तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहाँ पे जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे ही प्रिया घनगा से, ये नए टैलेंट है लेकिन इन्होंने भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारी महिला टीम काफ़ी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है, उम्मीद है इनसे काफ़ी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेन्स टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेरवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का उससे आगे जा सके।
1: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के 1 रजत समेत 5 पदक जीते थे, इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक, वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के 1 से 1 उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
0: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है और बहुत कंसिस्टेंटली से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैम्पियनशिप का, जब गोल्ड मेडल जीता, और जब एशियन टाइटल जीत के अगर आप जब एशियन गेम्स में जाते हो तो कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि मैं ये इस लेवल पे जीत चुकी हूँ तो यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा इनका कि एशियन चैम्पियनशिप में हमारी टीम, महिला टीम ने काफ़ी अच्छा किया है और एशियन गेम्स में जाके हमें रिपीट करना है वो परफॉर्मेंस।
1: सारिका, एशियन गेम्स से ठीक पहले भारतीय कुश्ती दल को तगड़ा झटका लगा, 3 भारतीय पुरुष पहलवान डोपिंग के चलते एशियन गेम्स में उतरने से पहले ही बाहर हो गए, इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर बाकी के पहलवानों पर पड़ सकता है?
2: इसका काफ़ी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खास करके प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैम्पियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हम मान सकते थे 86 kg में, पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 kg भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पे भी डोपिंग का बैन है, और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है, तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय कुश्ती के लिए ये है। तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है, लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें।
1: जी, और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की, टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम, वेलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेन्स टीम, अभय सिंह मेन्स सिंगल्स और मेन्स टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
0: बहुत कमाल कर सकती है, और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल, वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती है अनाहत, और

0: उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और लाइक आर्चरी स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एले ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेंस टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए। तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पे काफ़ी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
1: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
0: कंपटीशन काफ़ी टफ है स्क्वाश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी, और अनाहत के ऊपर तो काफ़ी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है ले ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
1: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में एक पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश, जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है?
2: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ, लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं, मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए करना है। और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो। हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है। उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है।
1: बिल्कुल।
2: तो प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है। और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो। आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो, और तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ।
1: जी, और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
2: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है। तो मेन फोकस तो एले ओलंपिक्स का ही रहेगा। मैं भी यही चाहूँगी कि मैं एले ओलंपिक्स में जाऊँ और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊँ, गौरव बढ़ाऊँ और वहाँ से मेडल लेकर आऊँ।
1: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
0: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफ़ी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहाँ पे हमें एकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स में, पटियाला में, बेंगलोर में एथलीट्स को उसी तरह का एकोमोडेशन दिया ताकि वो एक्मेटाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफ़ी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेस काफ़ी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन तैयारी हम लोग करके जा रहे हैं, तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहां पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
1: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है, हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुंचने की जोरदार तैयारी में हैं। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगझोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
2: थैंक यू सर।
1: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: फिलहाल चीयर फॉर भारत कार्यक्रम के प्रोड्यूसर

0: अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 पर आधारित विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत।
1: मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन, कार्यक्रम का संचालन कर रही है प्राची प्रिया।
2: नमस्कार, कार्यक्रम सुर्खियों में आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे समक्ष आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: सुषमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप थोड़ा प्रकाश डालें कि ईपीएफओ है क्या और किस तरीके से ये लाभान्वित करता है जनता को।
3: ये बहुत ही जरूरी सवाल आपने पूछा, क्योंकि कई लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ईपीएफओ क्या है और उसका रोल क्या है
2: जी,
3: और उसके फायदे क्या हैं। बहुत बड़ी चीज है
2: जी।
3: एक तो जनरली आप देखेंगे दुनिया भर में प्रोविडेंट फंड का मतलब ये है, एक कॉर्पस, एक फंड जो सरकार बनाती है और उसमें सेविंग्स के लिए जो काम करने वाला आदमी होता है किसी भी संस्था में, उसके जितने भी वो चाहते हैं कंट्रीब्यूशन, समझ लीजिए 10% अपने वेतन से वो इस फंड में चला जाता है और सरकार अपनी तरफ से भी मैचिंग इसमें कंट्रीब्यूशन डालती है। तो ये जो उनके तनख्वाह से ये पैसा चला जाता है और सरकार भी उसमें डालती है, इस कॉर्पस में चला जाता है। और ये कॉर्पस आपके जैसे अगर मेरा है तो मेरा जब मैं अपनी पूरी समझ लीजिए 25-30-35 साल की जो अपनी करियर की जो अंतिम स्तर तक मैं डालती रहती हूँ, तो अंत में मुझे ये सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ मुझे इसका मिलता है। और ये उसके साथ हमारे केस में हमारे जो भारतीय भविष्य निधि, ये जो प्रोविडेंट फंड है
2: जी,
3: इसमें एक और चीज हमने डाली हुई है। जनरली प्रोविडेंट फंड मैंने बताया कि क्या चीज है, उसमें ये आपका जो पैसा है अंत में भी मिलता है और बीच में इसके फायदे और भी होते हैं। जैसे मैंने कहा हमारे देश में हमने इसके और कई चीजें डाली हैं जिससे जो वर्कर एम्प्लॉई जो है उसको काफी फायदा होता है। एक तो ये है कि इस कॉर्पस से कभी भी कोई भी एकदम अचानक कोई खर्चा आ जाता है
2: जी,
3: उससे वो इस प्रोविडेंट फंड से ले सकता है। दूसरी बात ये है हमने पेंशन से भी लिंक किया हुआ है, इसका एक पेंशन फंड साथ में जितना आप डालते हैं थोड़ा सा आपके पेंशन में चला जाता है। तीसरा हमने इसमें इंश्योरेंस के साथ भी लिंक किया हुआ है कि ये जो आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस हमने बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इससे हमारे देश में जो प्रोविडेंट फंड है वो कई प्रोविडेंट फंड से काफी अलग है। लेकिन जैसे आपने बताया बेसिक बात ये है कि ये जो प्रोविडेंट फंड, इसको भविष्य निधि कहते हैं, भविष्य के लिए आपने अपनी जो आमदनी है उसमें से आपने कुछ हिस्सा डाला हुआ है
2: जी,
3: और उसमें आपने सेव किया हुआ है
2: जी। सुषमा जी, क्योंकि आपने रिटायरमेंट सेविंग्स की

0: की, यानी भविष्य निधि की बात की, तो इसी सिलसिले में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वेतन सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों के पीएफ योगदान और भविष्य में मिलने वाली जो रिटायरमेंट सेविंग्स होगी उस पर क्या असर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, इसे आप थोड़ा विस्तार में अगर बताएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।
1: ये जो वेज सीलिंग डाला गया है किसी भी संस्था में, किसी भी उद्योग में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, अगर आपका वेतन 15,000 तक का है तो आपकी तनख्वाह में से इतना पैसा आपका कटेगा प्रोविडेंट फंड के लिए। आपका आज हमारे देश में हमने ये 12% रखा हुआ है, तो 12% आपका वेतन से वो कट के जाएगा और 12% सरकार आपको देगी। लेकिन जो लोग जिनकी तनख्वाहें 15,000 से ऊपर हैं इनके ऊपर ये लागू नहीं है, और कई प्रोविडेंट फंड्स हैं हमारे देश में, हमारे पास वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, वो उसमें जा सकते हैं। लेकिन इसका फायदा ये है कि सरकार भी आपको इसमें डालती है, दूसरे प्रोविडेंट फंड्स में आपका ही पैसा जाएगा। तो ये सरकार ने ये जो वेज लिमिट डाला है 15,000 का, वेज लिमिट को इस बार बढ़ा दिया है, जैसे आपने बताया 15,000 से लेके 25,000 तक। इससे ये हुआ है कि 31 लाख लोग और इस दायरे में आ जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये क्यों किया उन्होंने। ये इसलिए किया कि अब जब ये वेज सीलिंग डाला गया था, और ये मेरे ख्याल 2014 की बात है जब 15,000 बना था, तब से अब तक, अब हो गए हैं 11-12 साल, तो तब से अब जो तनख्वाहें हैं, वेजेस हैं और बेनिफिट्स हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, पब्लिक सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी। तो जो आदमी पहले की तनख्वाह अगर 15,000 थी
0: जी,
1: अब वही बंदा शायद बहुत ज्यादा कमा रहा है और वो चाहेगा कि मेरी तनख्वाह से मेरे कुछ बेनिफिशियल सेविंग्स होंगे, ये बेनेवोलेंट सेविंग समझ लीजिए, जिनकी तनख्वाहें 25,000 तक की हैं
0: जी,
1: उनके लिए भी ये बहुत बड़ा फायदा है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ आपकी सेविंग नहीं जाती, सरकार भी आपके फंड में डाल लेती है, तो आपके जवाब पहले भी बाकी चीजें जो आप मैंने बताई, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस मिलता है
0: जी,
1: आपको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, आप कभी भी इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं और लब सब बेनिफिट बाद में मिलता है। तो ये काइंड ऑफ फोर्स सेविंग है जो आदमी बड़ी मुश्किल से खुद कर सकता है, तो इसका फायदा बहुत लोगों को मिलेगा।
0: आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पर क्या कहा।
2: हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पीएफ प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, सितंबर 2014 में चेंज की गई थी। इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। 25,000 रुपीज पर मंथ सैलरी विल बी द न्यू सीलिंग फॉर पीएफ डिडक्शन। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज, 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि 15 to 25 वाले बैंड में थे, दे विल स्टार्ट गेटिंग कवर्ड इन द न्यू पीएफ रूल्स।
0: सुषमा जी, क्या ये बदलाव असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर बढ़ रहे श्रमिकों के लिए भी कोई नई संभावनाएं पैदा करेगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है हमारे जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसमें ये एक ये प्रॉब्लम है कि इनफॉर्मल सेक्टर में ये चीजें, ये बेनिफिट्स नहीं मिलती हैं, और कोशिश तो यही हो रही है सरकार की कि ये धीरे धीरे करके ये इनफॉर्मल सेक्टर इनमें भी ये बेनिफिट्स आ जाएं, कि वो उनको भी फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो कहते हैं वो धीरे धीरे हो जाए। तो ये डिमांड आएगी मेरे ख्याल वर्कर्स से, लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको ज्यादा बेनिफिट्स देंगे तो आपके एम्प्लॉयज आपके वहां से जाएंगे नहीं, जिनको आपने ट्रेन किया हुआ है, अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयज वो जाएंगे नहीं, तो ये बेनिफिट्स उनको मिल जाएंगे। तो ये कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस दायरे में आएंगी, और जैसे आपने कहा इनफॉर्मल सेक्टर को धीरे धीरे करके ये फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएंगी।
0: जी, ईपीएफओ में अधिक कर्मचारियों के शामिल होने से भारत की जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको किस तरह से मजबूती मिल सकती है, अगर विशेष तौर पर हम विकसित भारत की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए ये सवाल करें तो?
1: ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कदम है विकसित भारत की तरफ।
0: जी,
1: हम और तुम और सरकार और जो आम आदमी है वो सब चाहेंगे कि सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स सब लोगों को मिल जाएं, लेकिन सबको मिलते नहीं है।
0: जी,
1: इनफैक्ट अगर आप देखें, कोई भी किसी नौकरी की तलाश में हो, अगर उन

0: को दो नौकरियां मिलेंगी तो वो नौकरी लेगा जिसमें वो कहेगा अरे भाई इसमें तो प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स मिलते हैं, ये तो अच्छी नौकरी है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी नौकरी में आपको प्रोविडेंट फंड यानी कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो सबको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर आपको सेफ एंड रिलायबल लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। तो सोशल सिक्योरिटी का जो नेट है वो धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ना चाहिए। और ये एक अभी ये जो कदम है, ये 15,000 से 25,000 से वेज सीलिंग लाना,
1: जी
0: एक तरह से अगर आप कहेंगे सिर्फ वेज सीलिंग बढ़ाना है, लेकिन वेज सीलिंग बढ़ाना नहीं है। इसका मतलब ये है कि इतने सारे 50 लाख से ऊपर लोग ज्यादा इसमें आ जाएंगे, तो ये जो डिमांड है सोशल सिक्योरिटी की,
1: जी
0: जैसे आप अभी बात की इनफॉर्मल सेक्टर की, उनको भी इस दायरे में लाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। और विकसित भारत का मतलब ही ये है, डेवलप्ड इकोनॉमी में सबको सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो ये गवर्नमेंट में तो मिलता ही है पेंशन, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की ये प्रॉब्लम्स हैं कि सबको पेंशन्स नहीं मिलता,
1: जी
0: सबको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो धीरे धीरे करके अगर ये दायरा बढ़ता है तो ये सोशल सिक्योरिटी का जो नेट है
1: जी
0: हमारे देश में बढ़ जाएगा।
1: सुषमा जी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, आप भी एक महिला हैं, तो इस फैसले को अगर
0: जी
1: हम उस नज़रिए से भी देखें तो महिलाओं, युवा कर्मचारियों और कम वेतन पाने वाले जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्लानिंग है,
0: जी
1: उस पर क्या प्रभाव
0: जी
1: पड़ता आप देख पा रही हैं? क्या प्रभाव पड़ेगा इस निर्णय के बाद से?
0: ये बिल्कुल अच्छी बात आपने पूछी, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं का एक बहुत बड़ी तकलीफ आप कहें या मुश्किल है
1: जी
0: कि जब वो काम करती हैं तो उनकी जो वेतन है, उनकी तनख्वाह है, वो घर के कामकाज में चली जाती है और वो कोई बहुत ज्यादा वो सेविंग नहीं कर पाती हैं। जैसे अब ये दायरा बड़ा है 15,000 से 25,000 तक, तो ये सारी महिलाएं जो इसके दायरे में आएंगी उनको फोर्स सेविंग करनी पड़ती है। मतलब 12% का उनके वेतन से जाएगा ही जाएगा, तो उनकी सेविंग हो जाती है। और तब उसके बाद अगर उनको खुदा ना खास्ता कुछ तकलीफ आ जाए या
1: जी
0: कोई खुशी का मौका आ जाए, कोई शादी हो जाए, तो ये महिला, जरूरी नहीं है कि हर महिला के साथ कोई और उनको मदद करने वाला हो, हो सकता है अकेली हैं, तो जब भी उनको किसी चीज की जरूरत हो वो इस फंड से पैसा एकदम से ले लेते हैं।
1: ये एक तरीके से सशक्तिकरण की तरफ भी पोषित करता है।
0: बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फायदा है महिलाएं के लिए, युवाओं के लिए, और जैसे आपने कहा कोई भी जो एल्डरली लोग भी हैं उनके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए भी ये, और जो नीचे वर्ग के जो लोग हैं
1: जी,
0: इनके लिए ये जो फोर्स सेविंग का फायदा है ये बहुत बड़ी चीज है।
1: इसी सिलसिले में एक और सवाल मेरे जहन में है, क्योंकि ये सारी बातें
0: जी
1: सेविंग्स की है, भविष्य निधि की है, तो क्या इस कदम से
0: जी
1: कर्मचारियों में जो लॉन्ग टर्म सेविंग की आदत है, इसे क्या बढ़ावा मिलने की कोई उम्मीद है?
0: बिल्कुल, यही ये लॉन्ग टर्म सेविंग की आदत से एक मकसद है ये प्रोविडेंट फंड का, कि सेविंग्स की जो हैबिट है वो हमारे कर्मचारियों में बिल्कुल इट शुड गेट डीपेंड
1: जी
0: हमारे वर्कर्स में, हमारे एम्प्लॉयज। लेकिन ये जो पैसा है ये प्रोविडेंट फंड में वो खुद ब खुद उनकी तनख्वाह से चला जाता है। और जैसे आप कह रही हैं किसी के साथ मतलब कम तनख्वाह हो, समझ लीजिए हम तो 25,000 की बात कर रहे हैं, अगर उनकी सिर्फ
1: जी
0: 10,000 हो, लेकिन 10,000 में से भी अगर 1,000 रुपए 1,200 रुपए आपकी तनख्वाह में से चले जाए और आपको उतना ही मिलेगा, आप उतने में ही मैनेज कर लेंगे,
1: जी
0: तो ये है कि ये ऑटोमेटिकली ये सेविंग्स की जो आदत है वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म आपके जहन में आ जाती है।
1: सुषमा जी, क्या इस कदम से गिग वर्कर्स और जो अन्य नॉन ट्रेडिशनल वर्कर्स हैं, उनको भविष्य में सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से जोड़ने का रास्ता और भी मजबूत होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शायद इससे भी कम कमाते हैं, इस बार से भी कम
0: बिल्कुल
1: कमाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो क्या उनके लिए भी यहाँ से
0: बिल्कुल,
1: रास्ता खुलता हुआ आप देख पा रही हैं, नजर आता है आपको?
0: देखिए इसके लिए सिर्फ ये वेज सीलिंग से नहीं होगा, ये थोड़ा सा और हमें कोशिश करनी पड़ेगी गिग वर्कर्स के लिए। खैर सरकार ने जो रीसेंट लेबर कोड्स हैं, गिग वर्कर्स को उस दायरे में आ गए हैं, वो लेबर कोड्स के दायरे में आ गए हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एप्स हैं जिसमें ये गिग वर्कर्स हैं, कि ये भी ये जो फायदे हैं, ये जो बेनिफिट्स हैं, ये शुरू करें।

0: अपनी कंपनीज में, हालांकि अभी तक तो उन्होंने ये कहा कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। तो ये सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में कि हर कंपनी जो है वो कहती है कि हम अभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को लेंगे, तो
1: जी
0: कॉन्ट्रैक्ट में तो ये बेनिफिट्स मिलते नहीं है। लेकिन धीरे धीरे नए जो लेबर कोड्स आए हैं उसमें उन्होंने खास कहा है कि गिग वर्कर्स के लिए एक बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा और धीरे धीरे इनको इस दायरे में लाना पड़ेगा, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर को हम हमेशा इनफॉर्मल नहीं रख सकते।
1: जी
0: जरूरी है कि इनको भी ये जो फायदे हैं ये इनको देने पड़ेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
5: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
4: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

0: कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
3: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
1: जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
4: स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने
1: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
5: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी

0: लगातार मजबूत हो रही है।
1: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
2: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशना मदुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने

0: at the 72nd National Film Award Ceremony on the 22nd of this month at Kevadia in Gujarat. We have a report.
1: It is an honor and hour of jubilation for Karnataka and Kannada film industry as the legendary actor Anant Nag will be conferred the prestigious Phalke Award. May it be romance, comedy or plain serious subject, the realistic, spontaneous acting style of the veteran actor left its mark on the audience. His impressive work in Minchina Ota, Hamsa Geete, Ankur Manthan,
2: Malgudi Days,
1: Ganeshana Madhuve, Gauri Ganesha and over 250 other films has left an indelible mark in the film industry. In his reaction to the media, Anant Nag has expressed deep happiness and gratitude to his well-wishers and the film fraternity.
2: The Prime Minister has tweeted, I'm very grateful and thankful to him. At the same time, all this is because of the people of Karnataka. You know, they have blessed me, blessed my films, supported me for the last 50 years.
1: Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
0: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have congratulated the acclaimed actor and highlighted the impact of his decades-long work, particularly in Kannada cinema. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav and Minister of State for Information and Broadcasting Dr. L. Murugan also extended wishes to the veteran actor for the honour. This is Akashwani. You are listening to the news at 9.
3: Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates.
0: Welcome back. The BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan from tomorrow to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday, with a focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The campaign will also mark 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. Briefing media in Kolkata today ahead of the launch, Senior BJP leader and Defence Minister Rajnath Singh praised Prime Minister Modi as a true leader and one who gives priority to the welfare of citizens.
4: The main objective of the campaign is to celebrate the milestones of the Modiji's life with same spirit of service, dedication with which he has worked throughout his life. I believe that Seva Sankalp Abhiyan is not merely a program, but a firm conviction and resolve to connect every section of society through service, cooperation and participation.
0: The party will organize various activities under the campaign, keeping in focus the spirit of service associated with Prime Minister Modi's personality. The Prime Minister's birthday tomorrow will be observed as Seva Divas, and blood donation camps will be organized across the country. An Ashirwad Kadia program will be held in the evening tomorrow, under which families, particularly beneficiaries of government schemes, will light lamps as a gesture of gratitude for Mr. Modi's 25 years in public service. Jal Shakti Minister C.R. Patil, along with Minister of State for Jal Shakti V. Somanna and Minister of State for Housing and Urban Affairs Token Sahu, today launched the Swachhata Hi Seva campaign. The theme of this campaign is Swachhata Me Sahbhag, Swachh Bharat Vikasit Bharat. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, Sub-Himalayan West Bengal, Kerala, Mahe, Tamil Nadu and parts of Northeast India tomorrow. The IMD has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Haryana, Chandigarh, Punjab, Uttarakhand, Jharkhand, Chhattisgarh, Rajasthan and Gujarat tomorrow. For Delhi, the weather agency has forecast a partly cloudy sky tomorrow. Benchmark domestic equity indices ended over 0.4% higher today. The Sensex gained 333 points to close at 74,336. The Nifty added 99 points to settle at 23,218. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Jhiram Valley Maoist attack case in Bastar district, and veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024. That is all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनाने के लिए सनातों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है। सरकर्दा आलमी सीईओज ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। मरकजी काबीना ने ईपीएफओ के तहत कम से कम उजरत की हद को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महाना करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से मजीद 51 लाख मुलाजमीन को फायदा होगा। हुकूमत ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक कानून यूएपीए के तहत पाकिस्तान में मुकीम शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। नई दिल्ली ने सऊदी अरब में मक्का के करीब ड्रोन हमले पर गहरी तश्वीश का इजहार किया है और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की अपील की है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी एनआईए अदालत ने बस्तर जिले के साल 2013 झीराम वादी माओनवाज हमले में कसूरवार करार दिए गए 10 मुलजमीन को सजाए मौत सुनाई है। और आजमुदाकार कन्नड़ अदाकार अनंत नाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहिब फाल्के नाम से नवाजा जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत का टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल तश्कील देने के लिए हुकूमत और सेमीकंडक्टर सनत के दरमियान करीबी इश्तराक की अहमियत पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में सरकर्दा सीईओज के साथ सेमीकंडक्टर गोलमेज की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने महारत टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे को अपनाने की भारत की मजबूत बुनियाद को नुमाया किया और मसनूई जहानत एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की महारत और जिद्दत तराजी में सनतों की बड़े पैमाने पर शमूलियत की अपील की। एआई के शोबे में 1 करोड़ अफराद को तरबियत देने के हदफ का हवाला देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत के होनहार अफराद और आलमी सनती रहनुमाओं की सलाहियतों और तजुर्बों को यकजा करने से खातिरख्वाह इम्कानात पैदा हो सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मामले में कायद बनने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। उन्होंने वाजे किया कि सेमीकंडक्टर के शोबे में खातिरख्वाह पेशरफ भी हुई है और कहा कि ये इको निज़ाम बुनियादी कोशिशों से आगे बढ़कर बड़े पैमाने और ज्यादा मौकों के मरहले की जानिब गामजन है। इस दौरान सीईओज ने भारत की सेमीकंडक्टर सलाहियतों को फरोग देने में हुकूमत की पायदार कोशिशों की सताइश की। उन्होंने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और पूरे सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में सलाहियत साजी की भारत की अहलियत के तहत उभरते हुए इम्कानात पर एतमाद का इजहार किया, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग, तहकीक और तरक्की, एडवांस टेक्नोलॉजीज और माविन सनातें शामिल हैं। वजीर आजम की जानिब से कल नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाले सेमीकॉन इंडिया के 5वें एडिशन के इफ्तिताह से पहले ये गोलमेज मीटिंग हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के 5वें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। ये 3 रोजा कॉन्फ्रेंस आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निजाम से वाबस्ता शराकतदारों को यकजा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगी ताकि माविनत और इख्तिरा को फरोग हासिल हो, मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत में इजाफा हो, सरमायाकारी को रागिब किया जा सके और मुस्तकबिल के लिए तैयार सलाहियत पैदा की जा सके। इस तकरीब में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अक्वामी कंपनियां और 50 ममालिक के वफूद शिरकत कर रहे हैं। इस नुमाइश में जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और सूडान की नुमाइंदगी कर रहे 6 पवेलियन, 12 रियासती सरकारों के पवेलियन और 1 स्टार्टअप से मुतालिक मखसूस पवेलियन शामिल होंगे। सेमीकॉन इंडिया सेमीकंडक्टर से मुतालिक भारत की मुमताज कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत सेमी मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मरकजी काबीना ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपी

यूएपीए के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इस हमले के ताल्लुक से मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब हुकूमत की इलाकाई सालमियत और आम शहरियों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कार्रवाई की मजम्मत करता है। उन्होंने मजीद कहा कि मक्का के नजदीक ये वाकया खास तौर पर तशवीश का बायस है क्योंकि ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जल्द अज जल्द बहाली की उम्मीद करता है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि उसके फजाई दिफाई निजाम ने कल शाम मक्का के नजदीक ईरान की पुश्त पनाही वाले यमन के हूसी मुसल्ला ग्रुप के जरिए किए गए ड्रोन हमलों के दौरान एक ड्रोन को नाकाम बना दिया और उसे तबाह कर दिया। यमन में कानूनी हैसियत की हिमायत करने वाली इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी ने खबरदार किया है कि सऊदी क्यादत में इत्तेहाद मजीद हमलों के खिलाफ जरूर इकदाम करेगा। इस दौरान हूसियों ने मक्का को निशाना बनाए जाने से इनकार किया है। सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान तेजी से कशीदगी में इजाफा होने के दरमियान ये वाकया पेश आया है। कल सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने कई अलर्ट्स जारी किए थे। अलबत्ता उसने बहरे अहमर में अपने अहम ऑयल पोर्ट यांबू समेत 6 शहरों में इन अलर्ट्स को हटा भी लिया था। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने थिम्पू में अपने भूटानी हमनसब लियोनोपो डीएन ढुनग्याल से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान वसीतर तावुन का मुश्तरका तौर पर जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बातचीत में तरक्याती शराकतदारी तवानाई तिजारत राबता सकाफत और अवाम से अवाम के रवाबित समेत भारत और भूटान के कसीर जहती ताल्लुकात को वसत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की खसूसी एनआईए अदालत ने झीरामवादी के सभी 10 कसूरवारों को आज सजाए मौत सुनाई है। खसूसी जज अजय सिंह राजपूत ने यह फैसला सुनाया। कसूरवारों को फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दरभा पुलिस स्टेशन के तहत झीरामवादी में हुए माओनवाज हमले में कई सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं समेत 27 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस हमले में 35 अफराद जख्मी भी हुए थे। इस मामले में कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और 11 माओनवाजों को गिरफ्तार किया गया था। एक मुलजिम की समाअत के दौरान मौत हो गई। एनआईए की खसूसी अदालत ने 5 सितंबर को बाकी 10 मुलजिमीन को इस मामले में कसूरवार करार दिया और आज सभी 10 मुलजिमीन को सजाए मौत सुनाई गई। भारत सरकार ने फिल्म सर्टिफिकेशन के मरकजी बोर्ड CBFC की फौरी तौर पर असर नौ तश्कील की है जिसकी मुद्दत 3 साल होगी। इत्तला नशरियात की वजारत ने कहा कि 9 तश्कील शुदा बोर्ड CBFC में 18 मेम्बरान होंगे। मस्कूरा बोर्ड CBFC के असर नौ तश्कील से मुतालिक नोटिफिकेशन इत्तला और नशरियात की वजारत की जानिब से आज जारी किया गया। मशहूर अदाकार अनंत नाग को साल 2024 के पुरवकार दादा साहेब फाल्के इनाम से नवाजा जाएगा। कई नस्लों को तहरीक देने वाले सिनेमा के उनके सफर और भारतीय सिनेमा में गरां कदर तावुन के बदले जनाब नाग को इस इनाम से नवाजा जाएगा। जनाब नाग को इस महीने की 22 तारीख को गुजरात के केवड़िया में मुनाकिद होने वाली 72वीं कौमी फिल्म इनामत तकरीब के दौरान दादा साहेब फाल्के इनाम से सरफराज किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़मुदाकार अदाकार अनंत नाग को दादा साहेब फाल्के इनाम दिए जाने के ऐलान पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि जनाब नाग की बेहतरीन कारकर्दगी हमाकी सलाहियत और उमदगी ने कई दहाइयों तक भारतीय सिनेमा पर अनमिट नकोश छोड़े हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि जनाब नाग ने हमेशा अपनी अदाकारी में गहराई का मुजाहिरा किया है और मुनफरिद अंदाज पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक मुनफरिद फनकार के तौर पर जनाब नाग इस एजाज के मुस्तहिक हैं। हुकूमत ने 3 लाख रुपए तक के सरमाए वाली बरामदाती खेपों को रजिस्ट्रेशन के मेंबरशिप सर्टिफिकेट RCMC या रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट से मुस्तस्ना कर दिया है। तिजारत और सनत की वजारत के मुताबिक इस इकदाम का मकसद नए और छोटे बरामदकारों के तकमीली अमल के बोझ को कम करना और तामीली अमल के बोझ को कम करना और पोस्टल कुरियर और दीगर उभरते हुए चैनल्स के जरिए बरामद के अमल में आसानी पैदा करना है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में कायद बनाने के लिए सनतों की ज्यादा शमूलियत की अपील की है।
सरकर्दा आलमी सीईओज ने सेमीकंडक्टर गोलमेज के दौरान भारत की सलाहियत पर एतम

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटी सी दुकान, एक मोबाइल स्क्रीन और कुछ सेकंड में भुगतान पूरा। न कैश गिनने की जरूरत, न छुट्टे पैसे की तलाश, न बटुए में नोट रखने की चिंता। एक QR कोड, एक मोबाइल और पैसा पहुंच जाता है पलक झपकते ही। यही है आज का भारत, जहां UPI सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर बड़ी खरीदारी तक, छोटी दुकान से लेकर बड़े कारोबार तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है UPI। लेकिन जब कोई व्यवस्था इतनी बड़ी हो जाए तो एक सवाल भी उतना ही बड़ा हो जाता है, इसे चलाने की कीमत कौन चुका रहा है। और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी चर्चा। पिछले दिनों UPI पेमेंट्स को लेकर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नए फ्रेमवर्क की घोषणा की गई। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और सीनियर बैंकर के साथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्र। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: इससे पहले कि अपने दोनों मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें, आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए बता दें कि जो नया MDR फ्रेमवर्क आया है उसके 5 महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। व्यक्ति से व्यक्ति को किया गया UPI भुगतान पूरी तरह से MDR फ्री रहेगा। छोटे मूल्य के UPI मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी 2,000 रुपए तक के भुगतान पर MDR नहीं लगेगा। 2,000 से अधिक की राशि पर 0.4% MDR लागू होगा। ये ग्राहक से लिया जाने वाला UPI ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं है बल्कि मर्चेंट साइड फ्रेमवर्क है। जिन छोटे दुकानदारों की या कारोबारियों की UPI QR रिसिप्ट 1,00,000 रुपए हर महीने है उनके लिए 0 MDR व्यवस्था जारी रहेगी। 75,000 से अधिक के एलिजिबल ट्रांजेक्शन पर MDR अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा, यानी ट्रांजेक्शन बढ़ने के साथ MDR अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। तो ये हैं वो 5 इंपॉर्टेंट पहलू जो MDR के नए फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। विकास जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि MDR जिसकी बहुत चर्चाएं पिछले 2-3 दिनों में है, ये है क्या और UPI की इस पूरी कहानी में इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई?
2: देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि UPI आज देश का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन इसे चलाने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी लेन देन हो रहा है ना केवल वो स्पीड के साथ हो, एक्यूरेट हो, लेकिन वो सुरक्षित भी हो। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता रहता है और हमें उसमें काफी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है ताकि साइबर सिक्योरिटी ना हो, संबंधित कोई समस्याएं ना हो, फ्रॉड ना हो। तो ये कस्टमर्स प्रोटेक्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कस्टमर्स प्रोटेक्शन, के लिए उनकी सुरक्षा के लिए इनोवेशन की आवश्यकता रहती है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इतने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जहां आज की तारीख में 56 करोड़ लोग अनबोर्ड हो चुके हैं और लगभग 6.5 करोड़ आपके छोटे बड़े मर्चेंट इसमें शामिल है, लगभग 750 बैंकों के साथ भी ये लिंक, तो कितना बड़ा विश्व में मैं समझता हूँ ऐसा व्यवस्था कहीं भी नहीं होगा जहां इतने सारे लोग जुड़े हुए होंगे किसी पेमेंट सिस्टम में, इतने मर्चेंट्स जुड़े होंगे और तो और इसमें लगभग 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रोज हो रहा है और लगभग 1 ट्रिलियन जो पेमेंट

0: जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी वैल्यू जो है लगभग 1 ट्रिलियन है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पे ये कार्य हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है, जब काम इतने बड़े स्केल पे हो जाए तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहती है। अब ये इन्वेस्टमेंट की खर्चा कौन बियर करेगा? उसमें ये बिल्कुल सही है, ये आवश्यक है कि जो आम नागरिक है, जो छोटे काश्तकार है, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको इसका कोई उनके ऊपर कोई इसको नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट, विशेष रूप से छोटे काश्तकार हैं। लेकिन ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट से करने से हम बच नहीं पाएंगे, ताकि क्योंकि सुरक्षा भी इतनी ही आवश्यकता है जितना की गति है और पारदर्शिता। तो मैं समझता हूँ उसमें जो आपकी जो प्लेयर्स उसमें हैं, उसमें आपका TPAP जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है। फिर उसमें एक PSP बैंक है जो कि वो दरवाजा खोलता है और बैंकों के साथ जोड़ता है, मतलब बैंकों के साथ या आपकी NPCI के साथ जोड़ता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरे बात, दोनों बैंक है, एक बैंक जो जिसमें डेबिट होता है पैसा कस्टमर का, और मर्चेंट का बैंक है जहाँ पैसा क्रेडिट होता है। तो ये सारे एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व है। तो अब सरकार ने ये प्रावधान तो रखा है कि 2000 तक इसमें कोई शुल्क नहीं लेगा,
1: जी
0: मार्केट डिस्काउंट रेट 2000 से ज्यादा अगर हो तो उसमें एक सीमा रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए तक का उसमें MDR लगेगा, मार्केट डिस्काउंट रेट। ये
1: जी
0: पैसा जो है, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले बैंक, PSP बैंक जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर आज कहा जाता है, और जो रिसीविंग बैंक और पेइंग बैंक, ये सब में ये पैसे बटेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट और कर पाए, मशीनरी में, IT में और पैसे लगाए।
1: जी विकास जी, जब हम MDR की चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी जहन में उभरता है और बहुत सारे श्रोताओं के जहन में भी होगा कि MDR का भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके का योगदान है, क्योंकि जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों का लक्ष्य एक ही है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, सुविधाजनक बन सके और 2047 में हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। हम इस MDR फ्रेमवर्क पर एक के बाद एक डिटेल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि MDR और भारतीय अर्थव्यवस्था का समायोजन किस तरीके का है।
0: कोई भी अर्थव्यवस्था हो, आजकल हम IT में इन्वेस्टमेंट से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई काम पुख्ता हो, जो एनेबलिंग सिस्टम है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो MDR से तो सरकार के पास कोई पैसे इसमें नहीं आएंगे, ये MDR के जो भी पैसे इसमें मार्जिन से लिए जाएंगे तो वो पैसे जाएंगे ये स्टेक होल्डर्स के पास, जो लोग के ये UPI प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। मैंने बताया ना, देयर आर 3-4 प्लेयर्स जो उसमें हैं। तो अब देखिए, जन धन के माध्यम से लगभग 60 करोड़ खाता खोला है और अभी केवल 56 करोड़ हमारे, एक तो क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ है, 56 करोड़ लोग आ गए हैं। दूसरा ये है कि इसमें और भी स्कोप है लोग को ऑनबोर्ड करने के लिए। गांव के लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास वो नॉर्मल फोन है या फोन है भी नहीं, तो वो सब लोगों को अभी अनबोर्ड करने का और स्कोप है। और हम कैशलेस इकोनॉमी की बात जब करते हैं तो कैशलेस इकोनॉमी तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें UPI को अपनाएं।
1: जी
0: तो इसमें अभी और भी स्कोप है। तो ये कहा जाता है एक कि इसको जीरो जो MDR रेट है वो और कुछ दिन चलता है, और उसके बाद में जब और लोग अनबोर्ड हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ रेट शुल्क लगता है। उसमें शुल्क लग रहा है मार्चेंट की जो ट्रांजेक्शन के ऊपर, ये UPI के ऊपर नहीं लग रहा है
1: जी
0: कोई शुल्क। ये ट्रांजेक्शन जो होगा मार्चेंट, उसमें भी 1 लाख तक जो छोटे काश्तकार, छोटे MDR वाले हैं, उनको सब्जी वाला है, चाय
1: जी
0: वाला है, 1 लाख तक वो पर मंथ जब उनके पास ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसके ऊपर उनको कुछ P2, वो आते हैं उस कैटेगरी में P2PM, तो पर्सन टू पर्सन मर्चेंट, उसमें कोई उनको शुल्क नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से किसी महीने में ज्यादा हो गया, अगले महीने कम हो गया, 3 महीने का एवरेज देखा जाएगा, वो एवरेज में अगर ज्यादा हो गया तो फिर उनको उस हिसाब से शुल्क लगेगा। जैसे ही बना गया है 0.04% और वो 300 रुपये की सीमा है, तो ये छोटा सा रकम है, तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा इसमें समय लगेगा इसको स्टेबल होने में, पर मैं समझता हूँ कि उसको लोग अपनाएंगे और मार्चेंट्स भी अपनाएंगे, क्योंकि इतने बड़ी सुविधा है। आप मैं समझता हूँ छुट्टे की प्रॉब्लम है, कैश के गंदे नोट का प्रॉब्लम है, और फिर दोबारा उसमें नहीं जाएंगे लोग।
1: शरद जी, कार्यक्रम में अब तक हमने समझा कि MDR क्या है और नए MDR फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण बातें भी हमने श्रोताओं के साथ साझा की। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब UPI लॉन्च हुआ तब इसे फ्री रखा गया, अब जब डिजिटल इंडिया स्थापित हो चुका है तो इस चरण में एमडीआर की जरूरत क्यों

0: महसूस हो रही है। क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की जो कीमत है, सरकार इससे वो वसूली करना चाहती है?
1: नमस्कार आपको भी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं। तो इसको हम इसी प्रकार से देखें कि 20,700 करोड़ रुपए इसको साल का चलाने का खर्चा आ रहा है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, किसी साल 2100, किसी साल 2200, किसी साल 1900 करोड़ रुपए सरकार इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी, एक तरह से सब्सिडी थी ये। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया और इस प्रकार ये फैल गया, लोग इसके इतने आदि हो गए, और जो इसकी सुविधा थी, आप पलक झपकते ही किसी को कहीं से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको आगे अपग्रेड रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात इसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसको सस्टेनेबल तभी बना रहेगा अगर इसमें कोई छोटी सी फी लेके और इसमें लोगों को सुविधा जो मिल रही है वो लगातार निरंतर मिलती रहे। दूसरा, इसमें डेटा सिक्योरिटी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा इशू है। कल को आपके सारे बैंक अकाउंट यूपीआई के जरिए जुड़े हुए, हम सब जानते हैं, जो आप बैंक अकाउंट ओटीपी के जरिए अप्रूव करते हैं वो बैंक अकाउंट आपका उसमें जुड़ जाता है। लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 अकाउंट्स उस इंटरफेस में जुड़े होते हैं, और इसके अलावा जो पेमेंट ऐप है वो ऐप भी अपना पूरा एडमिन, तो हम पेमेंट कर देते हैं, हमारे लिए एक क्यूआर कोड हमने स्कैन किया और हमने पेमेंट कर दिया, पर उसके पीछे एक पूरी प्रणाली, एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये इसमें समझने वाली बात है कि खाली आपने क्यूआर कोड डाला और पेमेंट हो गया, ये तो ठीक है, आपको तो सुविधा मिल गई, जिसने पेमेंट लेनी थी उसको भी मिल गई, परंतु इसके पीछे जो पूरी प्रणाली चल रही है उसके पीछे खर्च आता है, उसको मेंटेन करना है, उसमें नए नए अपग्रेड लाने हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाना है। तो ये सही है बात के जो छोटे व्यापारी हैं 2000 से नीचे पे तो है ही नहीं, आपको पता है जो 2000 से नीचे के ट्रांजेक्शन है वो तो पहले की तरह चलते रहेंगे, और पी टू पी, पर्सन टू पर्सन, आपने अपने दोस्त को पेमेंट करी, रिश्तेदार को पेमेंट करी, जो कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी कि आप कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, वो अभी भी वैसा ही बना रहेगा चाहे कितना भी अमाउंट हो, सिर्फ वहां लगाया गया है। जहां एमडीआर को मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार आ रहा है, आप अभी क्रेडिट कार्ड यहां सालों से, दशकों से चल रहा है, क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हैं तो अभी भी तो आप मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे करते हैं, जो व्यापारी आपसे पेमेंट लेता है उसके ऊपर 1%, कहीं 1.5%, अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट है, अमेरिकन एक्सप्रेस तो मुझे याद है 3-3.5% तक भी कई दफे ले लेता है, तो बकायदा मर्चेंट का वो कटता है। अब मर्चेंट क्यों देता है उसको, मैंने बहुत सारे मर्चेंट से इतने सालों में बात करी कि मैंने कहा भाई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट क्यों लेते हैं, वो कहते हैं हम इसलिए लेते हैं कि ग्राहक, अगर 10 ग्राहक हमारे यहाँ आए और उसमें से 4 ग्राहक के पास क्रेडिट कार्ड है, हम उनको मना कर देंगे, हमारे यहाँ तो साहब ग्राहक पियो ऐसे नहीं है, कार्ड लेने की सुविधा नहीं है, तो वो ग्राहक वापस चले जाएंगे, वो ग्राहक यहाँ नहीं आएंगे, तो उसको सुविधा देने के लिए हम अपने प्रॉफिट पर थोड़े से चार्ज बर्दाश्त कर लेंगे, पर हम उस ग्राहक को वापस नहीं जाने देंगे। तो ऐसे ही है, क्योंकि अब कैश का प्रचलन समाप्त हो चुका है, लोगों को घर से वॉलेट जेब में रखने की आदत नहीं है, जेंजी तो बिना पैसे लिए चलते हैं, बहुत सारे मुझे यंग लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारी जेब में कोई कैश नहीं है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास यूपीआई है, तो हमें कैश की जरूरत ही नहीं है, कहाँ नहीं चलता है ये। तो इस बात को देखते हुए जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा 315 लाख करोड़ का साल में ट्रांजैक्शन होना, 24,000 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होना, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पर ट्रांजैक्शन इसकी क्या कॉस्ट आती है अभी जिस लेवल पर है, तो उसमें पर ट्रांजैक्शन हमारी 86 पैसे मैंने देखा कॉस्ट आ रही है, अगर 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे, कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन हो 86 पैसे उसकी कॉस्ट आती है। तो इससे ये जो 0.4% अभी लगा है, पहली बात तो इसमें 300 रुपए पे कैप लगा के बहुत अच्छा निर्णय लिया कि 75,000 रुपए से ऊपर का आप कितने का भी ट्रांजैक्शन करें वो 300 ही रहेगा। जैसे जैसे वॉल्यूम आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इसको रीलुक किया जाएगा, और अभी भी मैं मानता हूं कि सरकार के पास सुझाव आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आया अभी 15 अक्टूबर से लगना है, हो सकता है कि इतने सारे सुझाव आ रहे हैं, मर्चेंट से छोटे छोटे बात हो रही है, हो सकता है इस पे पुनर्विचार किया जाए, आगे जाके 0.4% को कम किया जाए। मैंने एक अपनी तरफ से निजी सुझाव दिया था कि जो बिजनेसेस जिनका मार्जिन कम है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जिसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो वॉल्यूम पे काम करते हैं, 1-2%, 3% उनका मार्जिन होता है, उनको लग रहा था कि भाई 0.4% तो हमें बहुत चुभेगा, तो मैंने सुझाव दिया था कि उन व्यापारियों के लिए जहां पर प्योर ट्रेडिंग है और मार्जिन कम है, वहां पर इसको 0.1% या 0.2% आगे कभी हो सकता है सरकार इस पे विचार करे। तो मुझे लगता है इसको एंड ऑफ द रोड नहीं देखना चाहिए और इसको खाली एक नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
0: जी विकास जी, अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एमडीआर का बोझ किसी न किसी रूप में ग्राहकों तक ही पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि ग्राहक से एमडीआर नहीं लिया जाएगा, जो दुकानदार है वो एमडीआर का भुगतान करेगा। इस अंतर को हम कैसे समझें?
2: कोहली साहब से मैं सहमत हूँ, एक ही बात है कि इसमें जो हाईवे की अपने एग्जाम्पल दिया वो पैसे सरकार को जाती है, वो कंपनी को जाती है, तो यहाँ पैसे जो है ये स्टेक होल्डर से पास जाएगा, पीएससी बैंक, पीपीएपी और जो कंसर्न बैंक है। और रहा जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात को कहा, बहुत सही कहा कि सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए सस्टेनेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कोई भी प्रोसेस हम करें, और इतने बड़े स्केल पर ये काम आ गया है जैसे मैंने बताया था शुरुआत में। यह सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न है व्यवस्था में एमडीआर।

0: मर्चेंट साइड चार्ज है, तो कंज्यूमर में जो कोई भी इसके चार्जेस नहीं लगना चाहिए। और ऐसे जो प्रावधान ऐसा ही है कि इसमें जो मर्चेंट्स हैं ये इसको पास ऑन नहीं करेंगे कस्टमर को, उसमें करने से उनके दो नुकसान हो सकता है। अगर पास ऑन करते हैं तो उनके जो कंपिटिटर है उनके पास लोग चले जाएंगे। आज वो इंडियन एक्सप्रेस में भी एक इंटरव्यू नेहरू प्लेस का किसी ने कोई सर्वे किया है, उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये दिया है इंटरव्यू के बाद। दूसरा, जो अनबोर्डिंग कराते हैं अपने एप्स, जैसे गूगल है, यूपीआई है, पेफोन है, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ उनको सम बेनिफिट्स दे देंगी जिसके तहत वो कंपनसेट उसमें हो जाएंगे। और रहा आपके एसेंशियल सर्विसेज में, वहाँ केवल ₹5 में आपके रेलवे टिकट, इंश्योरेंस, ये सब चीजें केवल ₹5 चार्ज रखा गया है, वो भी जो ऐप जिसका है उसी से वसूल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तो ये जो है इसको हो सकता है रिकंसिडर हो जाए, जो एसेंशियल सर्विसेज है उसमें पेमेंट और कम हो जाए या नील हो जाए। दूसरा, जो 1 लाख का उन्होंने रखा है सीमा छोटे MDR के लिए, हो सकता है इसको और बढ़ा भी जाए, 3 लाख कर दिया, 4 लाख कर दिया जाए, 1 लाख हो सकता है कम है आज के तारीख में। तो मैं समझता हूँ ये जब शुरुआत होगी 15 अक्टूबर को, हो सकता है 3 महीने के बाद जब ये देखा जाएगा प्रणाली कैसे चल रहा है। ऐसा तो नहीं है फिर लोग फिर ATM में जा रहे हैं, रुपए कार्ड में जा रहे हैं या कैश से भी ट्रांजेक्शन किया है, ये कतई मैं समझता हूँ सरकार इसको कभी एनकरेज नहीं करेगी इस बात को
1: जी।
0: और इसके हो सकता है उसके कोई हल निकालेंगे, वो सबका थोड़ा और रेशनलाइज हो जाएगा। जैसे उन्होंने कहा ना, इट इज नॉट एंड ऑफ द रोड, इट इज नॉट एंड ऑफ द डे, तो मैं समझता हूँ इट इज डायनेमिक सिचुएशन, ये ऐसा है ना, इट्स अ फ्लेक्सिबल सरकार का रुख रहेगा, मुझे ये मानना।
1: शरद जी, अगर इसी पहलू को थोड़ा सा आगे लेकर चले, जो सरकार कह रही है कि दुकानदार या जो भी व्यापारी हैं वो 0.4% MDR वहन करेंगे, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब दुकानदार पर 0.4% का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने उत्पाद का जो मूल्य है वो बढ़ा देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इससे जो है वो कैश पेमेंट एक बार फिर प्रचलन में आएगा और दुकानदार कह सकता है कि जी आप हमें कैश पेमेंट करिए क्योंकि मुझे तो 0.4% वहन करना पड़ेगा। क्या इसको लेकर रेगुलेटरी प्रोटेक्शन भी है कि दुकानदार ऐसा नहीं कह सकते हैं और वो अपने उत्पाद का मूल्य इस अनुसार नहीं बढ़ा सकते हैं?
2: देखिए, इस बारे में भी मैंने सुझाव के रूप में, मैं बहुत सारे इंटरेक्शन कल जब से आया है ये कर रहा हूँ, मैंने सुझाव के रूप में इसमें भी एक बात रखी। आपने बात ठीक कही क्योंकि जब छोटे व्यापारी जो हैं जिनसे बात की गई उनका ये कहना था कि भाई, एक व्यापारी ने तो ये भी शब्द इस्तेमाल किया जी तेल तो तिलों में से निकलता है, तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई हम इसको क्यों बेयर करेंगे, हमारा तो मार्जिन कम है, ये ग्राहक को बेयर करना चाहिए, हम नहीं बेयर करेंगे। तो अभी जब क्रेडिट कार्ड यूज होता था MDR के मामले में तो उसमें दो तरीके से चार्जेस रिकवर कर रहे थे कुछ एक व्यापारी। कुछ तो सीधा कह देते थे कि जी हम क्रेडिट कार्ड ले लेंगे आपसे, पर आपको जो हमसे बैंक चार्ज लेता है 2%, 1% वो आपको एडिशनल हमको देना पड़ेगा। तो वो मान लीजिए ₹10,000 की चीज है तो आपसे वो 200-300 फालतू ले लिए जाते थे कि भाई ये हम आपको सुविधा दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड से करने की, आप हमें फालतू दे जाए। कुछ लोग इसको मान भी जाते थे और दे देते थे। दूसरा तरीका जो व्यापारी अपनाते थे वो ये थे कि वो कीमत बढ़ा देते थे, यानी कि आपसे वो अलग से कोई चार्ज कह के नहीं लेते थे, पर मान लीजिए कोई चीज ₹10,000 की है तो पहले से ही उसको ₹10,200 उसकी कीमत रख दी, जिससे वो एडिशनल ₹200 में जो उनको MDR भुगतान करना पड़ता है वो करे। तो मैंने सुझाव रूप में इसमें रखा क्योंकि मंशा MPCI की, सरकार की, ये नहीं है कि ग्राहकों पर इसका बोझ डाला जाए, पर क्योंकि व्यापारीगण जो है वो इस प्रकार की सोच रहा है कि हमारा मार्जिन कम हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि कंज्यूमर हेल्पलाइन साथ में निकाली जानी चाहिए जिसमें कि जो भी ग्राहक हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो तुरंत वहां फोन करके पिक्चर खींच के अपलोड करके डाल सके कि मैंने इस दुकान से इस समय सामान खरीदा और मुझसे MDR के रूप में अलग से वसूली की गई। हालांकि मैं मानता हूं कि जितने दुकानदार हैं वो खुद उपभोक्ता भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, घर जाते हैं, वो भी सामान खरीदते हैं, पर इस बात को लेके आशंका है। और ये आशंका, आपने पूछा कि क्या वो कैश का प्रचलन इससे बढ़ेगा, हो सकता है कुछ दुकानदार ये बात कहें। अब देखिए, हर दुकान पर 66 करोड़ रोज के ट्रांजेक्शन होते हैं UPI के। अगर मैं महीने के 2,000 करोड़ ट्रांजेक्शन लगाऊं तो 66 करोड़ रोज के ट्रांजेक्शन हो गए। अब 66 करोड़ ट्रांजेक्शन पे सरकार मॉनिटरिंग करे कि कौन दुकानदार या कौन भी वेंडर क्या बात कर रहा है ग्राहक से, ये तो संभव नहीं है कि हम हर ट्रांजेक्शन पे नजर रखें कि ग्राहक ने क्या कहा और क्यों कैश पेमेंट की गई, किन हालातों में कैश पेमेंट की गई, क्या ग्राहक को बोला गया या ग्राहक ने अपनी मर्जी से कैश पेमेंट करी या MDR का जिक्र कर दिया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये मॉनिटरिंग और ये 24 आवर विजिलेंस रखी जाए। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे आगे चलेगा और अगर ऐसा लगा कि कैश टू GDP रेशियो जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र में वो बढ़ रही है, कैश की डिमांड सडनली एकदम से बढ़ गई है जब से आया है, इसका अर्थ ये होगा कि भाई जो जरूरत है कैश की वो ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब लोग जो है या UPI के आपको नंबर्स कम होते दिखाई दिए, जिस रफ्तार से UPI पिछले 10 साल में बढ़ा है आपको वो सडनली ग्रोथ कम होती दिखाई दी, तो मुझे

रहा है, जैसा मैंने पहले कहा कि इस पे देन देयर विल बी अ रीथॉट एंड देयर विल बी अ रीविजिट, कि हम इसको फिर से सोचें कि अगर लोगों को इस प्रकार से परेशानी हो रही है और जो मर्चेंट्स हैं वो पास ऑन कर रहे हैं लोगों को, और इस समय दिक्कत क्या है कि इस समय महंगाई की जो दर है

0: कम है वहां पर मुझे लगता है कि एक रीविजिट किया जा सकता है आने वाले समय पर यह सब कुछ निर्भर करेगा कोलेटेड डेटा पे कि क्या डेटा निकल के आता है इसके इंप्लीमेंटेशन के एक दो महीने तीन महीने के अंदर यूपीआई का ओवरऑल डेटा क्या आ रहा है उस पर निर्भर करेगा पर सरकार की मंशा ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के ऊपर भार डाला जाए लोगों से वसूली की जाए ये कतई ये मंशा नहीं है जहां तक व्यापारियों की शिकायत है और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा व्यापारियों की भी जो इश्यूज होंगे उनको एड्रेस किया जाएगा
1: विकास जी थोड़ी चर्चा छोटे व्यापारियों की भी कर लेते हैं छोटे दुकानदार रेहड़ी पटरी वाले किराना दुकानदार और छोटे कारोबारियों के लिए जो नया फ्रेमवर्क है उसके अनुसार 1,00,000 रुपए तक प्रति महीने यूपीआई क्यूआर रिसिप्ट छोटे मर्चेंट्स के लिए जीरो एमडीआर फ्रेमवर्क है आपसे समझना चाहेंगे कि 1,00,000 की ही सीमा क्यों रखी गई क्या इससे छोटे और बड़े मर्चेंट के बीच जो डिस्टिंक्शन है वो बेहतर तरीके से होगा और क्या छोटे मर्चेंट्स के लिए यूपीआई की उपयोगिता अब भी आप समझते हैं बने रहेगी
2: मैं समझता हूँ इसमें दो बातें हमें देखना चाहिए एक कि 96% रोज जो एक लगभग आपकी 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहा है 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन उसमें से 96% से ज्यादा भी है आपके 2000 वाले तो बाकी बचा 4% का सब हम जो जितने भी उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो रिमेनिंग 4% ऑफ द ट्रांजेक्शन इसकी बात हम कर रहे हैं छोटे मर्चेंट्स के लिए ये जो 1,00,000 का उन्होंने सीमा लगाया है मैं समझता हूँ इसको सरकार को हो सकता है इसको रिव्यू करेंगे और कोई 3-4 लाख का क्योंकि आजकल 1,00,000 रुपया कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है और रोज उसकी जो है कोई भी सब्जी वाला भी आजकल 500 रुपये में कोई सब्जी खरीद के ले जाता है तो मैं समझता हूँ अगर उसके पास 20 लोग आ गए तो मैं समझता 10,000 रुपया दिन में हो गया तो इस हिसाब से उसका 1,00,000 रुपया थोड़ा सा कम लग रहा है हो सकता है उसको सरकार रिव्यू करेंगे और इसको थोड़ा हम उसकी बढ़ाएंगे सीमा पर असली बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसेंशियल सर्विसेज को उनका लगभग उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है आपका रेलवे टिकट है इंश्योरेंस पेमेंट है इस तरफ से जो भी एसेंशियल सर्विसेज तो 5 रुपए रखा गया है वो भी ऐप वाला से लिया जाएगा तो मेरे विचार से तो यूपीआई पर एमडीआर की शुरुआत एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंज जरूर है और यूपीआई को फ्री रखना बहुत अच्छा था लेकिन वो एडॉप्शन अभी 56 करोड़ हो गए आगे चल के और बढ़ेंगे तो दिस हैज बिकम क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी संबंधित समस्याएं आजकल बढ़ रहा है तो इनोवेशन की आवश्यकता है इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी तो इन 4% जो आपके ट्रांजेक्शन है उनमें से कुछ रकम आ जाएगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट में सहूलियत रहेगी बाकी यूपीआई का कोई विकल्प नहीं है जहां हम खड़े हैं इस समय और ये कोई भी आदमी पूरी कैश इकोनॉमी में नहीं जाएंगे शुरुआती तौर पर थोड़ा सा हमें वॉच करना पड़ेगा कि 2-4 महीने में क्या उसका असर पड़ रहा है कुछ भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे कुछ मर्चेंट्स बट आई थिंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months और सो थिंग्स विल स्टेबलाइज और फिर लोग इसको यूज टू हो जाएंगे
1: जी शरद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आपसे राय जानना चाहेंगे कि यूपीआई अब सिर्फ भारत का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम नहीं रह गया है हम जानते हैं कि तकरीबन 10 या इससे ज्यादा देशों में यूपीआई चल रहा है ऐसे में इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स और एनआरआईस के लिए जो सुविधाएं हैं क्या उसमें डोमेस्टिक एमडीआर फ्रेमवर्क का यूपीआई के ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी असर पड़ेगा और वो किस तरीके का होगा
0: मुझे नहीं लगता उस पर फर्क पड़ेगा मुझे लगता है जो लोग इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं उनको पहले से आदत है आपको जो करेंसी कन्वर्जन होता है उसका चार्ज आपको देना पड़ता है करेंसी कन्वर्जन के अलावा आपको जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं और इसमें अगर आपको ये इस प्रकार से देना पड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई परेशानी आने वाली है बल्कि इंटरनेशनली जहां ये यूज हो रहा है वहां पर किसी ना किसी प्रकार से वहां की जो सरकार है जो बैंकिंग प्रणाली है उन सबको वो करना पड़ेगा मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं और मान लीजिए आप किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया और डेटा सिक्योरिटी पूरी नहीं है साइबर सिक्योरिटी पूरी नहीं है फायरवॉल्स हमारे सिस्टम में पूरी नहीं है और मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 रुपए ट्रांजेक्शन करते वक्त उसका 10,000 रुपए उसके बैंक से निकल गए कहीं कोई लीकेज हो गई आपका जो पासवर्ड है वो लीक हो गया क्योंकि पूरे फायरवॉल्स नहीं थे वहां पर तो मैं समझता हूँ वो नुकसान बहुत बड़ा है लोग इसको इस प्रकार से देखें कि अगर थोड़े से पैसे दे के आपको एक सिक्योर्ड कन्वीनियंट फास्ट और बहुत ही इजी आपको एक सिस्टम मिल रहा है थोड़ी सी फी पे करके मुझे लगता है जो दिक्कत आई वो दिक्कत आई क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा पीरियड था 2016 अगस्त में मुझे याद है लाया गया था पहले आदि हो गए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो हमें आदत डाल दी तो आदत जब पड़ जाती है तो आदत को छुड़ाना थोड़ा सा कठिन काम होता है और 10 साल पुरानी आदत हो तो और कठिन होता है तो आई थिंक इसीलिए इस पे इतना कंफ्यूजन और इस पे इतना भ्रम वगैरह जो लोगों के दिमाग में फैलाया जा रहा है या कुछ लोग परेशान है इसको लेके बट आप इसको अगर ब्रॉड माइंडेडली सोचेंगे

0: तो आप देखेंगे कि आपको एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लेटफॉर्म आपको दिया गया जो दुनिया में अपने किस्म का यूनिक प्लेटफॉर्म था जिसको बाकी देशों ने भी कॉपी कर रहे हैं, आज देख रहे हैं। तो ये सदा के लिए कैसे ये निःशुल्क रह सकता है, क्योंकि इसमें सारी जो प्रणाली पीछे काम कर रही है एनपीसीआई, हालांकि मैं एनपीसीआई का एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं तो पीछे 32% प्रॉफिट घटा भी था, एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं, ओवरऑल ना देखूं। और एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एनपीसीआई कोई मुनाफे के लिए काम नहीं कर रही, तो एक तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है जो लोग वहां काम करते हैं, और लगातार इसमें आईटी का इसमें रोल है। अच्छा, बीच में जो एप्स काम कर रहे हैं, आप देखिए ये भी एक बात आ रही थी कि क्या ये इसमें अमेरिकन एप्स हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ज्यादातर उनके पास करीब 45% के आसपास शेयर है पूरे यूपीआई का। तो ये देखते हुए कि उनके पास शेयर है तो भारतीय कंपनी अब इसमें आना चाहती है, तो अगर उनको कुछ इसमें मुनाफा ही नहीं दिखेगा, उसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्लेयर्स फिनटेक के इसके अंदर आए, तो वो लोग क्यों आना चाहेंगे? वो तो नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि यहां तो वो कहते हैं जी यहां तो सब निःशुल्क है, तो हमें अपनी जेब से पैसा लगाना है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत ब्रॉड माइंडेड अप्रोच है, और यहीं पर जैसे हम जो आज बातचीत कर रहे हैं इसका लक्ष्य भी मैं ये मानता हूं यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, लोगों को इस बात से अवगत कराना कि ये सदा के लिए फ्री रहने वाली चीज नहीं है। और एक और सर्वे मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें बताऊं, एक लोकल सर्कल्स ग्रुप है उसका 2025 का सर्वे आया
1: जी,
0: और ये उस सर्वे में निकल के आया कि 57% वेंडर्स को यूपीआई आने के बाद अपने बिजनेस में बढ़ोतरी दिखाई दी। तो आई थिंक लोगों की स्पेंडिंग पावर भी इससे बढ़ी है, वो फायदा सारा वेंडर्स को जा रहा है, किसको जा रहा है? वो मर्चेंट्स को फायदा जा रहा है अगर आपका बिजनेस
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसको वेंडर्स इस तरीके से सोचे कि उनके बिजनेस बढ़ा है और साथ में थोड़ी सी उस पर आपको फी देनी पड़ रही
2: है जी। ना केवल बिजनेस बढ़ा है उसमें, देखिए एज ए बैंकर मैं बताऊंगा, बैंक में जो कोई लोन प्रपोजल प्रस्ताव आता है तो हम कागज मांगते हैं
1: जी,
2: और ये स्वाभाविक है, बैलेंस शीट मांगेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मांगेंगे, लेकिन ये जो आपकी वेंडर की जो इसमें ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाता है, इट इज फुल प्रूफ, इसी ट्रांजेक्शन के बेस पे लोगों को लोन भी आजकल दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वेंडर्स के लिए ना केवल उनका व्यवसाय बढ़ रहा है बल्कि व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए जो औपचारिकताएं तमाम पूरा करना पड़ता था पहले, ये केवल उनका वो मशीन से दिखा देते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन ये है, विच इज फुल प्रूफ
1: जी।
2: तो ये भी है, 6.5 करोड़ मर्चेंट्स आपके गिर गए हैं इसमें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान में कि ना केवल उनको रोजगार मिल रहा है बल्कि बढ़ने का और उनको स्कोप मिल रहा है
1: जी। तो श्रोताओं, आज की इस चर्चा का सार यही है कि बदलाव जब भी आता है अपने साथ कुछ सवाल और शंकाएं जरूर लाता है, लेकिन जब बात डिजिटल भारत की हो तो आंकड़ों से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। आज हमने जाना कि एमडीआर कोई आम नागरिक की जेब पर बोझ नहीं है बल्कि भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित, तेज और टिकाऊ बनाए रखने की एक सोची समझी कोशिश है। यूपीआई का सफर सिर्फ एक ऐप से पेमेंट करने तक सीमित नहीं था, ये भारत के एक आम नागरिक को देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रांति थी, और ये क्रांति न रुकी है न रुकेगी और ये आगे भी जारी रहेगी। शरद कोहली जी आपका, विकास नारायण मिश्र जी आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
5: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: है सुनते हैं नाटक।
1: प्रस्तुत है नाटक खेल नहीं है जिंदगी, लेखक सतीश मेहता, प्रस्तुतकर्ता अनिल मुंशी।
2: मैं समझ गई थी नीता कि तुम ही होगी।
3: अरे बुआ, समझ गई थी तो इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में?
2: अरे भाई, क्या यहीं बैठी रहती हूँ दरवाजे पर? किचन में खाना बना रही थी, एकदम से छोड़कर आ गई हूँ। अब आने में थोड़ा समय तो लगता है ना?
3: हाँ बुआ, लेकिन जाने क्यों, मुझे लगता है कि जैसे ही मैं घंटी बजाऊं फट से दरवाजा खुल जाना चाहिए। हाँ
2: तुम्हारे साथ यही तो मुश्किल है, जब जो चाहती हो एकदम से हो जाना चाहिए। बचपन से देख रही हूँ तुम्हें, लेकिन नीता ये कैसा स्वभाव बना लिया तुमने?
3: तो इसमें बुरा क्या है बुआ, ये तो मेरे पक्के इरादे को ही दर्शाता है ना? जो चाहती हूँ करके छोड़ती हूँ।
2: नहीं नीता नहीं, तुम लड़की की जात हो, कल को शादी करके ससुराल चली जाओगी। लड़कियों को तो बहुत लचीला होना चाहिए।
3: क्या
2: बुआ? शादी के बाद की दुनिया एकदम नई होती है, उसी के अनुसार बदलना होता है लड़की को।
3: क्या तुम भी बुआ, किस जमाने की बात कर रही हो तुम? अब इस नए जमाने में लड़कियां अपने अनुसार अपनी दुनिया बना लेती हैं। हाँ
2: अरे बिटिया, जमाना कोई भी हो, अपना घर संसार अच्छे से चलाने के लिए बहुत से समझौते करना पड़ते हैं।
3: नहीं बुआ, मैं कोई समझौता नहीं करने वाली। हाँ
2: ओफो, चलो भाई ठीक है, जो मर्जी हो सो करना। पर ये तो बता दो,
3: क्या
2: चाय पीना है या नहीं? मैंने तुम्हारे लिए पकोड़े भी बना कर रखे। भूख लग रही है ना?
4: अरे भाई चाय तो हम भी पियेंगे।
3: वाह, पापा भी आ गए। बुआ अब आएगा मजा, क्योंकि मेरे साथ होंगे पापा।
2: अच्छा?
3: और चाय के साथ होंगे पकोड़े।
4: हाँ और क्या चल रहा है बेटा तुम्हारा, कॉलेज के क्या हाल है?
3: कॉलेज में क्या है पापा, अभी नया सेशन शुरू हुआ है, नई क्लासेस हैं, तो यही परिचय वरिचय का दौर चल रहा है और क्या।
4: और भाई अब तो जूनियर्स पर अच्छा रॉब चल रहा होगा आपका नीता जी।
3: कैसा रॉब पापा, मैं और रॉब?
4: अच्छा तो कॉलेज में नहीं चलती होगी आपकी दादागिरी?
3: अच्छा?
4: मेरे ऊपर तो खूब चलती है।
3: क्या पापा, मैं आप पर दादागिरी करती हूँ? ये बात है तो मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ आपसे कुट्टी कुट्टी कुट्टी।
4: अरे रे रे रे, नहीं नहीं बेटा, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था।
3: मैं भी तो मजाक कर रही थी पापा। हाँ। लेकिन आपसे मेरी पुच्ची तभी हो सकेगी जब आप मेरी एक बात मान लेंगे। हाँ
4: अरे वाह भाई, तुम्हारी सारी बातें तो मानता हूँ मैं, इसमें शर्त रखवाने की क्या बात है?
3: नहीं पापा, पहले कहिए कि आप वो मान ही लेंगे जो मैं अभी कहूंगी।
4: चलो भाई, हम हारे तुम जीती, बोलो क्या बात।
3: अच्छा तो सुनिए पापा, अगले रविवार को हमारे शहर में मोटरसाइकिल रेस हो रही है।
4: भाई ये तो मैंने भी पढ़ा है पेपर में, हम लोग चलेंगे ना उसे देखने?
3: नहीं पापा, देखेंगे तो आप उसे, मैं तो उसमें भाग ले रही हूँ।
4: क्या क्या भाग लोगी? अरे भाई वो रेस तो लड़कों के लिए होगी।
3: पर पापा उसमें ऐसा नियम कहाँ है कि लड़कियाँ भाग नहीं ले सकती? जानते हैं पापा, मैंने उसके लिए अपना नाम भी लिखवा दिया है।
4: नाम लिखवा दिया?
3: हाँ।
4: ये क्या गजब कर रही है नीता तू? हाँ? अरे भाई ये तो बचपना है तेरा।
3: नहीं पापा, बचपना नहीं है, ये तो आप हैं जो मुझे इतना अच्छा काम करने से रोक रहे हैं। शायद शायद मेरी माँ होती ना तो वो मुझे प्रोत्साहित ही करती। हाँ
4: ये क्या कह रही है नीता तू, बचपन से तेरी सारी इच्छाएं पूरी करता रहा हूँ मैं, कभी माँ की कमी महसूस होने दी है मैंने तुझे?
2: अब छोड़िए और ये चाय और पकौड़ों का मजा लीजिए, ठंडे हो रहे हैं ना?
3: फेंक दो मेरी चाय, नहीं खाना मुझे पकौड़े।
2: नहीं बिटिया, नाराज नहीं होते, पापा तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं ना।
3: मुझे मालूम है मेरा भला बुरा, तुम बीच में मत बोलो बुआ। हाँ
4: ये क्या कह रही हो नीता, बुआ से ऐसे बोलते हैं?
3: नहीं पापा, आप कभी मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, मैं अब कुछ ना खाऊंगी ना पीऊंगी। हाँ
4: बेटा हमें डर लगता है कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए।
3: नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ आप बेकार चिंता कर रहे हैं पापा।
4: अरे चिंता तो होती है बेटा, कितने मुश्किलों से बड़ा किया है तुझे। वो तो ये बुआ ना होती ना तो न जाने क्या होता तेरा।
2: नहीं भाई साहब, ये तो आपकी हिम्मत है जो बिटिया आज इतनी निखर आई है, बहुत प्यारी बिटिया है नीता।
3: पापा तो फिर मैं मोटरसाइकिल रेस में जाऊं ना पापा। जाने दो ना पापा।
4: अरे नहीं बाबा।
3: हाँ बोल दो ना प्लीज। हाँ पापा।
4: अरे ठीक है बेटा ठीक है, तू नहीं मानती तो कर ले अपने मन की।
3: यस।
4: लेकिन सुन, संभल कर चलाना गाड़ी और हार जीत की फिक्र बिल्कुल मत कर।
3: अरे वाह पापा क्या बात है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्रेट है।
4: हाँ बेटा, पर तू मुझसे भी ज्यादा ग्रेट है।

0: शायद भाई साहब और नीता आ गए रेस से। आ रही हूँ। ये कपड़े गंदे कैसे हो गए नीता?
1: मैंने पहले ही मना किया था मैंने। वो तो भगवान इस पर मेहरबान है, वरना जाने क्या हो जाता।
0: ये भगवान।
1: विमला, नीता को अंदर ले जाओ और आराम करवाओ।
0: अच्छा भाई साहब, चलो बेटा।
2: क्या हो जाता पापा? वो तो मैं रेस शुरू होते ही गिर गई, वरना जीत कर बताती।
0: क्या हुआ बिटिया?
1: क्या हुआ? अरे रेस शुरू होते से ही इसकी मोटरसाइकिल उलट गई और ये गिरने लगी। वो तो भला हो वहाँ खड़े रेस करवाने वाले उन सज्जन का कि उन्होंने इसे पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया, वरना आज।
0: हे भगवान, आज तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊंगी। मुझे तो पहले ही डर लग रहा था, पर ये बिटिया हमारी मानती भी तो नहीं है।
2: वो तो मैंने जरा सा एक्सीलरेटर घुमाया और गाड़ी पिछले पहिए पर खड़ी हो गई, सब गड़बड़ हो गई, वरना आज ट्रॉफी लेकर ही घर आती।
1: अच्छा, अब ज्यादा बकबक मत कर और अंदर जाकर आराम कर। तेरी ऐसी ही जिदों के कारण हमारी नाक में दम है।
2: पापा आप भी ना।
0: चलो बिटिया। भाई साहब, कोई आपसे मिलने आए हैं, अपना नाम जतिन बता रहे हैं।
1: अरे जतिन आए हैं?
0: जी।
1: अरे भाई विमला, उन्हें अंदर बुलाओ, ये वही हैं जिन्होंने नीता को संभाला था।
0: अच्छा, अभी आती हूँ उन्हें लेकर।
3: नमस्कार अंकल।
1: आइए जतिन जी, नमस्कार, आइए बैठिए।
3: अंकल,
1: हाँ,
3: अब तबीयत कैसी है नीता जी की?
1: अरे उसे क्या होना था, वो तो आपने उसे बचा ही लिया। वैसे भी उसके लिए ये सब छोटी मोटी बात ही होती है।
3: अंकल आप बेकार ही मुझे शेर दे रहे हैं, मुझे तो खुद ही ये चमत्कार जैसा लगा। चलिए अब जो भी हुआ अच्छा ही हुआ।
0: जतिन जी, आपने बहुत रक्षा की नीता की, वरना आज हम कहीं के नहीं होते। लीजिए, आ गई नीता बिटिया।
4: नमस्ते जतिन जी, कैसे हैं आप?
3: अजी मैं तो अच्छा ही हूँ, ये सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए।
0: अच्छा आप लोग बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूँ।
1: हाँ मैं, बेटा मैं कह रहा था कि तुम नौकरी कर रहे हो या पढ़ रहे हो?
3: अंकल मैंने पिछले साल ही आर्किटेक्चर में डिग्री ली है।
1: अच्छा,
3: और तकदीर से एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छा जॉब भी मिल गया है।
4: अरे वाह, आर्किटेक्ट हैं, फिर आप ये मोटरसाइकिल रेस में कैसे आ गए?
3: नीता जी, आर्किटेक्ट क्या मोटरसाइकिल नहीं दौड़ाते। और वैसे ही मैं उसी क्लब का मेंबर हूँ जिन्होंने ये रेस करवाई थी।
4: अरे वाह।
1: अच्छा भाई जतिन, बेटा मुझे इजाजत दो, एक जरूरी मीटिंग में जाना है मुझे, वरना तुम्हारे साथ बैठने में बहुत मजा आ रहा था।
3: अंकल सचमुच आपके साथ मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप।
4: हाँ पापा, आप बेफिक्र रहें, मैं इन्हें भूखा नहीं भेजूंगी।
1: अच्छा मैं चलता हूँ भाई अब।
3: नमस्कार अंकल।
1: नमस्ते।
4: बैठिए जतिन जी।
3: जी
4: जतिन जी, आपके क्लब में और क्या गतिविधियाँ होती हैं?
3: नीता जी, हमारे क्लब में इसी तरह की कई एडवेंचरस गतिविधियाँ होती रहती हैं। आप भी तो एडवेंचर की शौकीन हैं, मेंबर बन जाइए ना।
4: वो मैं भी चाहूंगी, मुझे ये सब अच्छा लगता है। वो तो कल जाने क्या हुआ कि मेरी मोटरसाइकिल ने गड़बड़ कर दी, वरना रेस में मैं भी होती। अजी होती क्या, शायद जीत भी जाती।
3: आप मुझे माफ करेंगे नीता जी, लेकिन मैं आपसे इतना तो कहना चाहूंगा कि अभी आप मोटरसाइकिल ड्राइविंग में परफेक्ट नहीं है।
4: क्या?
3: अब देखिए ना, कल आपने एकदम से पूरा एक्सीलरेटर घुमा दिया।
4: वो तो मैंने गाड़ी पहले ही आगे निकालने के लिए किया था, उसमें जाने क्या।
3: नहीं नीता जी, ऐसे थोड़े ही गाड़ी आगे जाती है, रेस में भाग लेने के लिए एक टेक्निक होती है।
4: तब तो जतिन जी मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जतिन जी, क्या मैं आपसे ये अनुरोध कर सकती हूँ कि आप मुझे ये सब सिखा सकें?
3: अरे मेरे लिए तो ये काम बहुत खुशी का होगा, लेकिन पहले मेरी एक शर्त आपको मानना होगी। मंजूर है तो बोलिए।
4: पहले शर्त तो बताइए, फिर मंजूर होगी।
3: नीता जी, आपको ये जी भूल जाना होगा, और ये आप बाप की फॉर्मेलिटी भी नहीं करें।
4: लेकिन आप भी तो।
3: चलो अच्छा, तुम्हें शर्त मंजूर है ना नीता?
4: तुम्हारी इतनी अच्छी शर्त कौन मंजूर नहीं करेगा जतिन।

0: अरे नीता, यहाँ क्यों रुकी बाइक?
1: अजी जनाब, देख नहीं रहे, ये ढाबा है और यहाँ की चाय बड़ी मशहूर है।
0: अच्छा, तो यहाँ चाय पान होगा। वाह, ये हुई ना कुछ बात।
1: अच्छा जनाब, ने जब मुझे ट्रेनिंग दी है तो गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी ना।
0: हाँ भाई, सीख तो तुमने बहुत कुछ लिया है, पर ये तुम्हारी जिद और मस्ती के कारण डरता हूँ कि।
1: ये मेरी मस्ती और जिद से तुमको क्या डर?
0: डर तो ये लगा रहता नीता कि कहीं तुम एक्सीडेंट ना कर बैठो। कल तुम उस लड़के से कॉम्पिटिशन करने लगी, और वो भी तब जबकि मैं तुम्हें रोकता रहा।
1: पर तुमने देखा ना जतिन, मैंने उसे पीछे करके ही छोड़ा। कितना मजा आया था ना जतिन उस ड्राइव में।
0: सब मजा वजा धरा का धरा रह जाता नीता, कहीं कुछ हो जाता तो। अभी तो मैं साथ में हूँ, कहीं अकेले में तुम कुछ कर बैठी तो।
1: अच्छा जनाब, मुझे कुछ हो गया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा?
0: मेरा क्या बिगड़ जाएगा? ये मैं बताऊं या तुम अपने दिल से पूछोगी?
1: दिल से तो पूछ लूं, लेकिन आजकल मेरा दिल मेरे पास कहाँ है? उसे तो कोई ले उड़ा है।
0: कौन ले उड़ा है भाई?
1: ये तुम अपने दिल से क्यों नहीं पूछते?
0: सुनो नीता, ये दिल की अदला बदली तो हो गई, पर मामला आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे पापा से भी तो पूछना पड़ेगा।
1: पापा तो तुम पर दिलो जान से फिदा है, बस एक आध दिन आकर बात कर लो तो वो तुम्हारी मम्मी से मिल लेंगे और लाइन क्लियर।
0: हाँ, मम्मी से तो मैंने पहले ही बात कर रखी है, उन्हें तो मेरी सारी बातें मंजूर होती हैं। मेरे सिवाय उनका कोई और है भी तो नहीं ना।
1: ठीक है, तो कब आ रहे हो पापा से बात करने?
0: अरे नेक काम में देरी क्यों, अब परसों रविवार है, मैं सुबह से ही धरना दिए देता हूँ वहाँ।
1: वाह क्या बात है, तो परसों सुबह का ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ होगा तुम्हारा, ओके?
0: चलो भाई, अभी तो चाय से ही मुंह मीठा किए लेते हैं।
1: ठीक है।

0: ये तो बेटा तुमने बहुत अच्छी और मेरे मन की बात कही जतिन बेटे। कौन सा बाप तुम जैसे बढ़िया लड़के से अपनी बिटिया की शादी करने को इनकार करेगा।
1: जी अंकल।
0: लेकिन बेटा बात यह है कि क्या तुम जानते हो कि नीता बहुत जिद्दी लड़की है। कई बार उसकी ये आदत मुश्किल में डाल देती है।
1: अंकल आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतने दिनों के साथ के बाद भी क्या मैं नीता को नहीं समझ पाया हूँ। अंकल यदि मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ तो उसके पूरे व्यक्तित्व को ही पसंद करके स्वीकार कर रहा हूँ। आप बेफिक्र रहें, उसको हमेशा हमेशा खुश रखूँगा अंकल।
0: नहीं बेटे वो बात नहीं है। सचमुच तुमसे अच्छा पति उसे सारी दुनिया में नहीं मिल सकता। ठीक है बेटा, मैं आज शाम को ही तुम्हारी मम्मी से मिलकर सारी बातें तय कर लेता हूँ।
1: ये शादी भी क्या चीज है, सब तरफ ऐसा हंगामा कि शादी कर रहे दोनों प्राणी आपस में बात ही नहीं कर पाते। मेरा मतलब है 8 दिन बाद आज इत्मीनान से मिली हैं आप। हाँ तो अब ये बताइए क्यों गिरी थी उस दिन आप मोटर बाइक से हमारे पहलू में।
2: साफ बात है आलमपना कि हमें जिंदगी भर जो इसी पहलू में रहना था।
1: अच्छा तो सब कुछ पहले से ही

0: प्लान कर लिया था तुमने? बहुत चालाक हो।
1: सचमुच कितना हसीन था वो दिन कि मैंने उस रेस में भाग लेने का निर्णय लिया था जतिन।
0: हाँ नीता, यही तो ऊपर वाले पर विश्वास होता है कि उसने सब कुछ पहले से तय कर दिया होता है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और मेरा, तभी तो इस बार भी इस तरह से मिलवा दिया भगवान ने।
1: प्रभु से यही प्रार्थना है मेरी कि मुझे आगे भी कई जन्मों तक तुम्हारा साथ मिलता रहे। मुझ जैसी सौभाग्यशाली कोई भी नहीं होगी जतिन।
0: सुनो नीता, कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? और मम्मी से बात हुई तुम्हारी?
1: बहुत अच्छा लग रहा है जतिन। वैसे भी तुम्हारे साथ जहां पे भी रहूंगी अच्छा ही लगेगा। और मम्मी की तो बात ही क्या, जब से आई हूं प्यार ही उंडेल रही है मुझ पर।
0: अरे वाह, तो हमारी बेगम साहिबा को अपनी सल्तनत पसंद आ गई।
1: बहुत बढ़िया है जतिन। हाँ सुनो जतिन, मुझे कुछ पूछना है तुमसे।
0: बोलो ना, क्या बात है?
1: जतिन वो मैंने बहुत पहले ही मतलब जब मेरी शादी की कोई बात नहीं थी ना तभी पापा से कहा था कि मैंने शादी की तो हनीमून के लिए मैं मनाली ही जाऊंगी। अब तुम बताओ कि हमें कब चलना है हनीमून के लिए।
0: ये क्या कह रही हो नीता? मनाली जाना तो अभी कहाँ संभव होगा? मैं चाहता हूँ कि यहीं कुछ दिन हम लोग और मम्मी के पास रहें, वरना वो अकेली रह जाएंगी ना।
1: जतिन मम्मी के पास तो हमें जिंदगी भर रहना है ना। वैसे हम लोग मम्मी को भी ले जा सकते हैं, किसी भी तरह रास्ता निकालो ना जतिन प्लीज।
0: तुम भी कैसी बातें करती हो नीता? मम्मी को अस्थमा है। पहाड़ पर क्या हालत होती है अस्थमा के पेशेंट की, तुम शायद नहीं जानती। उनको वहां भी कब अटैक आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। नहीं नीता, हम नहीं जा सकते।
1: ये क्या कह रहे हो जतिन, नहीं मनाली तो हम चलेंगे ही। देखो मैं आज तक नहीं गई वहां, इसे मैंने हनीमून के लिए ही छोड़ रखा था। कुछ तो रास्ता निकालो जतिन, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते।
0: नीता, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, और क्या प्यार की परीक्षा लेने के ये मापदंड होते हैं? अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो इन बातों को।
1: नहीं जतिन, तुम जानते हो कि मैं एक बार जो ठान लेती हूँ वो कर कर छोड़ती हूँ। या तो हम लोग मनाली जाएंगे या तुम मुझे आज ही पापा के घर जाने दोगे।
0: ये क्या पागलपन है नीता, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करने लगी। चलो हम कहीं घूम आते हैं। अच्छा चलो पापा के घर चलते हैं, उनसे मिलकर आ जाएंगे।
1: नहीं जतिन, मैंने कहा ना कि हमें मनाली चलना है।
0: नहीं नीता, मैंने कहा ना कि मनाली जाना तो असंभव है। इसके बाद तुम्हारी मर्जी।
1: ठीक है तो फिर मैं जा रही हूँ पापा के घर।
0: तुम आराम से जा सकती हो नीता, लेकिन जाने से पहले एक बार सोच लेना कि जिद्दी अकेली तुम ही नहीं, दूसरे भी हो सकते हैं।
1: तो मैंने कब कहा कि नहीं हो सकते।
0: तो फिर सुन लो नीता, अगर आज तुम इस घर से गई तो फिर दोबारा इस चौखट के अंदर तुम्हारा आना संभव नहीं होगा। जाने से पहले अच्छी तरह सोच लो नीता।
1: मैंने कहा ना कि मनाली या फिर पापा का घर।
0: नीता तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ या अपनी ही बकती जा रही हो?
1: मैं बक रही हूँ। हाँ सुन लो जतिन, मैं सिर्फ बकती ही नहीं हूँ करके भी दिखाती हूँ। अभी और इसी वक्त मैं जा रही हूँ, तुम्हें मनाली चलना हो तो फोन कर देना।
0: जाओ नीता, पर एक बात फिर सुन लो, यदि तुम इस तरह से जा रही हो तो फिर आ नहीं सकोगी यहाँ। इसके बाद तुम्हारी मर्जी।
1: अब कोई नहीं रोक सकता जतिन, मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना वहां।

0: बुआ,
1: क्या बेटा?
0: गाड़ी की आवाज आई है। जतिन आया है शायद।
2: क्या हो गया है बिटिया तुझे? 2 साल से हर ऐसी आवाज पर यही कहती है कि जतिन आए हैं। क्यों बेकार की आस लगाए रहती है बिटिया?
0: हाँ बुआ, शायद तुम सच ही कह रही हो। बेकार की आस ही लगती है अब तो। क्या मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी?
2: मेरी बच्ची, चुप हो जा मेरी बच्ची।
0: ये क्या हो गया बुआ? ये 2 बरस मेरी आंखों में उनका इंतजार करते ही गुजरे हैं। कि वो चली आई थी मैं उन्हें छोड़कर, आखिर
2: नहीं बिटिया, नहीं बिटिया, नहीं रो। इस तरह रोगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। चुप हो जा मेरी बच्ची।
3: मत रो बेटा, मत रो। रोने से कोई समस्या हल नहीं होती।
0: क्या करूं पापा? मुझे क्या मालूम था कि मेरी इतनी सी बात का ये नतीजा होगा?
3: इतनी सी बात? नहीं नहीं बेटा, वो इतनी सी बात नहीं थी। तुमने जो भी किया था वो गलत था। तुम्हारी बेवकूफी थी वो। कहाँ चला गया था उस समय तुम्हारा विवेक?
0: पापा, क्या आदमी का दृढ़ निश्चय होना गलत होता है पापा?
3: नहीं बेटा, दृढ़ निश्चय तो वो होता है जिसके निश्चय के पीछे कोई सार्थकता हो। जिद को दृढ़ निश्चय कहकर महिमा मंडित नहीं किया जा सकता।
0: आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पापा, क्या मैं इतनी गई गुजरी हूं कि वहां उनके पास जाकर गिड़गिड़ाऊं कि मुझे अपने चरणों में जगह दे दो?
3: यही तो गड़बड़ है नीता बिटिया। तुम नए लोगों में ये जो ईगो नाम की चीज है, यही तो सारे झगड़े की जड़ है। अरे, पति और पत्नी के बीच काहे की ईगो? जब आपस में समन्वय की भावना हो तो ये ईगो, अहम, अभिमान सब गायब हो जाते हैं नित्या बिटिया।
0: तो क्या मैं जाऊं पापा? कहां? उनके घर?
3: नहीं बेटा, तुम्हारा मामला तो बहुत आगे बढ़ चुका है। मेरी बात होती रहती है जतिन से फोन पर कभी भूल कर भी वो तुम्हारा नाम नहीं लेता।
0: फिर क्या मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी पापा?
3: नहीं नहीं बेटा, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अब तो उसी पर भरोसा है बस। हेलो, कौन? अच्छा जतिन। हाँ बोलो बेटे, क्या? अच्छा नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी आता हूँ।
0: क्या हुआ पापा? जतिन का फोन था?
3: हाँ बेटा, उसकी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ।
0: क्या?
3: वो बहुत घबराया हुआ था। मैं जा रहा हूँ बेटा।
0: पापा,
3: अस्पताल ले गए हैं उन्हें।
0: पापा मैं भी चलूंगी, अब 2 मिनट रुकिए पापा।
3: तुम चलोगी?
0: हाँ
3: चल, तुम आओ, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ बाहर।

0: भगवान का लाख लाख शुक्र मम्मी कि आज आप बीमारी से उठ बैठी हैं, वरना मैं तो घबरा ही गया था।
1: घबराने की क्या बात है बेटा, एक दिन तो मुझे विदा करेगा ही तू।
0: अभी कैसे मम्मी, अभी तो आपको बहुत सारे काम करने हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही। अरे अभी तो पोते पोती को खिलाने का बड़ा सा काम जो बचा है। लेकिन वो नीता कहाँ है? पिछले 8 दिन से रात दिन सेवा में लगी थी वो।
0: यहीं तो थी मम्मी, इस इतने बड़े अस्पताल में कौन कहाँ को जाता है पता भी तो नहीं चलता है।
1: शायद मेरे लिए जूस लेने गई है वो। 8 दिन हो गए उसे सोई नहीं बिल्कुल, तबीयत बिगाड़ लेगी अपनी।
0: अब क्या है मम्मी, अब तो तुम्हें रिलीव कर दिया है डॉक्टर ने, सो लेगी घर जाकर।
1: बेटा

0: हम कब चल रहे हैं घर?
1: बस मम्मी, तुम तैयार हो तो अभी चलते हैं।
0: मैं तो तैयार हूँ बेटा, पर नीता तो आ जाए। अरे लो, वो आ गई।
2: लीजिए मम्मी, ये जूस पी लीजिए।
0: ला बेटा, सामान समेट, अब तो घर ही जा रहे हैं हम लोग।
2: ठीक है मम्मी, सामान तो सब तैयार है। अच्छा तो मम्मी, मैं भी अब जाती हूँ।
0: कहाँ जा रही है तू?
2: पापा के घर मम्मी, बुआ इंतजार कर रही होगी।
0: पापा के घर?
2: जी।
0: क्यों, तेरा अपना घर नहीं है क्या?
2: है ना मम्मी, बहुत प्यारा घर है मेरा, पर उस पर अपना अधिकार अपनी ही गलती से गवा दिया है मैंने। सचमुच मम्मी, अपने ही पांव पर कुल्हाड़े मारने वाली मुझ जैसी बदनसीब और कहाँ हो सकती है।
0: नहीं नहीं बिटिया, रोते नहीं, चलो चुप हो जाओ। देखो, गलती तो बच्चों से होती ही है, पर उसे स्वीकार कर लेने वाला फिर वो गलती दोहराता नहीं। और फिर नीता, पिछले 8 दिनों से तेरी सेवा ने मेरी आदत जो बिगाड़ दी है, अब कौन करेगा मेरी सेवा वहाँ?
2: मम्मी, मैं तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगी ही, लेकिन घर के मालिक की अनुमति के बगैर वहाँ कैसे आ सकती हूँ मैं?
0: अच्छा, तो मालकिन को भी अपने ही घर आने के लिए अनुमति चाहिए। हाँ, तो तुम्हारा क्या कहना है जतिन?
1: क्या मुझसे कुछ कहा आपने मम्मी?
0: और नहीं तो किससे कहूँगी बेटा। लेकिन सुन, इसका जवाब मुझे नहीं, उसे दे, जिसे ठीक जवाब देकर ही तू मुझे पोते पोती खिलाने के काम पर लगाएगा।
1: ठीक है मम्मी, चलो नीता अपने घर चलें।
3: अरे आप लोग जा रहे हैं? भाई वाह बहन जी, आप तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही हैं अब।
0: जी, भगवान की दया से, नीता जतिन की सेवा से।
1: हाँ पापा, डॉक्टर ने कह दिया है और हम लोग घर जा रहे हैं।
3: भाई वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और नीता बिटिया तुम?
2: पापा, पापा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी जा रही हूँ अपने घर।
3: जीती रहो बिटिया।
1: आओ नीता, घर चलें।

0: अभी आप सुन रहे थे सतीश मेहता का लिखा नाटक खेल नहीं है जिंदगी। भाग लेने वाले कलाकार थे अनीस फातिमा, दिव्या पवार, राकेश जैमिनी, अमित रिछारिया और प्रज्ञा मुखर्जी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे अनिल मुंशी।
1: अभी आपने सुना नाटक। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
2: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी।

प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए रूपाली पांडे का ध्रुपद धमार गायन। राग है बिहाग, बोल हैं डमरू हर कर बाजिए। पखावज पर संगत की है पंडित कैलाश किशोर द्विवेदी ने।

अभी आपने रूपाली पांडे का ध्रुपद धमार गायन सुना। राग था विहाग। पखावज पर संगत की थी पंडित कैलाश किशोर द्विवेदी ने। इसी के साथ आज का राग रजनी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी

0: उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. Prime Minister called for greater industry participation in scaling, innovation and emerging technologies such as artificial intelligence, AI and quantum computing. Mr. Modi reiterated the government's commitment to a predictable and responsive policy environment while emphasizing that policy